नमस्कार, सुप्रभात। एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की भद्रपद मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 25 सेकंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के लिए मशहूर एकता नगर में पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा है।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है।

0: टनगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-29 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। प्रमुख उद्योगों के सूचकांक ICI में अगस्त में वार्षिक आधार पर 4.8% की संचय वृद्धि दर्ज की गई। ये जुलाई के 5% की संशोधित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में पुणे की एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ T-72 और T-90 टैंकों के लिए 586 करोड़ रुपए की लागत से सहायक विद्युत इकाइयों की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये अनुबंध रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। बैठक में दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। कार्यालय ने कहा कि किसी मतदाता का नाम सूची से हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना और उचित आदेश जारी करना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण है। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। जापानी एशियाई खेलों में आज महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में गत विजेता भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने निशानेबाजी में 3 और पदक जीते। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। भारत ने वर्तमान में 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है जैविक कीटनाशी एवं इसके फायदे, आलेख एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
3: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जैविक कीटनाशक की। कृषि में कीट और रोग हमेशा ही किसानों और वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। दुनिया भर में कीट व रोग नियंत्रण के रासायनिक तरीके बुरी तरह नाकामयाब साबित हो चुके हैं। महंगे कीटनाशकों का खर्च उठाना किसानों के बस की बात नहीं रही। आज ये साबित हो चुका है कि रसायनों का प्रयोग खेती में जमीन, भूमिगत जल, मानव स्वास्थ्य, फसल की गुणवत्ता और पर्यावरण हेतु बहुत नुकसानदायक है। कीटों व रोगों के नियंत्रण का एकमात्र स्थायी समाधान है कि किसान भिन्न भिन्न फसल चक्रों को अपनाए, ताकि प्रकृति पर आधारित कीट और फसलों को आपसी प्राकृतिक सामंजस्य बना रहे और प्रकृति का संतुलन ना गड़बड़ाए। खेती में लगातार रसायनों के प्रयोगों से जमीन जहरीली हो चुकी है। पर्यावरण के साथ साथ मानव स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जहरीले और महंगे रासायनिक कीटनाशकों और रोग नियंत्रकों के लिए किसान कर्जे के बोझ में दब रहे हैं। इससे बाहर निकालने के लिए जरूरी है कि वे खेती में जैविक विकल्पों को अपनाएं। जैविक कीटनाशक रोग और कीट को कम से कम या खत्म करने के साथ साथ जमीन की उर्वरता ही बढ़ाते हैं। ये हमारे अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों द्वारा अपने हाथों से तैयार होते हैं। इनसे किसानों की बाजार पर निर्भरता भी खत्म होती है। किसानों के द्वारा प्रयोग किया कुछ सरल और जांचे परखे तरीकों का प्रयोग कर खेती में रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, कीट और रोग नियंत्रण और प्रबंधन हेतु आवश्यक है कि उत्तम गुणवत्ता वाले देसी बीजों और कंपोस्ट खादों का प्रयोग करें। भूमि में जैविक तत्वों को बढ़ाकर केंचुए और सूक्ष्म जीवों के अनुकूल वातावरण बनाएं। कीटों के प्राकृतिक दुश्मनों की रक्षा करें और प्रकृति में विविधता बनाए रखें। भूमि के एक हिस्से में ऐसी फसल उगाएं जो कीट भक्षक प्राणियों को आकर्षित करती है या फिर दूर भगाती है। इसके अतिरिक्त अपने खेतों का नियमित भ्रमण कर फसल का अवलोकन करते रहें ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। अनेक प्रकार के रोगों और कीटों से नियंत्रण के लिए नीम की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एकड़ जमीन में छिड़काव के लिए 10-12 किलो पत्तियों का प्रयोग करें। इसका प्रयोग कवक जनित रोगों, सुंडी, माहू वगैरह के नियंत्रण के लिए बहुत लाभकारी होता है। किसान भाइयों, नीम की गिरी का 20 लीटर घोल तैयार करने के लिए 1 किलो नीम के बीजों के छिलके उतार कर गिरी को अच्छी प्रकार से कूटें। कूटी हुई गिरी को एक पतले कपड़े में बांधकर रात भर 20 लीटर पानी भिगो दें। अगले दिन इस पोटली को मसल मसल कर निचोड़ दें और इस पानी को छान लें। इस पानी में 20 ग्राम देसी साबुन या 20 ग्राम रीठे का घोल मिला दें। यह घोल दूध के समान सफेद होना चाहिए। इस घोल को कीट और फफूंद नाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। नीम के तेल का 1 लीटर घोल बनाने के लिए 15 से 30 मिलीलीटर तेल को 1 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर इसमें 1 ग्राम देसी साबुन या रीठे का घोल मिलाएं। एक एकड़ की फसल में 1 से 3 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। इस घोल का प्रयोग बनाने के तुरंत बाद करें। ऐसा नहीं करने पर तेल अलग होकर सतह पर फैलने लगता है जिससे यह घोल प्रभावी नहीं होता। नीम के तेल की छिड़काव से गन्ने की फसल में तना बंधक व सीरस बंधक बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों, करंज फलीदार पेड़ है जो मैदानी इलाकों में पाया जाता है। इसके बीजों से तेल मिलता है जो कि रोशनी के लिए जलाने के काम भी आता है। इसकी खल को खाद और पत्तियों को हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। करंज के तेल पत्तियों, गिरी और खल का घोल बनाने के लिए मात्रा और छिड़काव की विधि भी नीम के जैसी ही है। गोमूत्र कीटनाशक के साथ साथ पोटाश और नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत भी है। इसका ज्यादातर प्रयोग फल, सब्जी और बेल वाली फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। गोमूत्र को 5 से 10 गुना पानी के साथ मिलाकर छिड़कने से माहू, सैनिक कीट और शत्रु कीट मर जाते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में ये हुई बातें जैविक कीटनाशक की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था जैविक कीटनाशक एवं इसके फायदे। आलेख एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

अभी आप सुन रहे थे श्री राम चरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम चिंतन आज का विषय है सदाचार का महत्व, आलेख एवं वाचन अनुपमा तिवारी का।

कोई आपकी ईमानदारी, सच्चाई, बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं जान सकता जब तक आप अपने कार्यों से उदाहरण प्रस्तुत ना करें। प्रत्येक परिवार तथा उसके सदस्य एक समाज के अंग हैं। इस समाज से संबंधित कुछ नियम और मर्यादाएं हैं। इन मर्यादाओं का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। सत्य बोलना, चोरी न करना, दूसरों का भला करना और सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, स्त्रियों का सम्मान करना, कुछ ऐसे ही गुण हैं जो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। सदाचार का अर्थ यह है कि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किए बिना अपना गौरव बनाए रखे। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और आचरण। सदाचार शब्द में सत्य आचरण की ओर संकेत किया गया है, ऐसा आचरण जिसमें सब सत्य हो और बिल्कुल भी असत्य ना हो। जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उसे संसार में सम्मान मिलता है।

सदाचार की चमक के आगे संसार की समस्त दौलत की चमक भी फीकी पड़ जाती है। सदाचार एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। ईसा मसीह, गुरु नानक, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्या सागर तथा महात्मा गांधी के पास कोई दौलत नहीं थी, फिर भी वे बादशाह थे। उनके पास सदाचार रूपी अनमोल हीरा था। जब वे जीवित थे तो उन्हें पूरे विश्व का सम्मान प्राप्त था। सदाचार और सद्व्यवहार के कारण ही वे संसार में हमेशा के लिए अमर हो गए। जहाँ सदाचार मनुष्य को सम्मान दिलाता है, वहीं दुराचार मनुष्य को घृणा दिलाता है। भारत में ही नहीं अपितु पूरे संसार में राम की पूजा होती है। राम जैसे सदाचारी का उदाहरण संसार में नहीं मिलता। सदाचारी बनना आसान नहीं है। सदाचारी बनने के लिए घोर प्रयत्न करने पड़ते हैं। सदाचार के बीज बचपन में ही डाले जाते हैं, इसीलिए भारतीय जीवन शैली में ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था थी। 8 से 25 वर्ष की आयु तक बालक गुरु के पास रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता था और सदाचार के गुणों पर चलने का अभ्यास करता था। वह विद्वान लोगों की संगति में रहता और बुरे वातावरण से दूर रहता था, क्योंकि अच्छे चरित्र के निर्माण में वातावरण और संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगति अगर एक वृक्ष है तो सदाचार उस वृक्ष का फल है, इसलिए बुरी संगति की अपेक्षा अकेले रहना अच्छा है। एक तरफ सत्संगति तो दूसरी तरफ अभ्यास तथा प्रभु की सहायता से धैर्य, संतोष, अहिंसा, संयम, क्षमा, मन और वचन से एकता, विद्या, विनम्रता और क्रोध न करना आदि सदाचार के गुण उत्पन्न होते हैं। परिवार, समाज तथा देश की उन्नति के लिए प्रत्येक मनुष्य में सदाचार के गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था सदाचार का महत्व, आलेख एवं वाचन अनुपमा तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिओम शरण के गाए चंद

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में हरि ओम शरण को। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर विजय कुमार सिंह।
1: नमस्कार मित्रों, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है।

0: और हमारा किडनी सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो आप यकीन मानिए आप स्वस्थ हैं। और वर्तमान समय की हम बात करें तो आजकल किडनी की बीमारी हर जगह दिखलाई पड़ रही है, यहाँ तक कि हमारे युवा वर्ग भी इस बीमारी से अछूता नहीं है। तो आज का हमारा विषय है स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत। क्या कारण है कि किडनी की बीमारी अधिक बढ़ रही है, लक्षण क्या है, और खान पान में किन किन चीज़ों का सेवन करें और कौन कौन चीज़ों से हम दूरियां बनाएं ताकि हमारी किडनी स्वस्थ रहे और हम स्वस्थ रहें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय कुमार सिंह। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये किस प्रकार कार्य करता है?
1: हमारे शरीर में मुख्यतः दो किडनियाँ होती हैं जो बीन के आकार की होती हैं। हमारी किडनी के मुख्य कार्य में आता है खून की सफाई करना, जो ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो हमारे शरीर में गंदगी जनरेट होती है उसकी सफाई करना। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है हमारे शरीर में एक्सेसिव जो पानी होता है उसको बाहर निकालना। और तीसरा कार्य होता है हमारे शरीर में मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखना। चौथा काम होता है हमारी किडनी कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसमें मुख्यतः एक इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होता है जो कि हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को मेंटेन करने में मदद करता है।
0: आजकल की वर्तमान जीवन शैली पे हम थोड़ी सी बातचीत करें, हमारा खान पान बिगड़ गया है और हमारे काम करने के तरीके में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। लगातार हम बैठकर कार्य करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में किडनी की जो बीमारियां हैं उसके संकेत क्या हैं और क्यों ये बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है और हमारे युवा वर्ग भी इससे ग्रसित होते जा रहे हैं?
1: एक्चुअली आज के समय में जितने भी लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियाँ हैं, जैसे खान पान से संबंधित और लाइफ स्टाइल में हमारे जो चेंजेज आए हैं, वो सारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, तो उससे रिलेटेड ही किडनी की बीमारी भी बढ़ रही है। जैसे अभी किडनी की बीमारी की वर्ल्ड वाइड या इंडिया में कहें सबसे मुख्य कारण है मधुमेह, डायबिटीज। तो डायबिटीज़ अगर बढ़ता है तो साथ में वो किडनी की बीमारी को भी बढ़ाता है। हाइपरटेंशन है, साथ में मोटापा है, तो ये सब खान पान से रिलेटेड बीमारियाँ ही हैं। और किडनी की बीमारी और अंगों की बीमारियों से भी जुड़ी होती हैं, जैसे अगर हमें हार्ट का दिक्कत होता है, लीवर का दिक्कत होता है, तो उससे भी किडनी पे प्रभाव पड़ता है। बाकी बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं उसी से रिलेटेड किडनी की बीमारी भी बढ़ रही है।
0: हमारे युवा साथी इस बीमारी से क्यों ग्रसित होते जा रहे हैं? पहले ये बीमारियाँ एक खास उम्र के लोगों को हुआ करता था, लेकिन युवा साथी भी इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं।
1: इसका दो कारण है, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है। अभी हम लोग जल्दी इस बीमारी को पता लगा पा रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है फैसिलिटी बढ़ने की वजह से, तो ये बीमारी अर्ली भी पता चल रही है। शायद ये बीमारी पहले युवाओं में या मुख्य तौर पे पता नहीं चलती थी ज़्यादा केस में, तो अभी अर्ली पता चल जाता है। और दूसरा कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज युवाओं में भी बढ़ रहा है, अभी काफ़ी कम उम्र में भी लोगों को हार्ट की बीमारी और डायबिटीज होने का संभावना बढ़ रहा है, उससे किडनी की दिक्कत भी सामने आ रही है।
0: पहचान क्या है किडनी की बीमारी का, इसके प्रमुख लक्षण क्या है ताकि हम सावधान हो जाएं और इसका उपचार हम शुरू कर दें?
1: एक बहुत बड़ा इशू है, या उसको कह सकते हैं अभी लैकिंग है हमारे फील्ड में, कि किडनी की बीमारी बहुत देर से पता चलती है। एक्चुअली इसमें कोई सिम्टम्स जो होते हैं किडनी की बीमारी में, लक्षण जो होते हैं बहुत देर से आते हैं, फिर भी जो लक्षण आते हैं उसमें सामान्य लक्षण है भूख का कम लगना, सुबह सुबह आप जब ब्रश करते हैं तो जी मिचली होना या उल्टी का होना, थकावट और कमजोरी लगना, पैरों में सूजन का आना या आंखों के चारों तरफ सूजन का आना, पेशाब में जलन का होना या पेशाब संबंधी कोई भी समस्या किडनी की दिक्कत को बढ़ा सकती है। अगर किसी के किडनी में पथरी की शिकायत या पेशाब की नली में पथरी रहती है तो उससे दर्द हो जाता है कभी कभी, तो उससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं हमारे बैक साइड में पीछे में दर्द होता है। एक और लक्षण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। अगर किसी को मुख्यतः ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारी 50 साल के बाद होती है, 40 साल के बाद होती है, लेकिन अगर किसी को काफ़ी यंग एज में ब्लड प्रेशर बढ़ा रह रहा है और ब्लड प्रेशर दो तीन दवाओं से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मोस्टली वो उसको किडनी की बीमारी हो सकती है। किडनी की बीमारी को पता लगाने के लिए जाँच काफ़ी सिंपल टेस्ट है जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। उसमें सीरम क्रिएटिनिन, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब जांचें आती हैं और एक रूटीन यूरिन की जांच होती है, ये पहला टेस्ट है हमारा। अगर इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आता है तो हम एक लोग किडनी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो काफ़ी सिंपल टेस्ट है और कहीं भी आपका हो सकता है, किसी भी जगह पे। क्रिएटिनिन एक मेज़र करने का तरीका है किडनी के बीमारी का, वो एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में जमा होता है। वैसे हजारों वेस्ट मटेरियल बॉडी में जमा होते हैं, बट क्रिएटिनिन एक स्टैंडर्ड तरीका है हमारे किडनी के फंक्शन को मेज़र करने का। अगर ये बढ़ता है तो हम लोग मानते हैं कि किडनी की परेशानी है लोगों को। इसका नॉर्मल लेवल 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है
2: जी।
1: अगर इससे ज़्यादा है, कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है तो इसका मतलब किडनी की बीमारी किसी न किसी वजह से है
0: जी। अब डॉक्टर साहब, हम बात करें उपचार की। जांच के उपरांत ये मालूम पड़ता है कि हमें किडनी की बीमारी है, हम समस्या से ग्रसित हैं, तो इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है? क्या इसकी दवाइयां लगातार लेनी पड़ती है, या फिर इसके आरंभिक लक्षण दिखने के बाद कुछ समय तक दवाइयां लेनी पड़ती है और हम ठीक हो जाते हैं?
1: जी, ये डिपेंड करता है कि आप हमारे पास किस स्टेज में आते हैं, किडनी बीमारी के किस स्टेज में आते हैं। और इस बार हमारा वर्ल्ड किडनी डे मार्च में जो मना रहे हैं हम लोग, उसका बेसिक उद्देश्य भी यही है कि हम लोग जो भी किडनी के उपचार है वो सामान्य जनता तक पहुंचा सकें, सभी लोगों तक पहुंचा सकें, और दवाइयां हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकें सभी लोगों तक, जो सबको एक साथ मिल सके। तो इसमें अगर अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज एक्यूट किडनी डिजीज होता है और क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। एक्यूट किडनी डिजीज के इनफाइनाइट कॉज, तब बहुत सारे कारण हैं, तो उसको अगर उस कारण को ठीक किया जाता है तो ये बीमारी पूरी तरह से सही हो सकती है। क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर कोई भी आपका किडनी का फंक्शन का टेस्ट 3 महीने के ऊपर अगर गड़बड़ाता है, 3 महीने से लगातार वो बीमारी चल रही है, तो सामान्यतः ये माना जाता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होगा, तो फिर उसको हम लोग कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जल्दी कोई मरीज आ जाता है तो उसको हम लोग किडनी के फंक्शन को डिक्लाइन को हम लोग डिले कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा। अभी रिसेंट हाल फिलहाल के सालों में बहुत सारी ऐसी दवाइयां आई हैं जिससे हम लोग किडनी के डिजीज़ के बढ़ने को रोक सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, किडनी हमारी स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, और किन किन चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें दूरियाँ बनानी चाहिए?
1: खान पान की बात करें तो जो भी लाइफ
3: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा में, स्वस्थ किडनी स्वस्थ सेहत, इस विषय में आपको बता रहे थे डॉक्टर विजय कुमार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा।

0: भारतीय चलचित्र क्षेत्रे नूतनाध्यायस्य प्रारम्भस्य सूचकत्वेन राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य सायंकाले एकता नगरे 270 राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारान् प्रदास्यति। 45-99 वर्षे प्रारब्धाः एते पुरस्काराः भारतस्य सर्वोच्च चलचित्र सम्माननानि सन्ति। चलचित्र सम्बद्धेषु विभिन्नेषु वर्गेषु कलात्मक प्राविधिक नैपुण्यस्य उत्कृष्टतायै एतानि सम्माननानि प्रदीयन्ते। सूचना प्रसारण मन्त्रालयस्य महत्वपूर्ण नीति सम्बद्धोपक्रमस्य अन्तर्गतं प्रथमवारं राष्ट्रिय राजधानीतः बहिः एषः पुरस्कार समारोहः आयोज्यते। एकतानगरे आयोक्ष्यमानः अयं समारोहः देशस्य विभिन्नेभ्यः प्रदेशेभ्यः चलचित्रक्षेत्रस्य प्रतिभाः एकत्र समानीय एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति भावनां साकारयिष्यति। राष्ट्रपतिः 24-20 दादासाहेब फाल्के पुरस्कारेण वरिष्ठाभिनेता अनंत नागमपि सम्मानयिष्यति। विदेशमंत्री एस जयशंकरः न्यूयॉर्क नगरे आयोजितेषु विविधेषु द्विपक्षीयोपवेशनेषु स्वीय समकक्षैः सह क्षेत्रीयान् वैश्विकान् च विषयानाधृत्य विचार विनिमयं कृतवान्। श्री जयशंकरः रविवासरे न्यूयॉर्क नगरं प्राप्तवान्। सः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81 सत्रे भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं कुर्वन् अस्ति। सितम्बर मासस्य 26 असौ संयुक्त राष्ट्र महासभायाः सामान्य चर्चायां विश्वनेतॄन् सम्बोधयिष्यति। तस्य उपवेशनानाम् आरम्भः फ्रांस देशस्य विदेशमन्त्रिणा जीन नोएल बैरो इत्यनेन सह अभवत्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री जयशंकरेण उक्तं यत् नियमितोपवेशनानि दूरभाष सम्भाषणानि च उभयोः देशयोः विशेष वैश्विक रणनीतिक सहमति सम्बन्धस्य गतिं निरन्तरं स्थापयितुं साहाय्यं कुर्वन्ति। सः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ क्षेत्रीयाः वैश्विकाश्च विषयाः विशेषतः यूक्रेन सम्बद्धं विषयमाधृत्य विचार विनिमयः जातः। उभौ नेतारौ बहुपक्षीय विषयेषु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदि परिष्कारं समेत्य स्वकीय दृष्टेः परस्परं विनिमयं कृतवन्तौ। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये मुक्त व्यापार सन्धिः अस्य वर्षस्य अक्टूबर मासस्य 20 विजयदशमीतः प्रवर्तिष्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना न्यूजीलैंड देशाय भारतस्य 100% निर्यातेभ्यः सर्वेभ्यः वस्तुभ्यः शुल्कमुक्त प्रवेशस्य सौविध्यं प्रदास्यति। श्रीगोयलः उक्तवान् यत् अनेन सन्धिना भारतस्य सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः कृषकेभ्यः हस्तशिल्पिभ्यः तथा हस्ततन्तु शिल्पकारेभ्यश्च महत् लाभं भविष्यति तथा आजीविकायाः नूतनाः अवसराः सृज्यन्ते। एशिया क्रीडासु भारतस्य क्रीडकैः ह्यः जापान देशस्य आइची नागोया नगरे 6 विजितानि, येषु 4 रजत पदकानि 2 च कांस्य पदके स्तः। पुरुषाणां 10 मितायाम् एयर राइफल स्पर्धायां हिमांशु ढिल्लो इत्यनेन रजत पदकं विजितं, रुद्रांश पाटिलेन च कांस्य पदकं प्राप्तम्। अस्याः एव प्रतियोगितायाः पुरुषाणां दल स्पर्धायामपि भारतेन रजत पदकं प्राप्तम्। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इत्यस्यां प्रतिस्पर्धायां सुचिका तारियाल इत्यनया 60 kg मिते वर्गे कांस्य पदकं विजित्य अस्मिन् क्रीडा क्षेत्रे पदकं विजेतृषु भारतीय क्रीडिकासु प्रथमा जाता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में कलात्मक और तकनीकी उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुरूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल की 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। सम्मेलन में 2026 से 2029 के दौरान स्वापक नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। प्रमुख उद्योग सूचकांक ICI में इस वर्ष अगस्त में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई। जुलाई में ये 5% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतरिम अनुमानों के अनुसार पिछले महीने 9 प्रमुख क्षेत्रों में से 5 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। इसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मतदाताओं को नोटिस का जवाब देने और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इनमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 34 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें 14 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिला प्रशासन में भी बदलाव किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। भारत ने एशियाई खेलों में अब तक 4 रजत और 2 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। इससे पहले भारत ने कल निशानेबाजी में 3 पदक जीते, जबकि सुचिका तारियाल ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8:45 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी के संयोजन श्री प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई। कार्यक्रम होगा सेहतनामा। 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे यादों की महफिल।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 2 बजे अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम सदाबहार नगमे हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार होगा हमारे राज्य केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार होगा हमारे राज्य केंद्र से, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से।

5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत। शाम की सभा में 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबंधित कार्यक्रम युवाणी। 6:00 प्रादेशिक समाचार का समय होगा जिसे हम रिले करेंगे हमारे राज्य केंद्र से। 6:02 पर प्रायोजित ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा किसान वाणी। 6:30 पर कृषकों को संबोधित कार्यक्रम होगा ग्रामीण सभा। 7:00 प्रादेशिक समाचार। 7:10 पर जिले में आजकल आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से। 7:15 पर फिल्में गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग। 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश। 8:00 फिल्में गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से। 8:30 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम देशगान। 8:45 पर हिंदी में समाचार। 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 पर उर्दू में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से। 10:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। 11:00 हिंदी में समाचार। 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हमेशा की तरह 11:10 पर हम अपनी सभा का समापन करेंगे।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बांसुरी वादन। आज के कलाकार हैं के एस गोपालकृष्णन, राग है श्री और हरि कंबोजी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में बांसुरी वादन। आज के कलाकार थे के एस गोपाल कृष्णन, राग था श्री और हरि कंबोजी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गजलों का कार्यक्रम स्वर सरिता। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के अनुसार ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष के प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ

0: श्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म संताली फिल्म अंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे।
2: सामूहिक संकल्प साझा दायित्व विषय पर आधारित इस दो दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल को सौंपे गए लक्ष्यों की प्रगति तथा देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और उनके दुरुपयोग से निपटने के लिए की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। कि इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग लेंगे। इस चर्चा से भाग लेने वाले राज्यों, विभागों और संस्थाओं को अगले 3 वर्षों में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने और नशा मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के बीच भविष्य के लिए तैयार साझेदारी को और मजबूत करेगा। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी साझेदार के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस दौरान 25 सितंबर तक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, जिसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन 2026 भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और जन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। आयोजन में जल संसाधनों के बेहतर उपयोग, जल सुरक्षा, जलवायु संबंधी जोखिम, आधुनिक तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और जल बुनियादी ढांचे के लिए नए वित्तीय मॉडल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है। इसी सोच के साथ सरकार का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। इससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना की चर्चा कर रहे हैं।
4: कर्नाटका भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स, जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोटिव विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य का लक्ष्य सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों में बड़े निवेश के साथ भारत की सेमीकंडक्टर राजधानी बनना है। वहीं कपड़ा उत्पादन में कर्नाटका तकनीकी और स्मार्ट वस्त्रों के उत्पादन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कर्नाटका बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन पुर्जों के निर्माण के साथ इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में अग्रणी है। फार्मास्यूटिकल सामग्री निर्माण के लिए PLI योजना चिकित्सा उपकरण निर्माण व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। राज्य सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन और बायोमास ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यहां सौर विनिर्माण और सतत ऊर्जा परियोजनाओं के लिए PLI योजना के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बेंगलुरु से तुकाराम गौड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की।
0: चर्चाओं में यूक्रेन और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मुद्दे प्रमुख रहे। फ्रांस के साथ बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी विचार विमर्श हुआ। स्विट्जरलैंड के साथ बैठक में भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने भारत और वाइसेग्राड समूह के देशों की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। भारत और समूह के चार देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम चर्चा को संबोधित करेंगे। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता, बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनरुपयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चार सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी डोमिनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए गए लोगों के आवेदनों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। राज्य में अभी 19 न्यायाधिकरण हैं। आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय को ये बता सकता है कि इनकी संख्या बढ़ाकर कम से कम 42 की जानी चाहिए। इसमें राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक न्यायाधिकरण हो। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के जमुई जिले में एक नाबालिग छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। एक रिपोर्ट।
5: जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में विशेष जांच दल छापेमारी कर रहा है। वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है।
6: जो वीडियो सोशल मीडिया पर है उसको टेक डाउन करने के लिए विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग के द्वारा कर दी गई है। जो SIT जो गठित हुई है वो लगातार छापामारी में है। अभी तक वीडियो के आधार पर 3 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। वीडियो के आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी जाएगी।
5: खेल मंत्री और जमुई विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्रेयसी सिंह ने भी घटना की निंदा की।
7: मैं जमुई के प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितनी और कार्रवाई करने की आवश्यकता है, यानी कि जो दोषित लोग हैं जो आज भी खुला घूम रहे हैं उनको भी टावर लोकेशन से पकड़कर उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित शाम तक करने का कार्य करें।
5: सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई है। हूतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत ने अब तक 4 रजत और 2 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा हो सकती है। झारखंड में आज कर्म पर्व पूरे पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रकृति, जनजाति संस्कृति और भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक कर्म पर्व झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
8: कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के बेड़ो में आयोजित कर्म पूर्व संध्या समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश वासियों को कर्म पर्व की शुभकामनाएं दी और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। मोराबादी के दीक्षांत मंडप में भी कर्म पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। इस पर्व पर बहने भाई की सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। आज शाम अखरा में पवित्र करम वृक्ष की डाली स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। सोनिया गांधी का मतदाता सूची में नाम शामिल होने की जांच की मांग की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, सोनिया गांधी को झटका, अदालत ने रद्द किया मजिस्ट्रेट का आदेश। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सोनिया को वोटर बनाने का केस खुला। 1980 में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने का आरोप। दैनिक जागरण ने दिया है, वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल होंगे 60 नए विमान, बढ़ेगी ताकत, 60 लाख करोड़ रुपए से खरीदे जाएंगे सोवियत युग के एंटोनोव N-32 विमानों का लेंगे स्थान। लोक सत्य ने सौगात शीर्षक से दिया है, 20 अक्टूबर से न्यूजीलैंड में टैक्स फ्री बिकेगा सामान। न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्ष में $20 अरब निवेश की जताई प्रतिबद्धता। पंजाब केसरी की सुर्खी है, रूस संसदीय चुनाव में पुतिन की पार्टी का दबदबा, 450 में से 355 सीटें जीती। क्रीमिया समेत यूक्रेन से कब्जाए 4 क्षेत्रों में भी वोटिंग। अमर उजाला ने पहल शीर्षक से लिखा है, छत पर मुफ्त सोलर पैनल, 1,56,000 तक की सब्सिडी। सीएम ने दिल्ली पीएम सूर्य घर पोर्टल शुरू किया, 400 यूनिट तक मासिक खपत वालों को लाभ, 2,30,000 परिवारों को मुफ्त सोलर पैनल देने का लक्ष्य, सोसाइटी और छोटे घर दायरे में। वहीं जनसत्ता ने एशियाई खेल पर सुर्खी दी है, हिमांशु रुद्रांश ने निशानेबाजी में बिखेरी चमक, भारत ने जीते 4 पदक, कुल पदकों की संख्या 6 हुई। नवभारत टाइम्स के अनुसार सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नगा फिल्म अंग ऑस्कर की दौड़ में शामिल।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति जताई। और जापान एशियाई खेलों में महिला क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. President Draupadi Murmu to present 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia this evening. Union Home Minister Amit Shah to inaugurate National Conference of Anti-Narcotics Task Force heads in New Delhi today. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on sidelines of UN General Assembly in New York. Britain agrees to provide limited military support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. And in women's cricket, India to take on Sri Lanka in gold medal clash at Asian Games in Japan this morning. And now the news in detail. President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards at Ekta Nagar in Kevadia, Gujarat this evening. Instituted in 1954, these awards represent India's highest cinematic honors, recognizing artistic and technical excellence across various categories, namely feature, non-feature, and writing on cinema. As part of a major policy initiative by the Ministry of Information and Broadcasting, the awards are being held outside the national capital. The ceremony at Ekta Nagar brings together cinematic talent from across the country, embodying the spirit of Ek Bharat, Shreshth Bharat. The President will also honour the veteran actor Anant Nag with the Dada Saheb Phalke Award for 2024. Our report.
0: The stage is set and lights are ready in the iconic Ekta Nagar as Kevadia prepares to host the historic 72nd National Film Awards for the first time. Renowned actors, acclaimed filmmakers and technicians from across the country have started arriving at the venue for this grand celebration of Indian cinema. The ceremony honors the outstanding cinematic achievements for the year 2024. Among the major feature film announcements, Article 370 was selected for the best feature film, with Yami Gautam winning Best Actress for her role in the film.

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। विशेष पीएमएलए अदालत ने जांच लंबित होने के आधार पर सुनवाई टालने की मुख्यमंत्री की अर्जी की नामंजूर। बड़गाई जमीन मामले में अब 24 सितंबर को होगी आरोप गठन पर सुनवाई। दिल की बीमारी से पीड़ित राज्य के 25 बच्चों का दूसरा बैच निःशुल्क जटिल सर्जरी के लिए कोच्चि रवाना। पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। पूरे राज्य में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करम पर्व। रांची में 300 से अधिक अखाड़ों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारियां। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी। ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में संपन्न राज्य स्तरीय जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के अंडर 17 बालक और बालिका दोनों वर्गो में सिमडेगा चैंपियन। अंडर 15 बालक वर्ग का खिताब खूंटी को। और अब समाचार विस्तार से। रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जांच लंबित होने के आधार पर सुनवाई टालने की अर्जी खारिज कर दी है। इंटरनेट सर्वर डाउन होने की वजह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बड़गाई जमीन फर्जीवाड़ा मामले में अब आरोप गठन पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे होगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की पहल पर दिल की बीमारी से पीड़ित 25 गरीब बच्चों को मुफ्त इलाज के लिए कोच्चि भेजा गया है। इन बच्चों की जटिल सर्जरी का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जिसमें प्रति बच्चा करीब 10 लाख रुपए का खर्च आएगा।
1: इतने गरीब बच्चे जिनके दिल में छेद हो और इलाज महंगा हो तो कहाँ से कराएंगे। इसको लेकर हम लोगों ने गहन समीक्षा किया और बैठक किया और उसके बाद ये निर्णय लिया कि हम लोग जो बच्चे आएंगे उसका 10 लाख रुपया तक का मुफ्त में इलाज हम अपने बच्चों को कराएंगे, जिसको लेकर कई आवेदन आ रहे हैं और हर जिले से हर पंचायतों से हम लोग आवेदन मांगे हैं। अगर आपके गाँव में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप हमारे विभाग से संपर्क कीजिए, हम लोग उसको नया जीवन देने का काम करेंगे।
0: झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल षाडंगी ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि खनिज संपदा पर राज्य के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
2: जब कंपनी, चाहे वो स्टील कंपनी हो, चाहे पावर की कंपनी हो, चाहे हेवी इंडस्ट्रीज हो, जब ये प्लानिंग करती है कोल खरीदने का, तो कोल के ग्रेड पर उनका निर्णय निर्भर करता है। जो रेलवे का फ्रेट नेटवर्क है उस पर निर्भर करता है, तब उसकी प्राइसिंग तय होती है।
0: गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने माइंस संशोधन कानून पर विपक्ष के विरोध पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सिर्फ माइनिंग से अमीर नहीं बनता और असली खुशहाली सोच से आती है।
3: चोरी की मानसिकता बंद। और कोयला का रेट जो उड़ीसा का होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, वही तो झारखंड का होगा ना। उड़ीसा वाले तो आंदोलन नहीं कर रहे, तेलंगाना वाले आंदोलन नहीं कर रहे, तमिलनाडु वाले आंदोलन नहीं कर रहे, महाराष्ट्र वाले नहीं कर रहे, आप क्यों कर रहे हो भैया? इसलिए कर रहे हो कि आपके कमाई का साधन बंद हो गया है।
0: चतरा में कोयला चोरी के खिलाफ सीआईएसएफ ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। भारी बारिश के बीच की गई छापेमारी ने बल ने 8 टन से अधिक अवैध कोयला बरामद किया है। इस बीच डीआईजी सुमंत सिंह ने पिपरवार और मगध आम्रपाली क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा और गश्त तेज करने के निर्देश दिए। रांची रेल मंडल के किता सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्यों के कारण आज कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। बर्धमान हटिया मेमू गोमो तक और खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस आद्रा स्टेशन तक ही चलेगी। वहीं आसनसोल रांची पैसेंजर का परिचालन मूरी तक सीमित रहेगा, जबकि हटिया सांकी पैसेंजर ट्रेन के दोनों फेरे आज पूरी तरह रद्द रहेंगे।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के डोरंडा ओवर ब्रिज के नीचे हाल ही में हटाई गई अवैध बस्ती के बाद खाली जमीन के इस्तेमाल पर असमंजस बरकरार है। यह जगह अब झाड़ियों से घिर गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव के अनुसार स्थानीय लोगों की मांग और जरूरत के आधार पर यहां जल्द ही पार्क या पार्किंग विकसित करने की योजना बनाई जाएगी।
1: हम लोग बस यही कोशिश करेंगे पहले जगह साफ हो, ओपन हो, क्लियर हो, और अगर वहाँ से जैसे वहाँ झाड़ी अगर उगने गुंजाइश है वहाँ से और कोई शिकायत हो वो हम लोग कर दें। वहाँ के लोगों के लिए अगर कोई और सुविधा दे सकते हैं, हम लोग जगह चुन रहे हैं कि अगर 14-30 के इस तरह के साइज का अगर जमीन मिल जाए और वहाँ टॉयलेट की जरूरत है, कम्युनिटी टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, तो वहाँ भी हम लोग निर्माण कर सकते हैं।
0: प्रमुख प्रकृति पर्व करम आज रांची सहित पूरे राज्य में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि रांची के लगभग 300 अखाड़ा में पारंपरिक गीतों और सामूहिक सांस्कृतिक नृत्यों की भव्य तैयारियां की गई हैं।
2: झारखंड की लोक संस्कृति और प्रकृति आराधना का सबसे बड़ा उत्सव कर्म पर्व आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के ऑड्रे हाउस में कल कर्म पर्व पर संगोष्ठी सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें ढोल नगाड़ों और मांदर की थाप के साथ पारंपरिक कर्म गीतों की गूंज से पूरा परिसर झारखंडी रंग में रंग गया। कर्म पर्व फसलों की सुरक्षा, प्रकृति के सम्मान और भाई बहन के अटूट स्नेह का प्रतीक माना जाता है। आज शाम अखाड़ा में पवित्र कर्म वृक्ष की स्थापित की जाएगी, जिसके बाद रात भर सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों का दौर चलेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: आर्थिक संकट से जूझ रहे रांची के हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC को भेल और NMDC से लगभग 40 करोड़ रुपए के नए वर्क ऑर्डर मिले हैं। हालांकि संस्थान के पूर्ण पुनरुद्धार के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों को अब उद्योग संबंधी केंद्रीय संसदीय समिति के अंतिम फैसले का इंतजार है। इस आदेश से 2 साल से बकाया वेतन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में भारी बदलाव आ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल रांची में वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मौसम थोड़ा धीमा होने पर येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। हॉकी। रांची में संपन्न राज्य स्तरीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में सिमडेगा और खूंटी का दबदबा रहा। अंडर-17 बालक वर्ग के बेहद रोमांचक फाइनल में सिमडेगा ने खूंटी को हराकर खिताब जीता, जबकि अंडर-17 बालिका वर्ग में भी सिमडेगा चैंपियन बनी। वहीं अंडर-15 बालक वर्ग का खिताब खूंटी की टीम ने अपने नाम कर लिया है। झारखंड हॉकी के पदाधिकारी विजय शंकर सिंह ने बताया है कि राज्य स्तर पर चैंपियन बनने वाली ये टीमें अब राष्ट्रीय स्तर की नेहरू हॉकी प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी।
2: झारखंड की लोक संस्कृति और प्रकृति आराधना का सबसे बड़ा उत्सव
3: राज्य स्तरीय नेहरू कप, तो इसमें जो जीतेगा वो दिल्ली जाएगा। और ये जो ग्रास रूट का है, जो अंदर विद्यालय जो होता है, और इसी में से प्लेयर को हम लोग सिलेक्शन भी करते हैं नेशनल के लिए, जो हॉकी झारखंड नेशनल भेजती है, तो इससे ये खिलाड़ियों का फ्यूचर ब्राइट है और आगे भी ब्राइट है।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित विभिन्न अखबारों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 4300 बच्चों की थाली का बजट 32 से 60 हजार होगा, प्रोटीन युक्त आहार बढ़ेगा। हिंदुस्तान की सुर्खी है झारखंड में मिला रूबेला का मरीज, प्रभात खबर लिखता है, खनिज विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार, फाइल मुख्यमंत्री के पास पहुंची। दैनिक जागरण के शब्द हैं, एफआरओ नियुक्ति परीक्षा के उत्तर लिखने में सिंडिकेट ने एआई का किया था इस्तेमाल। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर, विशेष पीएमएलए अदालत ने जांच लंबित होने के आधार पर सुनवाई टालने की मुख्यमंत्री की अर्जी की नामंजूर। बड़गाई जमीन मामले में अब 24 सितंबर को होगी आरोप गठन पर सुनवाई। दिल की बीमारी से पीड़ित राज्य के 25 बच्चों का दूसरा बैच निःशुल्क जटिल सर्जरी के लिए कोच्ची रवाना, पूरा खर्च उठाएगी राज्य सरकार। पूरे राज्य में आज पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करम पर्व। रांची में 300 से अधिक अखड़ों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारियां। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आज और कल भारी बारिश और वज्रपात की दी चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। और रांची में

0: मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: देखिए, बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। अगर किसी वजह से दूसरी जगह भी जाना पड़े तो भी इसका ये जो कार्ड है, इस कार्ड को साथ ले जाए और टीके जरूर लगवाए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
1: इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते ये पहला गाना जिसे हमने लिया है, फिल्म है मधुमति, आवाज लता मंगेशकर की है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त की आवाज़ है, फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। आज हम बात करेंगे झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में एक बेहद महत्वपूर्ण लोक पर्व कर्मा पर्व के बारे में। सबसे पहले तो आप सबों को कर्म पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, कृषि, भाई बहन के प्रेम, सामुदायिक एकता और सुख समृद्धि की कामना से जुड़ी हुई लोक परंपरा है। विशेष रूप से झारखंड के आदिवासी और ग्रामीण समाज में इस पर्व का विशेष महत्व है। कर्मा पर्व में कर्म देवता की पूजा की जाती है। लोक मान्यता के अनुसार कर्म देवता को सुख समृद्धि, उन्नति और अच्छे कर्मों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार और समाज की खुशहाली तथा अच्छी फसल की कामना करते हैं।

एक लोक कथा है। बहुत पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई और एक उनकी बहन रहती थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। बहन भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी, उनका सम्मान करती थी। एक बार कर्मा पर्व का समय आया। बहन ने श्रद्धा और नियम के साथ कर्म देवता की पूजा की और अपने भाइयों की सुख समृद्धि लंबी उम्र की कामना की। उसने कर्म देवता के प्रति पूरी श्रद्धा रखी। लेकिन एक दिन भाइयों ने जाने अनजाने कर्म देवता और उसके कर्म वृक्ष का अपमान कर दिया। लोक कथा के अनुसार इसके बाद परिवार पर संकट आने लगे। घर की सुख समृद्धि समाप्त होने लगी। बहन को जब यह पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उसने कर्म देवता से क्षमा मांगी और भाई और परिवार की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की। कर्म वृक्ष की डाली को सम्मान पूर्वक स्थापित किया, पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना की। उसकी श्रद्धा और अच्छे कर्मों से कर्म देवता प्रसन्न हुए। धीरे धीरे परिवार के संकट दूर होने लगा और घर में सुख समृद्धि लौट आई।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार पलामू। कर्मा पर्व का संबंध ग्रामीण जीवन, खेती किसानी से भी बहुत गहरा है। वर्षा ऋतु के बाद खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं और किसान अच्छी उपज की उम्मीद करते हैं। ऐसे समय में यह पर्व प्रकृति और कृषि के प्रति आभार व्यक्त करने का भी अवसर बन जाता है। किसान अच्छी बारिश, अच्छी फसल, पशु धन की सुरक्षा और परिवार की समृद्धि की कामना करते हैं। कर्मा पर्व के दिन लोग सुबह से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। घर आंगन की साफ सफाई की जाती है। कई स्थानों पर महिलाएं और युवतियां उपवास भी रखती हैं। इसके बाद कर्म वृक्ष की शाखा को लाकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। कर्म डाल को सजाया जाता है और उसके सामने पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के दौरान लोग कर्म देवता से परिवार की सुख शांति समृद्धि और अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। कई समुदाय में कर्मा से जुड़ी लोक कथाएं और कर्मा कथा भी सुनाई जाती है। इन कथाओं के माध्यम से अच्छे कर्म, भाईचारे, मेहनत और प्रकृति के सम्मान का संदेश दिया जाता है। कर्मा पर्व की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है उसके लोकगीत और सामूहिक नृत्य। ढोल, मांदर, दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन पर युवक, युवतियां और ग्रामीण सामूहिक रूप से कर्मा गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं होता, बल्कि समुदाय के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का माध्यम भी है। गीतों में प्रकृतिक प्रेम, रिश्ते, खेती, जीवन, सामाजिक भावनाओं की झलक देखने को मिलती है। यही कारण है कि कर्मा पर्व के दौरान गांवों में एक अलग ही उत्साह और उल्लास दिखाई देता है।

कर्मा पर्व में महिलाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वे पूजा की तैयारी करती हैं, पारंपरिक गीत गाती हैं, सामूहिक नृत्य में हिस्सा लेती हैं। कई जगहों पर महिलाएं इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा आभूषण पहनकर उत्सव में शामिल होती हैं। इस तरह कर्मा पर्व हमारी लोक संस्कृति पारंपरिक जीवन शैली को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई जगहों पर महिलाएं फास्टिंग रखती हैं, अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है, उनके सुख के लिए, उनकी शांति के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भगवान कर्म से प्रार्थना करती हैं।

श्रोताओं, कर्मा पर्व हमें पता है आपको क्या संदेश देता है? प्रकृति का सम्मान और उसके साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना। आज जब पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है, तब ऐसे लोक पर्व हमें याद दिलाते हैं कि पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन का आधार हैं। कर्म वृक्ष की पूजा के माध्यम से प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की जाती है। इसलिए कर्मा पर्व की परंपरा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। आज जोहार पलामू में बस इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाजत दें और सुनते रहें ये प्यारा सा गीत।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम भजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच

0: जी वो गरीब, एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
1: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
1: जी,
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजिन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
1: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
1: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
1: बिल्कुल, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशुतोष, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
1: जी,
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
1: जी,
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
1: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
1: जी,
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
1: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के दशक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
0: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
1: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
0: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
1: जी,
0: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
1: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
0: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता।
2: सतोलिया भी मजा दिलाता।

0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना।
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता।
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India, brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर मूर्ख।

0: वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
1: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले?
0: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा। लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई।

0: दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार-बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
1: अरे उठो
2: उठो उठो
1: अरे उठो
3: उठो उठो
2: अरे उठो।
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
1: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
4: अच्छा।
1: परियां परियां नाच रही थी। और हां आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन गया था।

0: चर्चा करते मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: बगल में महारानी थी।
1: ओह
0: लोग झुक झुक कर सलाम।

0: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोच कर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया।
2: भूत?
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,
3: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
4: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
4: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
2: खीर खाए तुम? ऐसे
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
6: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
2: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
6: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
0: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
7: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की नई नीति के रूप में ये पुरस्कार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर दिए जा रहे हैं। एकता नगर में आयोजित समारोह में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाते हुए देश भर से सिनेमा जगत की प्रतिभाएं भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है। राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह लखनऊ और देहरादून में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय परिसरों का शिलान्यास भी करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में तथा देश के 14 राज्य इसमें भाग लेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की। ब्रिटेन ने ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों के हमलों से निपटने के लिए सऊदी अरब को सीमित सैन्य सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। हुतियों के हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब ने ब्रिटेन से मदद मांगी थी। इसके अंतर्गत ब्रिटेन आने वाले दिनों में एक वॉयजर विमान तैनात करेगा। ये विमान हवा में विमानों में ईंधन भरने की सुविधा देगा। ब्रिटेन और सऊदी अरब लंबे समय से सैन्य सहयोगी हैं। भारत घरेलू ऊर्जा उपलब्धता बुनियादी ढांचे की मंजूरी, जल के पुनर्प्रयोग और महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित 4 सर्वसम्मत प्रस्तावों को अपनाने में G20 के अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। ये प्रस्ताव अमेरिका में टेक्सास के ह्यूस्टन में व्हाइट हाउस नेशनल एनर्जी

मेंटेनेंस काउंसिल, ऊर्जा और गृह विभाग तथा पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की 3 दिन की बैठक में पारित किए गए। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर बैठक की। उसमें दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम और नोटिस जारी करने के कारण सार्वजनिक किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में और मजबूत होकर बहुत गहरे दबाव में बदल सकता है। इसके प्रभाव से आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश हो सकती है। जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज स्वर्ण पदक मुकाबले में श्रीलंका से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The Best Actor honor is shared by Mammootty for Brahmayugam and Karthik Aaryan for Chandu Champion. Rajkumar Periyasamy earned the Best Direction for Amran, while Kalki 2898ED was named Best Popular Film providing wholesome entertainment. Randeep Hooda won the Best Debut Director for Swatantraveer Savarkar. In the non-feature category, the Marathi film Bhangar was named Best Non-Feature Film, while director Anand L. Rai was selected for the Best Direction for Statue of Unity Ekta Ka Prateek. Raviraj Murmu took the Best Debut Director Non-Feature category honor for the Santhali film Angan. With Chirag Buraniya from Ektanagar, Aparna Khont, Akashwani News, Ahmedabad.
1: Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the 3rd National Conference of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, Heads of States and Union Territories in New Delhi today. The 2-day conference, which will be organized by the Narcotics Control Bureau, NCB, will serve as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Based on the theme, United Resolve, Shared Responsibility, the conference will discuss the role of the ANTFs in attaining the envisaged vision of narcotics control. The Ministry of Home Affairs said, during the event, Mr. Shah will release television commercials to spread awareness amongst people about drug abuse. External Affairs Minister S. Jaishankar held talks with his counterparts from France, Ecuador, Slovakia and Switzerland on the sidelines of UN General Assembly in New York last night and discussed regional and global issues. Mr. Jaishankar arrived in New York City on Sunday, leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh has requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, a new front in the wider war that began with US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Google has been fined €403 million by Ireland's Data Protection Commission for breaking strict EU privacy rules regarding how it tracks people. Regulators found that between 2018 and 20, Google unlawfully tracked and processed users' location information through three main features: its web and app activity settings, its location history mapping tool, and location accuracy feature built into the Android operating system. Indian equity markets opened marginally higher today, tracking positive global cues and a correction in crude oil prices. At 9:20 a.m., Sensex was up 64 points at 74,914, while Nifty gained 34 points to 23,449. And in women's cricket, India will face Sri Lanka in the gold medal clash at Asian Games in Nice in Japan today. The match will begin at 10:30 a.m. Indian time. India sealed their spot in the final with a dominant 114-run victory over Bangladesh. And that is the end of this news bulletin.
2: के चांसेस आपके बढ़ते जाते हैं
3: जी. तो डॉक्टर अजीत, हमारे श्रोताओं को बताइए कि क्या इसका हृदय से भी कुछ संबंध रहता है, क्योंकि ये जो खून पतला करने की बात आपने बताई, तो कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उन्हें भी इस तरह के कुछ इलाज होते हैं,
2: बहुत.
3: तो इसका क्या संबंध
2: खून है? अगर गाढ़ा हो जाए उम्र के हिसाब से, अगर खून की जो ब्रेन की नसें हैं वो पतली होती जा रही है, तो जितना ब्लड ऊपर जाना चाहिए वो पाइपलाइन छोटी होती जा रही है, खून गाढ़ा हो गया, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो इन मरीजों में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते रहते हैं. तो जब भी पेशेंट को स्ट्रोक आता है, एज अ न्यूरो हम उनका हार्ट का भी जांच करते हैं, देखने के लिए कि कहीं उनको सेम प्रॉब्लम हार्ट में भी तो नहीं है. तो दोनों का इलाज वही है, खून पतला करने की दवाइयां, बट उनका जो डोसेज है वो चेंज होते रहता है.
3: जी जी.
2: तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रोक आ रहा है और हार्ट एकदम अच्छे है, काफी पेशेंट में दोनों दिक्कत होना बहुत कॉमन है.
3: जी जी. तो डॉक्टर तक पहुंचने के पहले इनिशियल स्टेज पर कोई घरेलू इलाज भी संभव है, मसाज वगैरह कुछ ऐसा करना चाहिए?
2: ये एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम बोलते हैं, जैसे हार्ट का जब भी बोला जाता है कि हार्ट अटैक आ रहा है या छाती में पाल्पिटेशन है, घबराहट हो रही है, तो काफी बार आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि ये वाली एक दवाई घर पे रखी है जिसका नाम बोलते हैं डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन, और उसको तुरंत खा लो. तो ये किसी हद तक हार्ट में भी अच्छी चीज है, बट जब भी हम बोले कि आपको ब्रेन के सिम्टम्स हैं, उसमें आप खुद से बिल्कुल भी दवाई लेने की कोशिश नहीं करना. क्यों, क्या दिक्कत होती है? जैसे मैंने बताया 85% लोगों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बट 15% लोगों में ब्रेन हेमरेज रहता है, और दोनों के सिम्टम्स लक्षण ऑलमोस्ट एक ही है. तो अगर आपने वही सोशल मीडिया पे आधी इन्फॉर्मेशन से खुद से दवाई खाने की कोशिश की, और अगर गलती से आपके जो ब्रेन में कंडीशन है वो ब्रेन हेमरेज था और ऊपर से आपने खून पतला करने की दवाई खा ली, तो जो दिक्कत है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। ब्रेन
3: जी
2: हेमरेज है, आपने खून पतला करने की दवाई खा ली और वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा।
3: ओके
2: तो बिना चेक किए, बिना न्यूरो के सलाह के खुद से दवाई नहीं खाना।
3: जी
2: द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जितना जल्दी आप अस्पताल पहुंच सको पहुंच जाइए, रादर देन किसी डॉक्टर को फोन पे एक बार बात कर लूं। ब्रेन में अभी तक अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है।
3: बिल्कुल, और एक जमाना था जबकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए, अभी तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत नंबर रखना चाहिए। लोग सोचते हैं कि हम पहले से एम्बुलेंस का नंबर नहीं रखेंगे, अगर रखेंगे तो नौबत आ जाएगी, तो इन सब मिथ से बाहर आना चाहिए, है ना।
2: उसमें ऐसा है कि आप दिक्कत होने के बाद अगर सब कोशिश करो तो उसमें नुकसान सिर्फ पेशेंट का ही है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो हम बोलते हैं जैसे आपने बताया कि फोन नंबर रखिए, मैं ये बोलूंगा आपके आसपास कौन से अस्पताल ऐसे हैं जहां पे 24 घंटा ब्रेन की सारे स्कैन एंजियोग्राफी की सुविधा हो। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के पहले एक पता होना चाहिए, बीमारी होने का इंतजार मत कीजिए।
3: जी जी,
2: उससे भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि अभी तक बॉम्बे जैसे शहर में ब्रेन और हार्ट ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो आपका पूरा जो खर्च है
3: जी,
2: वो एक साथ सब साफ हो जाता है।
3: जी जी,
2: बाकी छोटी जो बीमारियां हैं अपेंडिक्स बोलिए हर्निया, ये फिर भी एक छोटे कहीं नर्सिंग होम में मैनेज हो जाते हैं। बट ब्रेन और हार्ट का ऐसा है कि बीमारियां होती कम है बट हो तो बर्डन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं।
3: बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई, और हम एक जरूरी बात आपको याद दिला रहे हैं कि यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, बताइए कौन सा गाना हम सुनवाए।
2: पसंद का, मैं विविध भारती में आया हूँ तो आई थिंक पुराने एक सॉन्ग का मन है मेरा, फ्रॉम द मूवी लव साथिया तूने क्या किया बाय आई थिंक SP बालसुब्रमण्यम।
3: जी, SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमें बताइए कि जब स्ट्रोक आता है, ब्रेन स्ट्रोक, तो जो ट्रीटमेंट शुरू होता है तो इसमें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये कितना कारगर होता है और कितना ज़रूरी होता है?
1: दवाइयों का जो रोल है इसमें या डॉक्टर्स का जो रोल है वो पहले 5-7 दिन, 10 दिन मैक्सिमम, उसके बाद जो भी इलाज है उसको हम बोलते हैं नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर मतलब एक अच्छा स्किल्ड नर्स, जो भी ब्रदर बोलो सिस्टर्स बोलो, वो एक केयर टेकर। अगर पेशेंट तुरंत चल फिर नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए घर पे सुविधा, जो उनको उठा के बिठाए, चलाए, वॉशरूम ले जाए, और प्लस स्पीच थेरेपिस्ट। तो सारे मरीजों में स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम बोलते हैं कि बाएं तरफ का स्ट्रोक है तो उनको महीना 2 महीना स्पीच फिजियोथेरेपी, तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि डॉक्टर से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है, स्ट्रोक बढ़ना नहीं चाहिए, गाइडेंस दे दीजिए बस। बट जब मरीज अस्पताल में आया, ऑलरेडी स्ट्रोक काफी बड़ा था, तो उसमें बहुत कुछ ज्यादा करने जैसा रहता नहीं है। आप दवाई दो, फैमिली को काउंसिल कीजिए 4-5 दिन 7 दिन, एक बार लगा वो स्टेबल हो जाए तो हम बहुत दिन तक इनको अस्पताल में रखने का कोई फायदा नहीं होता है। 5-7 दिन बाद हम उनको बोलते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं, जो कुछ सर्जरी या दवाइयों के बाद जो मरीजों को महीना 2 महीना केयर टेकर कैसे काम करते हैं वो सिखाया जाते हैं। तो जितना डॉक्टर्स का रोल है स्ट्रोक में, उससे कहीं ज्यादा मैं बोलूंगा जो रिहैब सेंटर्स होते हैं छोटे छोटे फिजियोथेरेपिस्ट, उनका उतना इक्वली कॉन्ट्रीब्यूशन है।
0: जी, संवेदना के स्तर पर, मानसिक स्तर पर भी परिवार की भूमिका होती है, तो कैसी भूमिका होनी चाहिए परिवार
1: की? सबसे मुश्किल काम जो आई थिंक ब्रेन की कोई भी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर बोलो, ब्रेन स्ट्रोक बोलो, उसमें फैमिली का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या एज अ डॉक्टर मुझे जो उनको समझाना पड़ता है, वो सबसे मुश्किल काम। क्योंकि काफी बार पेशेंट जब आता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहे। परिवार का ये उम्मीद एक्सपेक्टेशन रहता है कि पेशेंट आज भर्ती हुआ है, 2 दिन हम दवाई देंगे और कल चल के घर चला जाएगा। तो वो जो एक डिनायल वाले फेज में रहते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कल तक तो हमारा मरीज एकदम अच्छा था, आज अचानक कैसे उनका हाथ पैर काम नहीं कर रहे, 3 दिन से अस्पताल में रखे फिर भी अभी चल क्यों नहीं पा रहे हैं। तो वो एक टैकल करना हमारा काम है कि अच्छे से उनको रिलेटिव्स को बिठा के बात कीजिए। काफी पेशेंट मान जाते हैं फैमिली

0: काफ़ी बार होते हैं कि नहीं हमको और कहीं जाना है, अल्टीमेटली उसके इलाज में कोई अंतर नहीं होता है, बट जब सेम चीज़ दो अलग अलग डॉक्टर ने उनको बोल दिया, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड ओपिनियन,
1: जी
0: दोनों तीनों ने उनको वही समझाया, तब वो घूम फिर के बोलते हैं हाँ डॉक्टर साहब आपने जो बताया वही
1: वो
0: सही
1: सही
0: था।
1: था
0: बट उसमें है कि आप किसी को ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि
1: जी
0: बीमारी का जो आउटकम है वो
1: हाँ
0: समय के हिसाब से चेंज होता रहता है।
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि आप बड़े जगह रखो तो बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उनको
1: जी
0: समझाना काफी मुश्किल
1: मुश्किल
0: बोल
1: होता
0: सकता
1: है
0: हूँ।
1: जी। और वो सब भी परिवार वाले जो कहते हैं संवेदना, मतलब रिश्तेदार, कि अरे फलाने को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो ऑन द स्पॉट चले गए हो,
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो
0: तो वो जो एक
1: ये
0: मिथ है
1: जो
0: कि मेरे
1: बात
0: गांव
1: है।
0: में तो ऐसा हुआ था, हमने
1: हाँ
0: उनको एक ऐसा सिरप पिलाया तो आप भी कुछ दे दीजिए,
1: हाँ
0: तो अब
1: हाँ
0: जैसे हम तो एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं इसमें तो कुछ है नहीं,
1: जी
0: बट
1: जी
0: जब भी ऐसा है कि पेशेंट रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट उनकी फैमिली वो सारी कुछ कोशिश करेंगे,
1: जी
0: मतलब अदर देन एलोपैथी कुछ होम्योपैथिक पिल्स दे दो, कुछ आयुर्वेदिक का ये पिला दो। तो हम तो ये बोलते हैं कि आपको जिस पे भरोसा है आप वो कंटिन्यू कीजिए, हमारी तरफ से गिन के तीन चार जो भी दवाइयां हैं वो कंटिन्यू करो, आपको जिससे फायदा हो जाए वो।
1: लेकिन फिलहाल तो यही है कि अभी इसका इलाज मेडिकल साइंस जो एलोपैथ में ही है। अच्छा, एक बार स्ट्रोक आने पर क्या दोबारा खतरा बना रहता है?
0: काफी पेशेंट है जो स्ट्रोक से रिकवर हुए और वो इतने खुश हो जाते हैं 6 महीने साल भर में कि मैं तो खुश हो गया है, डॉक्टर मुझे जबरदस्ती दवाइयाँ खून पतला करने की, जो भी कॉमन नाम इकोस्प्रिन क्लोपिडोग्रेप, अब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चल रहा हूँ खेल रहा हूँ भाग रहा हूँ, जबरदस्ती डॉक्टर मुझे दवाई दे रहे हैं उनके फायदे के लिए, बंद कर देते हैं, कुछ नया एडिक्शन शुरू हो गया, उम्र के हिसाब से खून की नस कमजोर होते जा रही है, अल्टीमेटली वो पेशेंट दोबारा स्ट्रोक करके आते ही हैं।
1: ओहो
0: तो स्ट्रोक हुआ, आपने खून पतला करने की दवाई शुरू की, अगर बंद कर दो तो स्ट्रोक आ सकता है? नहीं, स्ट्रोक आता ही है, इट इज अ
1: अच्छा
0: मैटर ऑफ यू ईयर्स, दो
1: जी
0: साल 5 साल, और जब दोबारा स्ट्रोक आता है तो उसमें रिकवरी की हम उतना फास्ट उम्मीद नहीं करते हैं। तो
1: जी
0: इसलिए
1: जी
0: हमारा एक ही मैसेज है कि अगर दवाइयाँ शुरू है वो अपने लेवल पे आप बंद मत कीजिए, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो फिर अदरवाइज बेटर टू कंटिन्यू,
1: जी
0: दो
1: जी
0: हजार एकदम सेफ दवाइयाँ रहती है। मन में डर क्या रहता है कि दवाई इतने समय तक खाऊं तो उससे मेरा कुछ लंग किडनी लीवर पे कुछ साइड इफेक्ट ना आ जाए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दिया जा रहा होगा कि इससे आपको दिक्कत ना हो,
1: बिल्कुल।
0: ऐसा।
1: और डॉक्टर के पास सबके कारण होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की बात आंख बंद करके मान लेनी चाहिए। और हमें यहाँ पर आंख बंद करके एक गाना सुन लेना चाहिए। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना हम सुनवाएं?
0: अब मैं सुनना चाहूंगा एक ओल्ड सॉन्ग ही है, मैं पल दो पल का शायर हूं।
1: जी सुनते हैं कभी कभी फिल्म का गाना,
0: जी हाँ।
1: सुनते हैं ये।

0: डॉक्टर साहब, ब्रेन स्ट्रोक की बात हम कर रहे थे गाने से पहले। एक बड़ी बीमारी है, हमें तो लगता है कि हर कोई उससे पीड़ित है, और सिर पकड़ के बैठ जाना, चाहे वो दफ्तर हो चाहे घर हो, कि सिर दर्द हो रहा है। कुछ लोगों को सिर दर्द बाईं तरफ होता है, कुछ लोगों को दाईं तरफ, कुछ को पूरे सिर में। तो इसका क्या फंडा है, क्या कारण है और क्या इलाज है इसका?
1: इसको हम हेडेक बोलते हैं। आई थिंक अभी भी
0: जी
1: जो भी न्यूरो, नॉट ओनली इन मुंबई, आई थिंक जहाँ पे पूरे इंडिया में जो भी न्यूरो प्रैक्टिस करता है, उनके सबसे कॉमन मरीज जो होते होंगे वो ये दर्द के ही है, हेडेक। तो इसमें नॉट ऑल हेडेक्स आर डेंजरस, ये तो ऐसा है स्ट्रेस के कारण होता है। पेशेंट खुद से गूगल पे रिसर्च करके आते हैं, आने के बाद पहला चीज वो यही बोलते हैं, सर मुझे माइग्रेन है, मुझे माइग्रेन की दवाई दे दो।
0: जी जी
1: तो उसका हमारा भी एक आंसर है कि अगर आपको पता है आपको माइग्रेन है
0: तो दवा
1: तो
0: ले लो।
1: नेट पे उसका एक इलाज भी अवेलेबल, आप ले क्यों नहीं लेते हो।
0: बिल्कुल।
1: तो सारे हेडेक जो हैं उसके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी सिटी स्कैन एमआरआई करना ही ऐसा नहीं है। जैसे मैंने स्ट्रोक के लिए आपको बताया था कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो दर्द का एक कॉमन कारण है। तो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही है, आपका मोबाइल बोलो या डिजिटल समय जो जा रहा है स्क्रीन पे, वो सब एक बहुत कॉमन हेडेक के कारण हो रहे हैं। काफ़ी बार हम पेशेंट देखते हैं, कुछ बेसिक दवाइयाँ लिख दिया उसको, जो आप मल्टीविटामिन बोलो या प्लेसिबो बोलते हैं, जो कुछ काम नहीं करती हैं। पेशेंट को 10 दिन दवाई पेशेंट होते दर्द एकदम गायब हो गया, और हम जब देखते हैं क्या दवाई दिया है हमने, तो वो ऑलमोस्ट कुछ नहीं, मल्टीविटामिन दिए थे। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी रहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक हो गया। बट कुछ कुछ दर्द ऐसे हैं जिसमें हम तुरंत देख के बोलते हैं कि इसका एमआरआई करना पड़ेगा, जिसमें हम वो देख के डाउट आता है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया क्लिनिक में, उनकी आंखों का हलचल अच्छे से नहीं हो रहा है, बोलते टाइम जबान एकदम साफ वर्ड्स निकल नहीं पा रहे, चेहरा टेढ़ा हो रहा है, हमने कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट से उनके कान का हियरिंग चेक किया या उनके चलने का स्टाइल, तो सटल साइंस कहीं ना कहीं हम पकड़ लेते हैं। अगर ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कुछ गांठ है, पानी भर गया है, कुछ पुराना चोट लगा था उसका ब्लीडिंग का असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हाथ पैर का मूवमेंट, या और एक आपने देखा होगा हम उनके हाथ पैर पे एक मार के देखते हैं, उसको हैमर बोलते हैं जर्क देखने के लिए। तो अगर वो जर्क कुछ चेंज हुए हैं उन पेशेंट को हम बोलते हैं कि आपका एमआरआई करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी भी ऐसा है 90 से 95% जो हेडेक के पेशेंट है वो बेसिक दवाइयों से एकदम आराम हो जाते हैं। और दवाइयां ऐसी भी नहीं है कि जिसको लंबे समय तक खाना पड़े, कुछ हम स्पेसिफिक एडवाइस देते हैं, इतने बजे खाना खाइए, इतने बजे सोइए, सोते वक्त फोन को आधे घंटे पहले छोड़ दीजिए, और कुछ दवाइयां जो ब्लड में जो फ्लो है उसको कम ज्यादा मैनेज कर रहे हैं, उसी से आराम हो जाते हैं। माइग्रेन जो बीमारी है वो एक्चुअली उतनी कॉमन नहीं है जितना लोग अपने लेवल पे खुद से डिक्लेयर कर देते हैं। और अगर वो माइग्रेन है तो अच्छी चीज ये है कि इलाज हो जाता है, खराब चीज ये है कि उसको जो दवाइयों का कोर्स है वो काफी लंबा चलता है।
0: जी जी।
1: तो काफी लोगों को कॉफी पीने से, किसी को मीठा खाने से, किसी को ऐसा कोई झाड़ू मार रहा है, कोई डस्ट है उससे एलर्जी है, उससे दर्द होता है। बट काफी दर्द ऐसे भी हैं जो कारण सिर में है ही नहीं, उसका कारण है दांतों में, आंखों में, चश्मे का नंबर चेंज हुआ है, कान में कुछ इन्फेक्शन है, साइनस की बीमारी है, तो आप इसको ठीक करो, सिर का दर्द अपने आप गायब हो जाता है।
0: जी। सिर दर्द क्या डॉक्टर साहब पेट की समस्या से भी होता है और ये नाक बंद होने या साइनस की वजह से?
1: एग्जैक्टली, जैसे मैंने बताया चश्मा, नाक, किसी को दांत में इन्फेक्शन हुई, इसको हम बोलते हैं रूट कनाल करवाना है, दांतों में कीड़ी लग गई है, मसूड़ों का प्रॉब्लम है,
0: इसकी वजह से
1: तो
0: सिर दर्द।
1: अल्टीमेटली सारा जो जाएगा सिग्नल वो जाना है ब्रेन पे ही। काफी बार लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे तक खाना नहीं खाया तो मुझे दर्द होने लगा, तो वो गलत नहीं बोल रहे हैं, दिक्कत है पेट की, पेट में जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आप कुछ ना खाओ तो अल्टीमेटली उसका भी सिर पे दर्द। तो ये सब जो दर्द के कारण है उसके लिए हमको कोई स्कैन, एमआरआई, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम 10 मिनट मरीज से बात करो, पेन का पैटर्न कैसा है, कब होता है, क्या करने से अच्छा लगता है, उन बेसिक दवाइयों से ही आराम हो जाता है।
0: जी।
1: तो पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे सिर दर्द हो रहा है, मेरे पड़ोसी को

0: ऐसे ही था, उसको ब्रेन ट्यूमर निकल गया था, तो मैं भी जाके एक एमआरआई करा लूँ। तो हमारे लिए एमआरआई करवाना एकदम आसान चीज़ है, मैं लिख दूँ 10 मिनट में उसका एमआरआई कहीं जाके हो भी जाए।
1: जी
0: तो हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि बिना एमआरआई के आप कैसे उस बीमारी को डायग्नोज कर सको।
1: जी जी
0: तो वो न्यूरो का काम है कि आप कंसल्ट करो, ना कि खुद से एमआरआई कराओ। उसमें कुछ लिखा रहेगा कि साइनसाइटिस है, फिर पेशेंट उसको गूगल पे सर्च करेगा कि इससे मुझे आगे जाके ब्रेन में
1: जी
0: इन्फेक्शन हो सकता है।
1: भाप ले लो
0: तो वो थोड़ा
1: और
0: हमारे लिए मुश्किल काम होता है कि जो
1: जी
0: पेशेंट गूगल से पढ़ लिख के आते हैं,
1: जी
0: दैट इज अ
1: जी
0: हाफ इंफॉर्मेशन,
1: जी और गूगल आजकल बहुत बड़ा डॉक्टर बन
0: हाफ डॉक्टर बोल सकता हूँ
1: गया है
0: मैं।
1: जी, और उससे नुकसान ज्यादा होते हैं फायदे कम,
0: करेक्ट
1: तो इसलिए
0: करेक्ट
1: सिरदर्द भी अगर हो रहा है तो इग्नोर करने की बजाय
0: करेक्ट
1: डॉक्टर
0: करेक्ट
1: से
0: करेक्ट
1: संपर्क
0: करेक्ट
1: कर
0: तो
1: लें
0: वो जो 5% के पेशेंट है जिसको एक्चुअली ब्रेन में दिक्कत है, हमारा टारगेट रहता है हम उसको कैसे कैच कर सके। जैसे
1: जी
0: ब्रेन हेमरेज है तो सिर दर्द हो रहा है, वो खुद से डिस्प्रिन की गोली घर पे खा ले तो ब्रेन हेमरेज बढ़ना ही है। तो हम बोलते हैं आइए हम देखेंगे जांच
1: ओ
0: कौन सी करनी है, सीटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, एंजियोग्राम करना है, बहुत सारी जांच है। तो उसके लिए कौन सा नेसेसरी टेस्ट है, वो आई थिंक बिना देखे बोलना मुश्किल है। उसके लिए
1: जी
0: हमको मरीज को चेक करना ही पड़ता है।
1: जी बिल्कुल। और स्ट्रोक जब आता है तो ब्रेन स्ट्रोक, इसके बाद क्या मरीज एकदम सामान्य जीवन जी पाता है या फिर उसको कहीं तकलीफ होती है कि एबसेंट माइंड होना, याददाश्त पर असर पड़ता है?
0: किस स्टेज पे आते हैं, काफी बार ब्रेन स्ट्रोक इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें हमको सूजन कम करने के लिए सर्जरी भी करनी पड़ती है।
1: अच्छा
0: तो इसका ऐसे कोई ग्रॉस परसेंटेज बोलना काफी मुश्किल है कि कितने स्ट्रोक में पेशेंट कितना रिकवर होगा। एक अगर आप पूछे कि स्ट्रोक होने से डेथ का चांस कितना रहता है, एक जो ओवरऑल आईसीएमआर जो अपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 से 20% डेथ होते हैं अभी भी भारतवर्ष में। तो ये बहुत छोटा नंबर नहीं है। तो ये जो 16 से 20% है, इसको हम अभी भी रोका जा सकते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट एकदम समय पर अस्पताल आ जाए। कुछ ना कुछ जो बोलते हैं परमानेंट पैरालिसिस बोलो, या भले ही पैरालिसिस ना हो पर उनके जो चलने का पैटर्न है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, तो उसका एक परसेंटेज रहता है कि हाथ कितना काम नहीं कर रहे हैं, चेहरा कितना टेढ़ा हुआ है, जैसे सिर के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ है, जैसे मूवी में दिखाते हैं कि सिर पे मार दिया और उसकी आंखों की रोशनी चली गई, तो वो एकदम गलत नहीं है। उसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब। तो अब
1: अच्छा
0: उसका मेन काम रहता है आंखों की रोशनी प्रोवाइड करना। तो अगर किसी को उस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है तो काफी बार एक आंख की रोशनी चली जाती है।
1: जी, तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि ऐसा कोई भी सिम्टम, कोई लक्षण आपको लगता है, दिखाई देता है तो डॉक्टर से संपर्क कर लें।
0: करेक्ट।
1: और हमें इस समय बताइए कि कौन सा गाना आपकी ओर से सुनवाए हम श्रोताओं को।
0: लापता लेडीज का एक फेमस सॉन्ग है अरिजीत का, वो सुनना पसंद करूंगा मैं, सजनी रे,
1: जी
0: बहुत ही
1: सुनते हैं,
0: फेमस सॉन्ग है वो।
1: जी सुनते हैं ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: है ये गाना।
0: करेक्ट।

0: गाने से पहले हम ब्रेन स्ट्रोक की बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत, अब हम ब्रेन ट्यूमर के बारे में आपसे जानकारियां चाहेंगे कि आजकल ब्रेन ट्यूमर भी बहुत कॉमन हो चला है। पहले हम ब्रेन ट्यूमर तो एक सामान्य व्यक्ति जानता ही नहीं था, अभी ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोग बहुत सजग भी रहते हैं। तो ये क्या है और क्या एक तरह से कैंसर है ये?
1: थोड़ी तो खतरनाक बीमारी है। एक ही
0: जी
1: अच्छी चीज़ है कि ओवरऑल जो शरीर में जितने ट्यूमर्स होते हैं उसमें अगर हम ब्रेन ट्यूमर को काउंट करें तो नंबर्स अभी भी काफ़ी कम हैं। जैसे अगर 95% पेशेंट ट्यूमर शरीर के बाहर है,
0: जी
1: ब्रेन ट्यूमर इज़ हार्डली 5 से 7%। तो इट इज़ ओवरऑल गुड फॉर द ह्यूमैनिटी कि ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन बीमारी नहीं है।
0: जी
1: बट जब होती है तो बाकी बीमारियों से ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसका जो इलाज है मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सर्जरी ही करनी पड़ती है, क्योंकि जो ब्रेन का ढांचा है वही धीरे धीरे ट्यूमर के कारण खराब होते जा रहे हैं। पर जैसा आपने पूछा कि हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर होता है, आंसर इज नो। ऑलमोस्ट 70 और 30 ऐसे हैं, 70% ट्यूमर जो होते हैं वो नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें एक बार आप ट्यूमर निकाल दो सर्जरी करके, रेडिएशन या जिससे भी, क्योर हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो 30% ट्यूमर है जिसको सबसे कॉमन बोलते हैं हम ग्लायोब्लास्टोमा, तो ये कैंसर है जिसका अभी तक नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ऐसा परमानेंट क्योर नहीं है। तो जो भी एक निगेटिव माइंडसेट अभी तक जो कम्युनिटी में बना हुआ है कि ब्रेन ट्यूमर है मतलब इसकी
0: कैंसर
1: तो
0: है।
1: मृत्यु तय है, तो वो एकदम गलत भी नहीं है। तो शायद उन्होंने उस 30% वाले पेशेंट को देखा होगा जिसमें पेशेंट ने सर्जरी किया, कीमोथेरेपी ली गई, रेडिएशन दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें बहुत लंबे समय तक लाइफ नहीं रह पाती है। तो बीमारी का नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा या ग्लायोब्लास्टोमा। तो वो शुरुआत से ही स्टेज 4 या ग्रेड 4 में ही डायग्नोज ही होता है। दिक्कत यही है कि वो पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि हुआ, अचानक एक मिर्गी झटका आया, कुछ सिर दर्द हुआ, कहीं गिर गए, या देखने में प्रॉब्लम है, एमआरआई किया गया और उसमें डॉक्टर ने सीधा बताया कि आपको तो ग्रेड 4। ये मुश्किल है परिवार के लिए, फैमिली के लिए, इवन डॉक्टर्स के लिए जो ट्रीट करना। एक ही अच्छी चीज़ है कि उसका जो इंसिडेंस है अभी तक कितने लोगों को होता है वो बहुत कम है। एवरेज अगर इंडिया में देखा जाए कि हर साल कितने ब्रेन ट्यूमर होते होंगे तो वो नंबर एक 40 से 50 हज़ार के आसपास है।
0: जी
1: फिर एमआरआई आने के कारण ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, बट ये अच्छा है कि एमआरआई के कारण हम उसको जल्दी पिकअप कर पा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो इसके क्या लक्षण कुछ भी नहीं होते? अचानक कोई तेज सिर दर्द और
1: देखो जैसे
0: अचानक
1: ब्रेन स्ट्रोक का हमने बताया था इसके पहले कि किस हिस्से में हो रहा है वो हिसाब से हाथ पैर में कमजोरी या बोलने में दिक्कत। ब्रेन ट्यूमर में बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं। नॉन
0: दबे
1: स्पेसिफिक
0: पांव आने
1: मतलब
0: वाली बीमारी।
1: करेक्ट, तो काफी बार हल्का सा सर दर्द है, पेशेंट दवाइयां खा के चल रहा है ठीक ठाक, फिर धीरे धीरे वो दर्द का फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, या इवन दवाई खाने के बावजूद दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो एक डाउट आता है। तो उसमें हम तुरंत बोलते हैं कि एमआरआई कराइए। दूसरा वॉमिटिंग होती है इसमें, तब तो पेशेंट बोले वॉमिटिंग तो मुझे पेट के कारण हो सकती है, ऐसा नहीं। अगर सिर दर्द के साथ में उल्टी हो रही है और उसी वक्त आपको दिखाई देने में दिक्कत है, जिसको हम बोलते हैं ब्लरिंग ऑफ विजन, आंखों के सामने अचानक ऐसा धुंधलापन आ जाना, तो ये तीनों चीजें, सर दर्द, उल्टी और आंखों के सामने धुंधलापन, ऐसा अगर होता है तो वो एक टाइप ऑफ ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तब तो ये सारे सिम्टम्स इतने कॉमन है समाज में कि आप हर पेशेंट को बोलो जाके एमआरआई कर लो, अगेन ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हम अब बॉम्बे में हैं, मुंबई में हैं, तो यहाँ तो एमआरआई इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी Tier 3 सिटी में जाइए, पेरीफेरी
0: जी
1: में, वहाँ एमआरआई थोड़े आपको न्यूरो के पास पहुँचना ही इतना मुश्किल हो जाता है,
0: जी
1: तो हर
0: जी
1: एक का एमआरआई करना मुश्किल होता है।
0: तो ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन से प्रकार हैं
1: वैसे
0: जिससे?
1: एक होता है प्रकार, जैसे हम डॉक्टर सर्जरी की तरफ से हम अपना काउंट करते हैं कि कैंसर है कि नॉन कैंसर है। दूसरा होता है जो WHO ने टाइप दे के रखे हैं, दैट इज जस्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन, उसमें तो 20-25 से ज्यादा है। सामने वाले पेशेंट को समझाने के लिए हमारे लिए दो ही ट्यूमर होते हैं, कैंसर वर्सेस नॉन कैंसर। तो ऑलमोस्ट 70% नॉन कैंसर है जिसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं।
0: जी तो यहाँ पर एक गाना सुन ले डॉक्टर साहब।
1: एक फिल्म है राजा हिंदुस्तानी आमिर खान का, तो उसमें एक परदेसी परदेसी सॉन्ग सुनना पसंद करूंगा।
0: जी सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि तो गंभीर बीमारी है और अब आपने भी कह दिया कि इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, और सही बात आपने बताई क्योंकि सजग और सचेत होना बहुत जरूरी है। तो क्या दवाओं से ठीक हो सकता है या ऑपरेशन ही जरूरी होता है ब्रेन ट्यूमर में?
1: जो कैंसर वाले पेशेंट है, जो MRI देख के वो जानकारी लग जाती है कि ये कैंसर है कि नहीं, तो जो मैंने बताया जो खराब वाले ट्यूमर है, ग्लायोमा जिसको बोलते हैं, उसमें सर्जरी के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी आ रही है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो ये सब मेडिकल टर्म है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च करने की जरूरत मेरे श्रोताओं को न पड़े तो अच्छा है। मेनिंजोमा, श्वानोमा, ये सब ऐसे ट्यूमर है जो बहुत स्लो ग्रो होते हैं, स्लो मतलब हर साल में 2 mm 4 mm की स्पीड से बढ़ते हैं।
0: जी
1: तो अगर मरीज बहुत जल्दी अगर आता है, एवरेज साइज ट्यूमर का 1-2 सेंटीमीटर के आसपास है, तो अभी कुछ कुछ मशीनें हैं बॉम्बे में, तो एटलीस्ट 2-3 जगह पे अवेलेबल हैं। आई एम नॉट श्योर कि छोटे शहरों में कितनी जगह वो मशीन होगी। उसको हम बोलते हैं गामा नाइफ मशीन या साइबर नाइफ मशीन, तो इसमें शब्द नाइफ यूज किया जाता है, बट ये सर्जरी नहीं होती है, ये एक प्रकार का रेडिएशन है जिसमें आप एक सिंगल रेडिएशन का शॉट लेके वो ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो जाता है। बट प्रॉब्लम एक ही है, वो हम कौन से स्टेज पे उसको डायग्नोस करते हैं। जब मरीज आता है उसमें ट्यूमर का साइज कितना है, 2-3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम उसको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, वो कम जगह पे है। जैसे आपने बोला दवाइयों से, अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसी कोई दवाइयां नहीं है जिससे हम ट्यूमर को पिघला सके। तो या तो आप उसको छोड़ दीजिए अगर वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ रहा है तो उसमें सर्जरी के अलावा कोई चारा नहीं है।
0: जी, तो ट्यूमर का ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके बाद की जो सावधानी है वो क्या सावधानी?

0: वो इंडिपेंडेंट हो ही जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ कैंसर निकल जाए जिसमें उनको जो ब्रेन की सिकाई होती है जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन या लाइट थेरेपी, तो वो जो समय रहता है वो ऑलमोस्ट 5 से 6 हफ्ते चले जाते हैं। बट जो नॉन कैंसरस ट्यूमर है उसमें हम बोलते हैं कि रिकवरी होना इज अ नॉर्मल थिंग। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो मन में डर रहता है कि ब्रेन ट्यूमर है अब तो ये दोबारा काम पे नहीं जा पाएगा, चल नहीं पाएगा, वो एक मैं बोल सकता हूँ कि 2026 में तो उसको हम बोल सकते हैं मिथ है। मतलब वो गलत धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के बाद आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। सर्जरी का एम ही यही है कि वो एक अपनी नॉर्मल सामान्य जिंदगी जी सके। हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि आपकी ब्रेन की सर्जरी हुई है तो आपको फिट्स आने का कुछ खतरा है, तो जैसे ड्राइविंग हो गया या फिर कुछ ऐसे ऊंचाइयों पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर है वो, और दूसरा स्विमिंग, ये दो तीन चीज में हम बोलते हैं 6 महीना साल भर आपको अवॉइड करना अच्छा है।
1: डॉक्टर साहब, फिट्स का नाम आपने लिया तो हमारे जहन में एक बात आई। हमने कई लोगों को देखा है कि क्या हुआ, अचानक चक्कर आया, फिट्स आ गए, लेकिन वो बाकी जिंदगी भर आराम से काम करते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो मतलब फिट्स आना यानी ब्रेन ट्यूमर होना
0: एक
1: जरूरी
0: एक लक्षण है उसका। काफी बार हमने एमआरआई किया, पेशेंट को फिट्स आया था, एमआरआई करके देखे, एमआरआई एकदम नॉर्मल है। तो एमआरआई करने का मेन रोल वही है कि उसमें कुछ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, मतलब ब्रेन का ढांचा ही बदल गया है क्या, वो देखने के लिए।
1: जी
0: बट नॉर्मल एमआरआई है और आपको फिट्स नहीं आएगा ऐसा नहीं है।
1: जी
0: तो दाएं और बाएं ब्रेन का आपस में जो कनेक्शन है
1: जी
0: वो कहीं कुछ हिल गया है, या फिर बचपन से ही उनका ब्रेन का कुछ डेवलपमेंट किसी हिस्से में अच्छे से हुआ ही नहीं है, उससे ही फिट्स आते। तो सारे फिट्स मतलब ब्रेन ट्यूमर ही होंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं जिसको फिट्स आया इसलिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और उससे ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ। तो
1: जी
0: उसमें ब्रेन में कुछ हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब, कान के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो काफी सेंसिटिव रहता है ब्रेन का,
1: जी जी
0: तो वहां अगर कुछ गांठ होता है किसी को तो उसमें फिट्स आना काफी कॉमन बीमारी है।
1: मतलब ब्रेन में गांठ भी एक बीमारी है,
0: करेक्ट करेक्ट,
1: तो उसके क्या लक्षण है?
0: उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं
1: ट्यूमर
0: गांठ।
1: वही
0: तो
1: है
0: बेसिकली कैंसर ही ब्रेन ट्यूमर ऐसा नहीं है,
1: जी।
0: जैसे बाकी के शरीर में कहीं पे भी हाथ में कुछ सूजन आ जाए कुछ भी हो, ब्रेन में कहीं पे भी कुछ गांठ दिखे तो बताने के लिए उसको हम बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर है। बट ब्रेन ट्यूमर ही कैंसर है ऐसा नहीं है, दो अलग अलग चीज है।
1: जी, तो दोनों में कितनी समानता है और कितना कैसा अंतर है कि कैसे पता चले कि कैंसर है कि ब्रेन ट्यूमर है?
0: एमआरआई हमको एक वो इजीली जो बोलते हैं हम डिस्टिंग्विश कर ही देता है कि कैंसर है कि नहीं है,
1: और
0: तो
1: फिर
0: उसके
1: इसका
0: हिसाब से इलाज डिसाइड होते हैं। सादा गांठ है, मरीज को बहुत दिक्कत नहीं है, 2-3 साल हमने फॉलोअप कर लिया, साइज उतने पे ही रुका हुआ है और मेन उसको दर्द नहीं है, फिट्स नहीं आ रही है, साइज ट्यूमर का बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे मरीजों को सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हम
1: जी
0: उनको सिर्फ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, मतलब आप सालाना आके दिखाते रहिए, कभी भी ऐसा लगा दिक्कत बढ़ते जा रही है तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि किन उम्र के लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा ज्यादा होता है, या महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में ज्यादा, ऐसा कुछ
0: ऐसा
1: कहते हैं?
0: जेंडर के हिसाब से तो नहीं है अभी, बट एवरेज एज जो हम देखते हैं वो 40 से 60 वाला एज इज वेरी कॉमन। बट एक पीडियाट्रिक ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं, मतलब बच्चों में ब्रेन की बीमारी, समहाउ दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक 15 से 20% पॉपुलेशन ऐसा है, 100 ब्रेन ट्यूमर अगर हम करें तो 15 से 20% जो पेशेंट है वो बच्चों में दिखाया। बच्चों में जब ट्यूमर होता है तो वो कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो बच्चों में जब भी हो दर्द तो उसको हम बोलते हैं अवॉइड मत कीजिए, एक बार आके उनको दिखा देना जरूरी है। एवरेज एज एज ऑफ नाउ 2026 में एक 50-60 वाला एज जो है वो कॉमन। बट ऐसा मेल फीमेल कोई रिलेशन नहीं, खाने
1: जी
0: पीने से कोई संबंध, आंसर इज नो। तो अगर सबसे पहले जब पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो, फैमिली का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, सर ये तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, कुछ खराब नशा नहीं, तो इनको ट्यूमर कैसे हुआ? हमारी तरफ से एक यूनिवर्सल आंसर कि अभी तक ब्रेन ट्यूमर का अगर आप पूछो कारण क्या है किसी को नहीं पता।
1: जी
0: जैसे अगर स्मोकिंग और लंग कैंसर, इसका एक काफी स्ट्रांग कनेक्शन है, बट वैसे ही ब्रेन ट्यूमर के लगा आप पूछो कोई कारण है, आंसर इज नो। एक दो जेनेटिक बीमारियां हैं बट उसके नंबर्स इतने कम हैं फॉर्चुनेटली कि उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो पाता है।
1: जी, तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर दोनों में क्या डाइट का ख्याल रखना जरूरी होता है? किस तरह की डाइट
0: स्ट्रोक,
1: जो?
0: यस स्ट्रोक में वही है कि जैसे बहुत ऑयली बहुत मीठा शुगर बढ़ते जा रहा है तो उसके कारण आपको स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। बट ट्यूमर में समहाउ कोई डायरेक्ट इसका खाने का कनेक्शन नहीं है अभी तक।
1: जी, और ट्यूमर मस्तिष्क के ब्रेन के किस हिस्से में है, तो इसका इलाज पर भी असर पड़ता है?
0: 100% यस। जब भी ट्यूमर एकदम बाहरी सतह पे है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजोमा, तो वो
1: जी
0: सब निकालना आसान, कॉम्प्लिकेशन कम, और उसके जो लॉन्ग टर्म क्योर रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट पेशेंट मरीज क्योर हो जाते हैं, जबकि ब्रेन के जो अंदर ट्यूमर है, जो ब्रेन का पार्टीशन है, अगर उसके बीचों बीच

0: तो वहां तक पहुंचना थोड़ा सर्जिकली, जो हमारे लिए टेक्निकली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बोलते हैं, निकालने के बाद भी मरीज को कुछ ना कुछ हाथ पैर के मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है और ट्यूमर पूरी तरह से निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे मरीजों में आगे जाके और कुछ ना कुछ इलाज देना पड़ता है। तो वो कुछ ना कुछ में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, रेडिएशन। ब्रेन में अभी भी जो इंजेक्टेबल कीमो बोलते हैं, जैसे बाकी कैंसर में हम सुनते हैं कि 10 साइकिल 12 साइकिल कीमोथेरेपी के इंजेक्शन दिए गए, ब्रेन में समहाउ वो उतने कॉमन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कीमो दी भी जाती है वो सब टैबलेट फॉर्म में है जो आसानी से मरीज ले सकता है।
1: तो अब श्रोताओं को बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर से अपनी जिंदगी को बचाया जा सके।
0: तो ट्यूमर को तो ऐसा एक प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली स्ट्रोक को प्रिवेंट करना एक अभी भी मरीज खुद से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: जैसे उनको पहले से ही डायबिटीज़ बीपी का बीमारी कंफर्म हो गया, तो जो भी आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, जो आपके पारिवारिक डॉक्टर हैं, उनको टाइम टू टाइम, जैसे 60 के ऊपर उम्र है तो 3 महीने 6 महीने में जाके दिखाते रहिए, दिक्कत नहीं है। फिर भी स्ट्रोक होने के बाद वो नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे आप
1: जी
0: जाके अब न्यूरो को दिखाइए। बट स्ट्रोक आने के पहले आप रेगुलरली अपने टच में रहिए फिजिशियन के। पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन है कि मैं तो डायबिटीज़ की दवाई खा रहा हूँ, बीपी की दवाई खा रहा हूँ, फिर भी कैसे बढ़ गया मेरा बीपी। तो जो दवाई आपने 40-50 साल की उम्र में खाना शुरू की है, आपको वही डोज 60 साल तक कंटिन्यू करना, ऐसा नहीं है। हो
1: जी
0: सकता है उसका डोज बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसका डोज कम करना पड़े। तो उसी के लिए हम बोलते हैं अपने फैमिली डॉक्टर को छोड़ना नहीं है, उनके टच में रहिए, फैमिली फिजिशियन। दूसरा, जब भी सिम्टम्स आए कुछ, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। हम बोलते हैं इट इज बेटर टू ओवर ट्रीट और ओवर डायग्नोज रादर देन उसको मिस करना, क्योंकि एक बार स्ट्रोक हो गया तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं करता है। जो भी हम रिकवरी उम्मीद करते हैं वो कैसे होता है, इट इज विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो जो आजू बाजू का जो हेल्दी ब्रेन है वो कोशिश करेगा कि इसका ब्रेन का फंक्शन टेक ओवर कर ले। तो एक तो फैमिली डॉक्टर का जो कंसेप्ट है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, नशा जितना कम बोलो या उससे अच्छी चीज़ें, नशा बंद कर दो, बहुत फ़ायदा। स्मोकिंग, अल्कोहल, इन दोनों में कुछ भी फ़ायदा तो नहीं है। स्मोकिंग ब्रेन के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ है। जितना ब्रेन में उसका ब्लड का फ्लो है वो कम होते जाते हैं, खून की नलियां जो है सिकुड़ती जाती है। तो वो बंद करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा जंक फूड एंड ऑयली कम कर।
1: जी, तो ये जो जंक फूड की बात कही है, तो हमारे बहुत सारे यंग श्रोता जो जेंजी जो
0: करेक्ट
1: सुन रहे हैं और नियमित रूप से जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो उनके लिए
0: करेक्ट
1: बहुत फायदेमंद बात है ये।
0: करेक्ट तो एक है कि वो जंक फूड इजीली अवेलेबल है, ऑलमोस्ट
1: जी
0: सारे छोटे सिटी में भी काफी
1: जी
0: सस्ते में मिल जाते हैं, बनाने में उनको समय नहीं लगता है, आपने लिया खाया। और दिक्कत है कि उनका इमीडिएटली कोई साइड इफेक्ट दिखता नहीं है, तो इसीलिए उनका सोचना ऐसा है जेंजी का कि ये तो इजीली है, सब लोग खा रहे हैं तो मुझे भी क्या
1: जी
0: ही
1: जी
0: होगा। बट उसका जो नुकसान है वो कुछ समय बाद आता है।
1: जी डॉक्टर अजीत, चलते चलते एक बात बताइए कि सिरदर्द जो है बड़ी कॉमन बात है, आपने चर्चा भी की है, लेकिन कई लोगों को सिरदर्द सुबह उठते से ही होता है, कई लोगों को खाने के बाद होता है, कई लोगों को खाने से पहले होता है, कई लोग शाम को सिरदर्द की तकलीफ बताते हैं, और सब लोग अपना अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मेरा इस वजह से हो रहा है। तो
0: तो
1: इस बारे में जरा हमारे श्रोताओं को आगाह कीजिए,
0: तो
1: जरा
0: हर
1: बताइए।
0: पेशेंट हमारे लिए एक्चुअली अलग है। तो
1: जी
0: बोलते हैं ना कि हमारे अंकल को हुआ था, हम भी वही दवाई खा ले क्या।
1: जी जी
0: अब ऐसे बाकी फैमिली मेंबर्स को किस कारण से हुआ था, आपको किससे हुआ है, हर एक का शरीर अलग अलग है, हर एक के हार्मोन्स, एंजाइम, सबका अलग अलग, पाचन शक्ति जो बोलते हैं अलग। तो जो पैटर्न ऑफ हेडेक हम बोलते हैं, जैसे सुबह ही हो रहा है, तो अगर सब कुछ उन्होंने अपने लेवल पे कोशिश कर लिया, नहीं आराम हो रहा है, तो हम बोलते हैं रात के वक्त दवाई दो जिसका असर इतने टाइम तक बना रहता है। तो हर हेडेक बिना दवाई के ठीक हो ही जाएगा ऐसा भी नहीं है। आप क्या काम करते हो, सोने का समय क्या है आपका, आप कितने टाइम तक स्क्रीन देख रहे हो, आपका आने जाने का रूटीन कैसा है, खाने का समय, उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हर जगह एज अ डॉक्टर हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मैं बोलूंगा कि आप रात को सो जाइए, वो पेशेंट बोलेगा सर मेरा तो ड्यूटी ही रात के समय, नाइट टाइम है। तो उसमें फिर अदर देन दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहते हैं। तो जैसे बोलना मेरे लिए बहुत आसान है कि आप इतने बजे खा लो, इतने बजे सो जाओ, बट फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पज हर एक के लिए फॉलो करना मुश्किल होता है।
1: जी
0: नाइट वॉचमैन है, नाइट में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो जो दवाइयाँ भी हम देते हैं कि आप ये खा के सो जाओ, वो उसको फॉलो करना मुश्किल है।
1: जी
0: तो किसी हद तक यस वी कैन मैनेज, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन।
1: जी
0: दवाइयों का फिर डोज जो है वो हमको डोज एज वेल एज टाइमिंग
1: जी
0: मॉडिफाई करना है। बट एक है कि ये दवाइयां इतनी सेफ है, मतलब उससे साइड इफेक्ट ना हो और उससे कहीं भी आप डिपेंडेंट ना रहो, वो हमारा टारगेट रहता है।
1: जी एक और बात हमारे जहन में आई है, वो ये कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सो रहे हैं, जो आपने कहा ना कि जो पैर चलने में थोड़ा तकलीफ दे रही है,

0: सामान्य रूप से हाथ पैर नहीं काम करें। कुछ लोगों को ये देखा गया है, शिकायत करते हैं कि सोते समय उनके पैर जैसे उड़ते हैं हवा में, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मूवमेंट अजीब सा होता है। तो ये क्या कोई न्यूरो
1: न्यूरो रिलेटेड ही है? उसको एक अलग से स्पेशलिटी है न्यूरो के अंदर, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिटी। तो जैसे 60 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं पार्किंसंस करके बीमारी होती है, जिसमें शुरुआत होता है हाथ या पैर का सिर्फ कांपना और धीरे धीरे कुछ साल में उनको इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं ट्रेमर्स। तो किसी को सिर्फ हाथ से शुरुआत होता है, किसी को सिर्फ पैर कांपने लगता है। तो ये एक अलग ही बीमारी है, ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया। तो जहां से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें ऐसे धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं। अच्छी चीज ये है कि इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आपने जो सिर्फ पैर का बताया उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो उसमें सिर्फ रात के समय पेशेंट के पैरों में जो है वो वाइब्रेशन बोलता है, मेडिकल टर्म उसको बोलते हैं फेसिकुलेशन, कोई ट्विचिंग, ये सब शब्द यूज करते हैं, बट ये दवाइयों से एकदम कंट्रोल हो जाता है। ऐसे पेशेंट में हमको सीटी स्कैन एमआरआई नहीं, हम फैमिली को एक एडवाइस देते हैं कि जब भी उनका पैर ऐसा हिलना शुरू हो उसका एक वीडियो बना लीजिए। तो ये जो भी मोबाइल या टेक्नोलॉजी है उससे एज अ डॉक्टर हमको काफी फायदा होता है। तो हमको डाउट ये है कि कहीं वो फिट्स तो नहीं था, कहीं उनको ट्रेमर या पार्किंसंस तो नहीं है। तो अगर वो फैमिली मेंबर्स ने उसका वीडियो बना लिया और अगली बार जब वो दिखाने आते हैं वो वीडियो भी दिखा दे, तो हम उस चीज को डायग्नोस कर लेते हैं। बेसिक दवाइयों से उसका पूरा आराम हो जाता है।
0: जी, तो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं निश्चित रूप से इन बातों का बहुत फायदा उठाएंगे, और हमें उम्मीद है कि ये बड़ी कारगर बातें आपने बताई हैं। डॉक्टर अजीत, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
1: चलो, नमस्कार एवरीवन, थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। चलने से पहले हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम चंदा की डोली से ये गाना, जिसे गाया सोनू निगम ने, गीत रचना नुसरत बदर की और संगीत सोनू निगम का। रंग तरंग कार्यक्रम में सुनिए अगला गाना।

मेड इन इंडिया एल्बम का ये गीत आपने सुना, आवाज अलीशा चिनॉय के, गीतकार अलीशा चिनॉय, बिद्दू श्याम अनुरागी और संगीत दिया बिद्दू ने। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: अगली आवाज चंदन दास की है, इनकी गजल आप सुनिए, शायर मुराद लखनवी।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं रंग तरंग। आइए सुनते हैं अगला गाना।

अभी आपने सुना दिल पड़ोसी है इस एल्बम का गीत आशा भोसले की आवाज में, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का। आइए सुने अगला गाना।

अभी आपने सुना पिया बसंती एल्बम का ये गाना, आवाज उस्ताद सुल्तान खान की और चित्रा की, संगीत संदेश शांडिल का। और सुनिए अब ये अगला गाना।

0: अभी आपने सुना तिकोन का चौथा कोण। छाया गांगुली की आवाज़ गीत रचना महादेवी वर्मा की, संगीत जयदेव का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डी ले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस हैव प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर द पॉलिसी मेकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्टेकहोल्डर्स टू डिलीबरेट ऑन द प्रोसेसिंग चैलेंजेस ऑफ water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषग्राद समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के मुद्दों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अवसर पर कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एशियाई खेलों में भारत ने महिला T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 74,661 पर, जबकि निफ्टी 45 अंक फिसलकर 23,369 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे। यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार, फिल्म अमीर गरीब,

0: विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजें थीं। आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम था कर्ज।

दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग रहिए, देश की सुरीली धड़कन भारत का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल।

0: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
0: चिट्ठी न कोई संदेश।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। यादों की महफिल, फिल्म का नाम निस्को डांसर, अनजान के बोल बप्पी लहरी की तरह, पार्वती खान की आवाज।

हीरापन्ना फिल्म का गीत था। और अब आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है पुकार, गीत गुलशन बाबरा का।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला और गड्डी ले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। एक पूरे दौर की याद थी इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
2: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल ना करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Home Minister Amit Shah inaugurated the third National Conference of Heads of Anti-Narcotics Task Force, ANTF, of states and union territories in New Delhi today. The two-day conference serves as a powerful platform to safeguard future generations from the menace of drugs. Heads of ANTFs from 36 states and UTs are attending the conference, which is being organized by the Narcotics Control Bureau. Based on the theme of United Resolve, Shared Responsibility, the conference is focusing on the progress of targets assigned to task forces of states and UTs in the recently released Vision Document on Narcotics Control 2026-29. The Union Home Ministry said the central government is working in mission mode to protect the nation's youth from the adverse effects of drug abuse. Vice President C.P. Radhakrishnan inaugurated the 9th India International Water Week 2026 in New Delhi today. Speaking on the occasion, he stressed the judicious use of water and highlighted the need for its conservation.
5: This shows the importance of water because the population is increasing, the urbanization is increasing, we have to produce more food grains. When the urbanization increases, we need more water for cleaning, for drinking. The usage of water is increasing every day. So we all must make a clear awareness in ourselves as well as the wherever we go, the water should be used preciously.
4: The theme of this year's Water Week is Climate Resilient Water Management. The five-day international event will provide a multidisciplinary platform bringing together all stakeholders to deliberate upon the pressing challenges of water management. The Election Commission has announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. The Commission also announced by-poll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of next month. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, 5 seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of next month. The government has urged bank employees to refrain from resorting to strikes, work towards resolving issues through dialogue and ensure that banking services remain uninterrupted. The appeal comes ahead of a three-day nationwide strike called by the United Forum of Bank Unions and certain other unions and associations in public sector banks from the 28th to the 30th of this month. They have called a strike in support of two principal demands, implementation of five-day banking and withdrawal of the performance-linked incentive PLI scheme. The Union Finance Ministry said, following detailed discussions, the government has fulfilled one of the demands and decided to keep the PLI scheme in abeyance. The ministry said, the government has taken several measures aimed at improving the working environment, transparency and welfare of bank employees. Britain has agreed to provide limited support to Saudi Arabia to counter attacks from Iran-backed Houthis. Riyadh requested the support after the Houthis, who control the most populous parts of Yemen, intensified their attacks on Saudi Arabia, marking a new front in the wider war that began with the US and Israeli strikes on Iran in late February. For the new air-to-air refueling support, Britain will deploy one Voyager plane in the coming days. Indian Eves opener Smriti Manthana has created history by becoming the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti achieved this milestone during the Asian Games final against Sri Lanka at the Korogi Sports Park in Nishin, Japan. In women's cricket, chasing a target of 217 runs, Sri Lanka were at 54 for 7 wickets in 11 overs against India in the final in the Asian Games. at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan, when reports last came in. Early opting to bat first after winning the toss, India scored 216 runs for 3 wickets in 20 overs. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, कभी कभी कोई पुरानी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आती है। एक दौर जब मोहब्बत को कहने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं बस एक गीत काफी हुआ करता था। आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम लौट रहे हैं 1957 की ओर, एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसका नाम ही अपने आप में फूलों जैसी खुशबू लिए हुए है, चंपा गली। जी हाँ, ये फिल्म है जिसको हम फिल्मी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, नमस्कार दोस्तों।

कितना खूबसूरत है ना ये गीत। इस गीत के शब्दों में जैसे 50 के दशक के सिनेमा की पूरी मासूमियत समाई हुई है। इस गीत को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे। हेमंत कुमार का संगीत अपने आप में एक खास पहचान रखता था। सादगी, मिठास और धुन में ऐसी सहजता कि गीत सुनते हुए लगता था कि जैसे धुन बहुत पहले से हमारे भीतर कहीं मौजूद थी। फिल्म में थे भारत भूषण, सुचित्रा सेन, प्राण, शोभा खोटे, मुबारक, एसएल पुरी और मुमताज बेगम जैसे कलाकार। फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंत लाल ने। फिल्म की कहानी एक बंजारा कबीले के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें बांसुरी की धुन, प्यार और सांप के काटने जैसे ड्रामेटिक ट्विस्ट शामिल थे। आपको बता दें कि निर्देशक नंदलाल इससे पहले नागिन, अनारकली, सनम, आम्रपाली जैसी हिट फिल्में दे चुके थे।

0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से।
1: बोलो कैसे रखूं मैं मुखड़ा छुपाए के,
0: छुपेगा ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से, ये चांद का टुकड़ा छुपाए से।

चंपा कली को 1957 की हिंदी फिल्मों की सूची में रोमांटिक फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। फिल्म में भारत भूषण ने माधो और सुचित्रा सेन ने राजू की भूमिका निभाई। भारत भूषण उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनके अभिनय में रोमांस के साथ साथ एक नरम भावनात्मक रंग दिखाई देता था। दूसरी ओर सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा, खासकर बंगाली सिनेमा की बेहद महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके करियर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्मों में नजर आई उनमें उनकी स्क्रीन उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। चंपाकली में उनका किरदार राजू का था। यही वजह है कि आज जब हम इस फिल्म के गीत सुनते हैं तो वे सिर्फ पुराने गीत नहीं लगते, वे हमें सुचित्रा सेन, भारत भूषण के उस दौर की सिनेमाई जोड़ी की याद दिलाते हैं।

और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर जीर्णोद्धार मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। पर्यटन विभाग के सचिव को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का दिया निर्देश। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के विवादित बयान से प्रशासनिक अधिकारियों में भारी आक्रोश। हजारीबाग में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। गिरिडीह में भ्रष्टाचार के खिलाफ एबीवीपी की भूख हड़ताल जारी। दुमका में कल्याण हॉस्टलों की बदहाली पर छात्रों ने निकाली आक्रोश रैली। राज्य में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम। कोडरमा में पारंपरिक झूमर नृत्य का आयोजन, तो रांची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और रांची रेल मंडल स्पोर्ट्स मीट में इंजीनियरिंग विभाग बना ओवरऑल चैंपियन। मैकेनिकल उप विजेता डीआरएम ने विजेता रेल कर्मियों को मेडल देकर किया सम्मानित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

क्या बात है, कितने श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं, फिल्म कुर्बानी उस दशक का बेहतरीन गीत लैला में लैला और ड्रम्स की आवाज, सारा दिन इन्हीं यादों में डूबे रहेंगे। आज तो पता नहीं क्या क्या यादें याद आएंगी, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारे बड़े भैया को फिल्में देखने का शौक था और जिगरी दोस्त सब मिलकर स्कूल बंक करके फिल्में देखने जाया करते थे। उस सिनेमा हॉल के मैनेजर पिताजी और ताऊ जी के मित्र थे, इसलिए सारी पूल खुल जाया करती थी। आज भी भैया एक एक सीन, फिल्म का नाम और सारी चीजें याद करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि तहलका मचा दिया था कुर्बानी फिल्म के गानों ने। इसके अलावा एक और श्रोता है जो याद कर रही हैं नाजिया हसन को, जिन्होंने कुर्बानी के गाने के जरिए धूम मचा दी थी। क्या वो ये था? और ये लिखती हैं कि इस गाने में बात बन जाए को बाप बन जाए गाकर हम सब बहुत हंसा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत सारी चीजों को याद कर रहे हैं, इंदीवर का ये गाना। और इसके अलावा जो कैसेट रिकॉर्ड करने की बात थी उस पर तो बिल्कुल कितने सारे श्रोताओं ने अपने बात की।

है, एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे घर में कैसेट रिकॉर्ड था, रिकॉर्डर था, सीडी से कैसेट रिकॉर्ड करते थे, कंप्यूटर में सीडी रिकॉर्डर भी था, तो हम सीडी भी प्रिंट कर लिया करते थे, अपनी पसंद के गाने सीडी में तैयार कर लिया करते थे। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुर्बानी देखने के लिए मेरा भाई टिकट की लंबी लाइन में खड़ा रहा था और टिकट लेकर ही उसने दम लिया था। कॉलेज के दिन थे, मन उमंगों से भरा था, जीवन राग अनुराग से भरा था, 80 का दशक अब कहां। विविध भारती अपने गानों के माध्यम से वो दौर हमें याद दिलाता रहता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं और मेरे दो भाई टेप रिकॉर्डर लेकर एक दिन दिवाली के दिन गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, पूरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ पटाखे की आवाज ही सुनाई दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि कितनी गलतियां कैसेट भरने वाला कर दिया करता था, गलत गीत डाल दिया करता था, वापस जाते थे और उसके बाद उससे लड़ते थे। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने कैसेट भरने का काम किया, एक दो गीत हम अपनी तरफ से चिपका दिया करते थे जो हमें लिस्ट में नहीं मिला करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उस जमाने में सिने पहली, 2003 में सिने पहली नाम का कार्यक्रम याद आ गया है हमें। इसके अलावा एक और श्रोता कैसेट भरने वाले की गड़बड़ियों को याद करते हैं, वो लिख रही हैं कि भाई जब कोई लिस्ट का गाना नहीं मिलता था तो महाशय अपनी पसंद का कोई गाना चिपका दिया करते थे और पूरी प्लेलिस्ट गड़बड़ हो जाया करती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी तो हम थिएटर के बाहर सिर्फ पोस्टर देखने के लिए जमा हो जाया करते थे और देखा करते थे। कितनी सारी यादें हमारे श्रोता बांट रहे हैं। अभी जब मैं अगले गाने की तरफ बढ़ रहा हूं उसके बाद और भी यादें कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल करें और इस कार्यक्रम के बाद तसल्ली से बैठकर इन यादों को हम पढ़ेंगे और ये भी रिस्पॉन्ड भी करेंगे। और एक श्रोता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम सुन रहे हैं, 80 के दशक में स्टूडियो स्कूल खत्म किया था और पुणे की एक कंपनी में काम करना शुरू किया था, कुछ नए दोस्त बने थे और आज 45 साल बाद भी वो सभी दोस्त बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पहले लोग खेलने के लिए एक दूसरे का साथ ढूंढते थे, एक दूसरे के जज्बात की कदर किया करते थे, आज लोग एक दूसरे के जज्बात से खेला करते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेताब फिल्म आई थी तो घर गृहस्थी में पूरे घिर चुके थे। इसके अलावा घर में कागज की चार चिट्ठियां बनाकर राजा मंत्री चोर सिपाही खेला करते थे 80 के दशक के, ये भी हमारे खेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। इस फिल्म ने कितनी धूम मचाई थी, कुमार गौरव, विजेता पंडित, क्या यादें हैं इस फिल्म से जुड़ी। इस फिल्म के और कौन कौन से गाने आपको पसंद हैं बताइएगा।

और शानदार खबर आ गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 147 रनों से जीत हासिल की है और एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत सारी बधाइयां। विविध भारती परिवार की ओर से।

क्या कमाल किया है भारत की लड़कियों ने। भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम को बधाई देने के लिए आप यहां विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम में भी संदेश दे सकते हैं। और देखिए, संदेशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे श्रोता, हरमनप्रीत कौर को बधाई, पूरी भारतीय टीम को बधाई। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि कुमार गौरव और विजेता पंडित पर ये गाना फिल्माया गया था और ये जोड़ी रातों रात स्टार बन गई थी। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है सनम। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि ये फिल्म मैं 3-4 बार देख चुकी हूं और कभी भी इस फिल्म को देखने से मन भरता नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि कम से कम 12 बार ये फिल्म देखी थी और 50 पैसे का टिकट हुआ करता था और हम जाया करते थे। एक श्रोता है जिन्होंने जमशेदपुर के नटराज टॉकीज में ये फिल्म देखी थी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में एक लाइन है, कहाँ होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई। ये लाइन बहुत पसंद है और हम सभी को इस लाइन पर अमल करना चाहिए। थिएटर में ये फिल्म नहीं देखी पर दूरदर्शन पर देखी थी। ये एक श्रोता की यादें हैं। बहुत सारे श्रोताओं की यादें हैं। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खुशी ये कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है एशियन गेम्स में, तो हम इस बात के लिए भी बहुत खुश हैं। और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये आवाज जो हमारे जज्बात को जगा देती है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने के गीतकार कौन हैं?

आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गाना अनिता फाजली ने लिखा है। बहुत बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और सभी कह रहे हैं कि बेमिसाल शायर थे अनिता फाजली। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि ये गाना मोहम्मद रफ़ी, मनोहर उदास और हेमलता तीन अलग अलग आवाज़ों में इस गाने के वर्जन हैं। संगीतकार उषा खन्ना हैं ये भी। और इसके अलावा राजबब्बर पर फिल्माया गया दीपक पराशर और रंजीता, ये भी श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन लौटते नहीं हैं, वो यादों के रूप में जीवन भर के लिए दर्ज हो जाते हैं। जब 12वीं क्लास की फेयरवेल पार्टी हुई थी ना, तो मेरी एक सहेली ने ये गीत बड़ी मधुर आवाज में गाया था और हम में से बहुत सी सहेलियाँ इस गाने को सुनकर रो पड़ी थी। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं, गोरखपुर की जुबली टॉकीज में ये फिल्म देखी थी हमने, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में पुराने गीत चित्रहार और रंगोली में देखते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण वो अच्छे नहीं लगते थे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अमजद खान के रोल की तारीफ की है एक फिल्म में। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि हमने अपने जीवन साथी को कुछ ऐसा ही देखा, लगा हमारी जिंदगी होगी। पूरे गीत में जो एक लाइन है, ये तो बोलो कहाँ पे होगी लड़ाई, मैंने वो जगह ही नहीं बनाई, ये बहुत प्यारी लगती थी। शायद ये गाना हमने सबसे ज्यादा सुना है, इस गाने की बात हुई है। उसके अलावा बेताब फिल्म के गाने की बात एक श्रोता कर रहे हैं कि मेरा एक दोस्त इतना दीवाना हुआ था कि उसने एक पूरी कैसेट में यही गाना बार बार रिकॉर्ड कर लिया था, तो सारा दिन ये गाना सुना करता था। कितनी सारी यादें हमारे तमाम श्रोताओं की। लव स्टोरी में अमजद खान का एक डायलॉग है, लड़का लुड़का लड़की गायब, जब वो हथखड़ी रस्सी से हीरो हीरोइन को बांधे रहते हैं और पुलिस होते हैं, ये भी याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि तेरी याद आ रही है, ये गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद था। लव स्टोरी फिल्म और क्रांति एक ही दिन देखी थी जब हम शादी की शॉपिंग के लिए जयपुर आए थे, ये हमारी एक और श्रोता की याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ, बल्कि दो गाने एक ही हीरो के। अब ये तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि 80 के दौर का बचपन कितना प्यारा था, ना मोबाइल ना वीडियो गेम, फिर भी खेलने के लिए शाम छोटी पड़ जाती थी। गली में लुका छिपी, पिट्ठू, गिल्ली डंडा, कंचे, रस्सी कूदना और कभी कागज की नाव बनाकर बारिश में बहा देना। हारने पर थोड़ी नाराजगी, जीतने पर शोर, कहा गया वो दौर।

भाई क्या शानदार गाना। मैंने कहा कि बैक टू बैक एक ही हीरो के गाने बजने वाले हैं दो गाने। और एक श्रोता का बड़ी सुंदर कमेंट आया है जो बहुत कुछ कहता है। वो कहते हैं कि टॉकीज की साइकिल स्टैंड पर साइकिलों की भीड़ देखकर हम अंदाजा लगा लिया करते थे कि टॉकीज हाउसफुल है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म मम्मी पापा के साथ देखने गए थे और हम बहुत रोए थे हम सब। और इसके अलावा फिल्म शक्ति में दिलीप कुमार का बोला संवाद हम सबको याद है। ये हमारे एक श्रोता की बात है कि विजय ये मशवरा नहीं नसीहत समझना, इन लोगों की बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते में नहीं निकल जाना जहां चाहो भी तो वापस ना सको। क्या मुकाबला था शक्ति अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि टेलीविजन पर यह फिल्म देखी थी और चार बार ये फिल्म देख चुका हूं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम को बहुत सारे श्रोता बधाई दे रहे हैं गोल्ड मेडल जीतने के लिए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एक और श्रोता लिख रहे हैं 80 के दशक को याद करने के लिए कोई AI की जरूरत नहीं है, ये साल कैसे भूल सकता हूं। यही महीना था घर में गणेश जी की स्थापना की थी और उधर पोस्टमैन रजिस्टर्ड लेटर लेकर हाजिर हुआ था जिसमें बैंक में नियुक्ति का पत्र था और 14 अक्टूबर 1980 को मैंने बैंक में ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रणाम, धन्य है हमारे देश की महिलाएं जो घर और खेल और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ।

0: भाई ये गाना भी खत्म हुआ, कितने सारे श्रोता हैं जो अलग अलग डायलॉग याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि शान फिल्म का डायलॉग, तुम तीनों मेरे खास आदमी हो, खरबंदा जी का ये अंदाज बहुत शानदार रहा था। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुदा गवाह इनकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, लावारिस, आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन की सब फिल्में देखी थी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी में चल सकता हूँ, अंग्रेजी में हंस सकता हूँ, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, ये बात एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कालिया फिल्म का डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो नमक हलाल, लावारिस, कुली, मर्द, शहंशाह, काला पत्थर, कालिया, नसीब, शराबी, सभी फिल्मों को याद कर रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्हें त्रिशूल और दीवार याद आ रही है, और दीवार याद आने पर यह होता है।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेल

0: जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
1: हाँ, क्यों?
0: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
2: एक श्रोता ने बहुत ही कमाल की याद शेयर की है। कहते हैं कि 80 के दशक में मैं और मेरे मामा के बेटे लव स्टोरी देखने गए, जो हाउसफुल चल रही थी। अजमेर के एक थिएटर में इंटरवल के समय खड़े हो गए, जो बिजनेसमैन दर्शक व्यस्तता के कारण इंटरवल के पहले आधी फिल्म देखकर लौट रहे थे। उनसे टिकट लेकर आधी ही फिल्म हमने देख ली थी। क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की हमने कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन कमेंट्स के लिए। और इस कार्यक्रम में ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ चलते चलते। क्या सनसनी थी जब सिलसिला फिल्म रिलीज हुई थी। कितना इंतजार था लोगों को। कितनी बार देखी है ये फिल्म और क्या याद है इससे जुड़ी हुई, जरा बताएं।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

और देखिए कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी मकाम पर हम आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन की जोड़ी रेखा के साथ बहुत अच्छी लगती है। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि भाई सबसे अच्छी जोड़ी अमिताभ बच्चन की परवीन बॉबी के साथ लगती है। किसी ने लिखा है नीतू सिंह के साथ लगती है, किसी ने लिखा है जीना तमान के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पर अमिताभ की पसंदीदा फिल्में सिलसिला मुकद्दर का सिकंदर, गंगा की सौगंध और खून पसीना, ये हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम शामिल करने के इंतजार में थे लेकिन वक्त ने इजाजत ही नहीं दी और कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ आ गए। ये वो फिल्म है जिसने 80 के दशक में मचाई थी धूम। ये रेशमा का विकल स्वर, कौन थे इस फिल्म के संगीतकार ये बताइए। और इस फिल्म की हीरोइन कौन थी,

0: क्या बेमिसाल गाना और इस गाने की ये बांसुरी, कितने लोगों ने तो अपने मोबाइल में इसे रिंगटोन के रूप में रखा है। आज के इस कार्यक्रम का वक्त यहाँ खत्म हो रहा है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हर कार्यक्रम
1: आज शाम केवड़िया में एकता नगर के मकाम पर 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: will host the next edition of the National Film Awards.
1: National Film Awards.
2: Taking the National Film Awards to the prominent tourist destinations of India under the inspiration of Prime Minister Narendra Modi is a very good initiative. Ekta Nagar is famous today both in India and across the world, hosting Sardar Patel's largest statue set in a picturesque location at such a renowned tourist destination where major stars, leading icons of the film industry and film fraternities from across the country along with the Honorable President herself gather. It provides a great opportunity for many more people to learn about the destination.
1: Tourism ki destination ke bare mein bahut logon ko mauka mila.
0: Ravi Raj Murmu has been honored with the National Film Award for Best Debut Non-Feature Film of a Director for Angan, a Santhali film at the 72nd National Film Awards. Talking to media, he has shared his thoughts on the film and this achievement.
3: I'm Ravi Raj Murmu, director-producer of a film called Angan. I am deeply honored and delighted to receive the National Award for Best Debut Film of a Director on Non-Feature category. This recognition is incredibly special to me and to everyone who has been the part of this journey. It is a moment of great pride and encouragement, and I truly grateful to the jury and the National Film Award for this honor.
0: Indian playback singer Vaikom Vijayalakshmi also expressed her delight ahead of receiving the National Award for lending her voice to Angavana Konila from the Malayalam film ARM. She said the recognition makes the moment even more special.
4: I am Vaikom Vijayalakshmi. I am very glad to got National Award from the Excellency Honorable President of India, Srimati Draupadi Ma'am. The film is ARM, a Malayalam movie. The song is Angavana Konila.
0: The Election Commission today announced the biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and one seat in Uttarakhand. The Commission also announced by-poll for one seat of Rajya Sabha in West Bengal. The seat was vacant due to the resignation of TMC MP Rukmini Malik. Nomination will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 16th of October. The Commission also announced the MLC election for 11 seats in Uttar Pradesh, 8 seats in Bihar, five seats in Maharashtra and 4 seats in Karnataka. Nomination for the polls will begin on the 29th of this month and polling will be held on the 23rd of October. 21 states and union territories have signed memorandums of understanding, MOUs, with the Civil Aviation Ministry under the next phase of the Uran Ure Desh Ka Aam Nagrik scheme in New Delhi today. Speaking on the occasion, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu described Uran as one of the most revolutionary schemes in the country, propelling regional air connectivity across the nation. This is Akashwani giving you the news.
5: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
0: To the midday news. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Vikasit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through natural farming.
6: Apart from mystic lakes and snow-capped mountains, Sikkim is famous for its vast agricultural offerings, not only in India but to the world. Sikkim has been declared as first organic state and is famous for crops like large cardamom, ginger, buckwheat, etc. Sikkim produces around 90% of large cardamom, which is highest large cardamom production in India and exported to countries like Australia and UAE. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has played a pivotal role in natural farming scenario in Sikkim. Prime Minister Narendra Modi visited Sikkim on April 2026 and said,
7: "Hamara Demajong ab keval rice utpadan ke liye nahi jana jata. Uski pehchan ab organic rice ke liye jo hone lagi hai. Badi ilaichi, adrak, haldi, avocado, kiwi, aise kitne hi utpad desh aur duniya ke bazaar tak pahunch rahe hain.
6: Apart from large cardamom, buckwheat is one of the crops that's extensively harvested in Sikkim, which is around 1600 kg per hectare. Being the third largest crop and second most common cereal crop in Sikkim, buckwheat has a GI certification. With time and with farm collaboration with Government of India, ICAR Sikkim and Department of Agriculture, Government of Sikkim, the scene of natural farming as well as organic farming is growing stronger in Sikkim. Moinak Chatterjee from Akashvani News, Gangtok.
0: The Intermeteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall at isolated places over coastal Andhra Pradesh and Odisha during the day. Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal and Jharkhand will experience heavy rainfall. Odisha has stepped up preparedness with the IMD issuing warnings for extremely heavy rainfall, while schools and Anganwadi centres in many districts have been closed as a precaution. We have more from our correspondent.
8: The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall at isolated places of Odisha tomorrow and the day after, with very heavy rain today and on this Friday. Thunderstorms, lightning and squally winds are also likely during this period under the influence of the deep depression. The IMD has also issued an orange warning for vulnerable districts and warned of squally winds along the south Odisha coast. The state government has kept shelters, rescue teams and machinery ready and directed district administrations to closely monitor vulnerable areas. All schools and Anganwadi centers in several districts have been ordered closed from today for 3 days as a precaution. Fishermen have also been advised not to venture into the sea. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: Heavy rain will continue in Madhya Pradesh for the next few days. The weather department has issued an alert for several districts. A report.
9: Spell of heavy rain will begin in Madhya Pradesh from 23rd of September. According to the weather department, the system will be more active on 24th and 25th of September. In next 2 days, heavy to very heavy rain is likely in 17 districts. Jabalpur, Rewa, Shahdol and Sagar divisions will be affected the most. Bhopal and Narmadapuram divisions are also on alert. The weather department says a low pressure area is behind this. The state has received an average of 33.7 inches of rain so far. The southwest monsoon will start withdrawing from the last week of September, but heavy rain is expected before that. Abhinav Goyal, Akashvani Samachar, Bhopal.
0: In women's cricket, India thrashed Sri Lanka to win the first ever gold medal in the final in Asian Games 2026 at the Aichi Prefectural Korogi Sports Park, Japan. Sri Lanka were bowled out for just 69 in 15.4 overs, as India completed a comprehensive victory by 147 runs. Batting first, India posted a commanding 216 for 3 in 20 overs. And India's women's opener, Smriti Mandhana, created history as she became the first cricketer in the world to score 11,000 runs in women's international cricket. Smriti made the record during the Asian Games final against Sri Lanka in Nishin. Mandhana smashed 3 sixes and 3 fours in the first 4 overs to get India off to a blistering start. She surpassed former Indian captain Mithali Raj's record of 10,868 runs across all formats. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vice President C.P. Radhakrishnan says India International Water Week is a significant platform to bring all stakeholders to deliberate upon challenges of water management. Union Home Minister Amit Shah inaugurates third National Conference of Anti-Narcotics Task Force Heads of States and UTs in New Delhi to deal with drug menace. Government urges bank employees to refrain from resorting to strikes, agrees to keep performance-linked incentive scheme in abeyance. And Indian women's team thrashes Sri Lanka to win gold medal in Asian Games. Opener Smriti Mandhana creates history as she becomes first woman cricketer to complete 11,000 runs in international cricket. With that, we end the midday news.
10: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को स्थगित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
11: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
10: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
12: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारम्भ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
13: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
10: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुनें।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
1: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
2: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है, और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
1: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 एडी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
3: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाए और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाए। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है, उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
4: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
5: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
4: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
7: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 3rd राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। साहिल लुधियानवी के बोल। फिल्म का नाम है वासना।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

शिकार फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। रचना थी हसरत जयपुरी की और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के एकता नगर में आयोजित 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का प्रस्ताव दें और वहां विश्व स्तरीय सुविधाओं तथा 360 डिग्री विकास का प्लान भी बताएं। जिस राज्य का प्रस्ताव चुना जाएगा, अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उसी पर्यटन स्थल पर आयोजित होगा।
1: अपने अपने राज्य में जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है, जो सबसे अच्छा टूरिज्म का डेस्टिनेशन है, उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे और उसको बहुत सुंदर, उसकी बेस्ट फैसिलिटीज, उसमें आना जाना अच्छे से हो, हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सेलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने करम पूजा की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए, यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि करम पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उसके संरक्षण की प्रेरणा देता है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि यदि पूर्व में सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होने की बात कही थी और इस बार की रिपोर्ट में गड़बड़ी किए जाने की बात कही जा रही है, तो सरकार की ओर से संबंधित सीआईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
2: इस बार जब छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ तब सीआईडी प्रश्न आई, तो उन्हीं तथ्यों और उन्हीं सबूतों के आधार पर सीआईडी ने कहा कि एग्जामिनेशन की पवित्रता भंग हुई है, इसको कैंसिल करना चाहिए। 80 लाख और 1 करोड़ रुपए में जो है वो एग्जामिनेशन को जो पोस्ट है बेचा गया है, सरकार ने सीआईडी की इसी रिपोर्ट के आधार पर एफिडेविट किया। यानी अगर पहली सीआईडी की रिपोर्ट गलत थी तो जो अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है।
0: झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार मामले की सुनवाई की। अवमानना मामले में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश नहीं दिए जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने पर्यटन विभाग के सचिव को अगली सुनवाई में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितम्बर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML में राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेल्डर्स 2026 का शुभारंभ हुआ। जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रभाकरण ने बताया कि प्रतियोगिता में 33 वेल्डर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 3 महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं। सभी प्रतिभागी 2 श्रेणियों में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। देवघर एम्स का दूसरा दीक्षांत समारोह आगामी 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. नितिन गंगाने ने बताया कि इस समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के विवादित बयान के खिलाफ हजारीबाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों में भारी आक्रोश है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने उपायुक्त हेमंत सत्ती से पूर्व मंत्री की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। उपराजधानी दुमका में कल्याण छात्रावासों को बदहाली और 2 साल से लंबित छात्रवृत्ति के खिलाफ सैकड़ों छात्रों ने आक्रोश रैली निकाली। संताल परगना समन्वय समिति के बैनर तले विद्यार्थियों ने समाहरणालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा। छात्र नेताओं ने हॉस्टलों में सुरक्षा, पेयजल और रसोइयों की कमी दूर करने की मांग की है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराकर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीत लिया है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। ममता जी आपसे एक सवाल कि आप अकेले अकेले कहाँ गई थी?
1: अरे जरा धीरे बोलिए, सब लोग सुन लेंगे, माइक भी ऑन है।
2: अरे तो बताना तो चाहिए ना सबको।
1: लेकिन हम नहीं बताना चाहते ना।
2: अरे क्यों नहीं बताना चाहते? इतने फायदे हैं उसके ममता जी।
1: नहीं नहीं नहीं बता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट होती हैं।
2: अच्छा?
1: लेकिन बस चलिए आपने अब खुलासा कर ही दिया, राज खुल गया है, तो हम बता देते हैं सबको कि अमूमन यही होता है, हम कुछ बातें छुपाते हैं लोगों से और खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। भला खुद कहीं छुपा पाता है कोई बात? अब हम राज खोल देते हैं। दरअसल सोलो ट्रिप पर जाने की बात है, हम कई बार अकेले अकेले चले जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अकेले जाने का प्लान बनाना मतलब ऐसे होता है कि बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। और घर वाले तो जैसे बताओ कि सोलो ट्रिप पर जाने का प्लान है तो घर वाले एकदम भौचक्के रह जाते हैं, अरे
2: कैसे जाओगी,
1: कैसे जाओगी, ये परेशानी वो परेशानी, दुनिया भर की परेशानियों की फेहरिस्त, और अंदर अंदर उनको कुछ घबराहट भी होती है कि अभी अकेले अकेले पैर पसार रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बगावती हो जाएगी। तो ये जो महिलाओं के साथ होता है कि सोलो ट्रिप पर जाने की बात जैसी महिलाएं करती हैं वैसे ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि पुरुष ही नहीं महिलाएं भी सोलो ट्रिप पर जाती हैं आजकल
2: और जा रही है, और खासकर युवाओं में ये बहुत चलन हो गया है और होना चाहिए। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है जब हम अपने पति के साथ, भाई के साथ, पिता के साथ या घर वालों के साथ जाते हैं। तो क्या होता है ना कि हम मोबाइल में या बातचीत में लगे रहते हैं, पर
1: चक्कर में लगे रहते हैं एक दूसरे के,
2: पर जब हम अकेले जाते हैं तब हम बहुत सजग हो जाते हैं, बहुत सचेत हो जाते हैं कि हमें कैसे टिकट खरीदना है, हमें कैसे ट्रेन पकड़नी है, कैसे फ्लाइट पकड़ना है, अगर बस से जाना है तो किस स्टॉप पे हमें उतरना है। इस तरह की कई कई सारी बातें हैं। अकेले जाना है तो किस तरह से हमें होटल बुक करना है, किस तरह से हमें खाने का बंदोबस्त करना है, और ये महिलाओं को बहुत अच्छा अनुभव देता है। हर महिला को ही सीखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। नहीं तो अमूमन हमने देखा है कि बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो रोजगार करती हैं, बाकायदा नौकरी पेशे वाली होती हैं, लेकिन वो भी जब कहीं घूमने जाती हैं तो देखा है कि पति पिता या भाइयों पर डिपेंडेंट रहती हैं, और जहां जहां गए कई बार तो घर वाले पूछते भी कि ये कौन सी जगह, तो पता चला उन्हें कुछ मालूम ही नहीं होता उसके बारे में, कभी खोजबीन नहीं करती। जब आप अकेले घूमने के लिए जाती हैं तो पहले तो बहुत रिसर्च करती हैं कि यहाँ पर कौन सी जगह है और उन जगहों का क्या इतिहास है, और उस इतिहास के बारे में जानना, इससे आपकी जानकारी भी बढ़ती है और एक ये अलौकिक सा अनुभव होता है।
2: इस विषय पर हम बातें करेंगे। हमारे श्रोताओं ने अभी तक कमेंट नहीं लिखा है कोई भी, तो हम श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि भाई आप लिखिए कि जाना चाहिए या जाना है तो किस तरह से हमें सावधानी भी बरतना चाहिए।
1: और साथ में सोनाली जी उन महिलाओं से भी कहेंगे कि जो सोलो ट्रिप पर जाना चाहती है लेकिन अब तक नहीं गई, उन पुरुषों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपनी टिप्पणी लिखे कि सोलो ट्रिप पर जाने का कैसा अनुभव रहा, अच्छा बुरा, और जो वहां पर आपने देखा क्या पाया जाना लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
2: जी साथ ही सखी विशेष में मल्लिका श्रीनिवासन जो चेयरमैन है टैफ ट्रैक्टर की, उनके बारे में हम जानकारी देंगे। और एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है ममता जी, हल्की फुल्की बातें, इसमें आंटी मत कहो ना, जो हर महिलाओं को इसका थोड़ा सा दुख होता है कि अपने से जब छोटी उम्र के हमें आंटी कहते हैं तब दुख होता है। अगर बच्चों ने, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, उन्होंने कह दिया तो कुछ नहीं, जब सब्जी खरीदने जाते हैं और हमसे बहुत बड़े उम्र के जो

0: भाई साहब होते हैं, वो आंटी कहते हैं, तो तब तो इतना दुख होता है कि
1: कई
0: पता
1: बार लोग अपनी उम्र को छुपाने के लिए, अपने को छोटा बनाने के लिए भी सामने वाले को आंटी कह देते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो बहुत बड़े हैं, और वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये बुरा तो लगता है। तो आपके साथ, मतलब श्रोताओं के साथ क्या हुआ
0: और
1: कि जब
0: श्रोताओं ने
1: किसी ने
0: ममता
1: कहा?
0: जी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं इस विषय में।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो भाई ये वाला विषय हमें लगता है उन्हें ज्यादा मन भाया क्या? वो सोलो ट्रिप
0: हाँ
1: वाली बात जची नहीं, या उनका अनुभव नहीं है? होगा तो अनुभव, शायद छुपा
0: लिखेंगे,
1: भी रहे होंगे।
0: शायद लिखेंगे।
1: हाँ, और जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो तो अक्सर सोलो ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं, परिवार के साथ नहीं।
0: उन्हें
1: तो
0: अच्छा लगता है अकेले।
1: हाँ, तो आप अपने बच्चों के अनुभव भी साझा कर सकते हैं। और मुहावरों की दुनिया बहुत बड़ी है, विशाल है। तो आज का जो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए, इस पर आप सबकी क्या राय है? और हमारी तो अब ये राय है कि हम सुनवाते गाना।

0: तो ममता जी, आज हम सखी विशेष में एक प्रेरणादायी महिला उद्यमी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। वो है महिला मल्लिका श्रीनिवासन। मल्लिका श्रीनिवासन भारतीय उद्योग जगत की जानी मानी उद्यमी है और टैफ ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। और टैफ भारत की प्रमुख ट्रैक्टर और कृषि उपकरण निर्माता कंपनियों में से एक है। मल्लिका श्रीनिवासन ने विमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई से गणित में स्नातक किया, बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के वॉर्टन स्कूल से MBA किया।
1: और उन्होंने 1980 के में अपने परिवार के व्यवसाय से जुड़ गई वे और जुड़ते हुए उन्होंने टैफ में काम शुरू किया। और शुरुआत में उन्हें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास हासिल करना पड़ा क्योंकि कठिन था। उन्होंने किसानों की जरूरतों को समझा, उत्पादों में सुधार करने और तकनीक और अनुसंधान पर ध्यान देने को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और उन्हीं के नेतृत्व में ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों के कारोबार का विस्तार भी हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी उपस्थिति बढ़ गई। उन्होंने ट्रैक्टर इंजन और ट्रांसमिशन कारोबार के अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: और मल्लिका श्रीनिवासन को उद्योग और समाज में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिजनेस नेतृत्व और महिला उद्यमिता के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। और उनकी रुचि केवल उद्योग तक सीमित नहीं है। टैफ के माध्यम से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास जैसे क्षेत्रों में भी आपने काम किया।
1: मल्लिका श्रीनिवासन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कृषि जैसे पारंपरिक रूप से जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है, उसमें एक महिला का नेतृत्व, दूरदृष्टि और व्यावसायिक समझ ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई और उनकी इस मामले में बहुत अहम भूमिका रही।
0: और ममता जी, वक्त हो चुका है ब्रेक का।
1: तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: तो सोनाली जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं और मल्लिका श्रीनिवासन के बारे में हमने जानकारी दी अपनी सखियों और सखाओं को। अब क्या किया जाए,
1: एक गीत सुन लिया जाए।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: भाई आपने सोनाली जी हमसे तो पूछ लिया राज की बात कि सोलो ट्रिप पर आप कहाँ गई थी, लेकिन आपने अपना नहीं बताया कि आप कहाँ गई थी सोलो ट्रिप पर पिछले दिनों।
1: ममता जी मैंने पढ़ा है, सुना है, और आपके बारे में भी पढ़ा है, और मैं भी सोच रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही।
0: बस यही तो बात है, हम सब हिम्मत नहीं कर पाते अकेले जाने की,
1: पर मन में बहुत इच्छा है।
0: हाँ, और होता क्या है कि आप अकेले जाते हैं तो आप वहाँ के अनुभव बटोर कर ले आते हैं, वहाँ की जानकारियाँ बटोर कर ले आते हैं, जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं लिखते पढ़ते हैं। और हमने तो कई राइटर्स के बारे में पढ़ा है कि जो लिखने के लिए अकेले कहीं गए, जैसे मन्नू भंडारी का जो उपन्यास है आपका बंटी, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा था कि वो पहाड़ों पर गई थी वो पूरा करने के लिए उपन्यास। तो जो लिखने पढ़ने वाले बहुत सारे फिल्मी दुनिया में लोग हैं जो लिखते हैं, राइटर्स हैं, वो लोग कहीं चले जाते हैं, वहां लिखकर स्क्रिप्ट लिखकर लौटते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है अकेले जाने में?
1: बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हर महिला को ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम परिवार के साथ जाते हैं तो ये जो खासकर महिलाएं उसी उलझनों में लगी होती है कि बच्चों को नहलाना है, उन्हें कपड़े चेंज करवाना है, उन्हें खाना खिलाना है, खाना खाते खाते भी पहले बच्चों को खिलाना है फिर खाना है, पर एक उम्र के बाद में जब बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए, 40 के बाद महिलाओं को ये अनुभव जरूर लेना चाहिए। बहुत सुंदर अनुभव होता है कि बहुत कुछ हम सीखते हैं, और सबसे जरूरी बात है ममता जी कि हम खुद के लिए जीते हैं।
0: बिल्कुल,
1: नहीं तो हर बार महिला ऐसा होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए ही जीती।

0: मन से आप प्रसन्न होती हैं। आपने कहा महिलाओं को जाना चाहिए, क्या पुरुषों को नहीं जाना चाहिए?
1: पुरुष तो जाते हैं ममता जी।
0: बिल्कुल, महिलाएं अमूमन नहीं जाती, डरती रहती हैं, तो इसलिए जाना जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि एकल यात्रा सोलो ट्रिप का बढ़ता चलन, भाई ऐसी यात्राएं तो हमारे यायावरता की निशानी है और ये यात्राएं सुखद भी होती हैं क्योंकि इसमें पाथेय का बोझ अल्प ही रहता है। फिर यदि पद यात्रा पर है तो देशाटन का लुत्फ भी आसानी से उठाया जा सकता है। ऐसी यात्राओं के बहुतेरे शौकीन हैं, बहुत सारे लोग तो सिर्फ अकेले जाना ही पसंद करते हैं और अभी तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो आप अपने घर से तो अकेली निकलती हैं,
1: वहां महिलाओं मिल जाता है,
0: बाकायदा ग्रुप मिलता है तो वो साथ हो जाता है। लेकिन वहां पर ये जो परेशानियां आपने बताई ना कि कपड़े पहनाना है, खाना खिलाना है, वो झंझट नहीं होते हैं, तो आप उसको उस ट्रिप को बाकायदा एंजॉय कर सकते हैं।
1: यानी बच्चे भी आत्मनिर्भर बनते हैं और महिलाएं भी अपने लिए जीती हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने कहा है कि एकल यात्रा बड़ा रोचक तथ्य मुद्दा है। हम तो रेल से अकेले यात्रा करते थे, गोवा से पनवेल तक हमने यात्रा की है। हमारे घर वाले तो गांव खेड़ा का सफर करते हैं, उन्हें आके बताया जाता तो आश्चर्य हुआ उन्हें। हमारी दादी बुआ और नानी तो सफर में साथ नहीं देती, तो हमें तो रेल से मुंबई से सूरत तक एकल यात्रा करना पड़ा, बड़ा अच्छा लगा।
0: क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी है ये, इन्होंने लिखा है कि सोलो ट्रिप बैंगलोर हैदराबाद का किया हमने, इससे इसमें मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। हमेशा सावधान सतर्क रहना पड़ता है, ऐसी जगह जहां लोगों की आवाजाही कम हो न जाएं, अच्छे होटल चुने और जाएं जरूर। बिल्कुल, वो तो आपको अपनी सुरक्षा और सावधानी का ख्याल रखना ही चाहिए। वो तो आप जब जिस शहर में रह रही हैं वहां जब घर से निकलती है तो हमेशा सजगता तो आपको बरतनी ही पड़ती है।
1: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि मेरी बेटी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की वकील है, उन्हें देश विदेश घूमना बहुत पसंद है। मेरे दामाद जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए छुट्टियां होती हैं तो हफ्ते में 10 दिन का प्रोग्राम बना लेती है और अकेली ही कुछ ऐसे ही सहेलियां मिलकर घूमने निकल लेती है। एक बेटी है जो 10वीं क्लास में है, उसके लिए हम लोगों को या फिर अपने सास ससुर को बुला लेती है, विदेशों में जाकर कार हायर करके अकेली ही निकल जाती है घूमने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी आपके पास से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा भी मिलेगी कि देखिए ऐसे अकेले भी महिलाएं जा सकती है, हमें बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलता है, हमारे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है और बड़े धैर्य के साथ हम सभी चीजों का अनुभव करते हैं
0: और आप निडर बनते हैं। इसी बहाने एक श्रोता ने लिखा है कि मैं मात्र 16 बरस का था जब अकेला जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गया था। सच मानिए मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे से माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। ये मेरे जीवन में एकल यात्रा का एक बेहतरीन अनुभव था। कई बार जब खास तौर से लड़कियां घर से निकलती हैं तो माता पिता का हाल बुरा होता है डर के मारे, यहाँ तक कि मान लीजिए ट्रेन से जा रही हैं तो परिवार के लोग उन्हें पहुंचाने आते हैं, छोड़ने आते हैं और ट्रेन में अगल बगल के लोगों को बाकायदा परिचय करेंगे, बताएंगे कि मेरी बेटी अकेली जा रही, जरा आप ख्याल रखना। इससे क्या होता है कि जो आपके अगल बगल बैठे उन्हें तो ठीक है सुरक्षा मिल जाती है, लेकिन बाकी जनता भी जान जाती है कि ये अकेली जा रही है, तो इससे खतरे और बढ़ सकते हैं क्योंकि जो अजनबी है आपकी कितनी मदद कर सकता है। बेहतर हो कि लड़कियों को इतनी मजबूत बनाए शुरू से, इतनी ताकतवर बनाए कि ये सब समझाने की नौबत ना आए और अकेले यात्रा करने में कोई बुराई नहीं। ये हमारा ये कहना नहीं कि आप परिवार के साथ यात्रा करना बंद कर दें, लेकिन जरूरत पड़े तो आप जरूर जाएं और अकेले एक आध बार यात्रा करके उसका अनुभव भी लेना चाहिए, क्योंकि अब आगे समय आपका करियर का चुनाव किस तरह का है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होने वाली है, कहाँ नौकरी करने जाने वाली है, तो इसलिए अकेले रहने की आदत, अकेले चलने की आदत बहुत जरूरी है। कई बिजनेस परिवार में हमने देखा है कि पति रात को 2-2, 2:30, 3 बजे तक आ रहे हैं और बेटी की शादी आपने कर दी है, बेटी सिर्फ खिड़की के सामने खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि पति आए फिर खाना खाए। तो ये जो बांध देना है एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है कि खूंटे में बांध देना, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए।
1: हर रिश्ते में स्पेस जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: स्पेस होना चाहिए। एक हमारे साथी ने कहा है ममता जी कि भले ही आज टेक्नोलॉजी बहुत एक्टिव हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि अकेले नहीं जाना चाहिए, खासकर महिलाओं तो को, जहाँ तक कि नए कपल को भी अकेले नहीं जाना चाहिए, ग्रुप में जाना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है।
0: ये तो वही बात हो गई कि आप दिन रात डर डर के जी रहे हैं, फिर इसके मतलब इतना डर डर के कौन जीता है? फिर तो कहीं भी रिस्क है, आप घर से निकलते हैं तो आपका कोई भरोसा नहीं होता कि कब कौन सा हादसा हो जाए। तो अपने मन को डर से मुक्त कीजिए और फिलहाल एक गाना सुनिए।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सखी सहेली। और सोनाली जी देखिए, एकल ट्रिप की बात की हमने, सोलो ट्रिप की, तो बहुत सारे श्रोता जो असहमत थे सहमत हो गए हैं और इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अभी तक तो ज्यादातर सोलो ट्रिप ही की है, अपने मोबाइल से पहले से सब कुछ बुक कर लेता हूँ। जब से घर से दूर पढ़ाई के लिए बाहर निकले तब से मेरी आदत बन चुकी है, कोई अनुभव नहीं साझा किया किसी ने।
1: एक साथी कहते कि मुझे पसंद नहीं है एकल ट्रिप, मुझे ग्रुप के साथ यात्रा करना सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। वहीं एक सखी ने लिखा है कि मैं एक बार एनसीसी के कैंप में जब 10th क्लास में थी तो स्कूल से गई थी, बहुत सारी स्कूल की सहेलियों का साथ था, माता पिता या बड़े भाई नहीं थे, बहुत अच्छा लगा, बशर्ते स्कूल की टीचर्स थी, पर बहुत मजा आया। तो उन्होंने 8-10 लड़कियों के साथ ही इतना आनंद उठाया, तो जब अकेले जाएंगे तो और भी आनंद मिलेगा। सबसे ज्यादा आनंद से ज्यादा ममता जी हम बहुत कुछ सीखते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं के लिए अकेले यात्रा करना तो एक अच्छा अनुभव भी हो सकता है, लेकिन सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता आपको देना चाहिए। यात्रा से पहले, गंतव्य तक पहुंचने से पहले वहां का मौसम, वहां के स्थानीय परिवहन के बारे में जानकारी हासिल कर लें, सुरक्षित क्षेत्रों की अच्छी जानकारी ले लें, वहीं पर जाएं। जहां पर सुरक्षा नहीं है वहां पर जाना, अकेले जाना तो ठीक नहीं है। हाँ, वहां जैसे सोलो ट्रिप पर निकलती है तो ग्रुप मिल जाता है
1: जी,
0: तो फिर कोई हर्ज नहीं है। और होटल या रहने की जगह विश्वसनीय हो, अच्छी उसके बारे में रेटिंग अच्छी हो, ऐसी जगहों पर जाएं।
1: और सोलो ट्रिप केवल घूमने का अनुभव नहीं बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख देने वाली यात्रा भी हो सकती है। पहली सीख है कि आत्मनिर्भरता। और फिर क्या होता है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो यात्रा होती है ना, उसमें चमक दमक के पीछे वास्तविक परिस्थितियां अलग हो सकती है। इसलिए केवल तस्वीरों से प्रभावित होकर यात्रा की योजना बनाने के बजाय वास्तविक जानकारी और अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
0: और ये भी कि जब आप अकेली जाती हैं तो पहुंचते ही सबसे पहले सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर नहीं अपलोड करनी चाहिए, और ये कि हम मैं अकेली आई हूँ वो आपके लिए खतरा भी हो सकता है। और सोलो ट्रिप का मतलब ही परिवार या दोस्तों से दूरी बनाना नहीं होता है, कई बार ये केवल अपने लिए, स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालने का तरीका होता है, अपने लिए स्पेस निकालने का तरीका होता है, खुद से गुफ्तगू का तरीका होता है। क्योंकि अमूमन अपनी दिनचर्या में, भागदौड़ की जिंदगी में आप अपने भीतर कभी झांक के नहीं देखते, अपने से बात ही नहीं करते, आपके भीतर क्या खूबियां हैं, क्या बुराइयां हैं और क्या नकारात्मक क्या सकारात्मक बातें हैं, कुछ भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में जब आप खाली होते हैं, कुदरत के साथ होते हैं, कुदरत का सान्निध्य होता है, तो आपकी विचारशीलता बढ़ती है, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है और खुद को समझने की आदत बनती है
1: और एक डर दूर हो जाता है ना कि अरे हम तो जा ही नहीं सकते, जो हमारे खासकर महिलाओं के मन में डर है कि हम अकेले नहीं जा सकते। तो जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, बहुत सुंदर ये दुनिया है। विशेषकर महिलाओं के लिए ये यात्रा आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने का अवसर बन जाती है, बशर्ते रोमांच के साथ सुरक्षा और समझदारी का संतुलन बना रहना चाहिए।
0: रोमांच बस वो जो होता है कि चले गए मोबाइल लेकर और सेल्फी खींचने, पता चला एक पहाड़ी है, ऊंची पहाड़ी है और नीचे घाटी है, बस सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे हो जाते हैं, तो उनका ख्याल रखें। पानी में जब जाएं, किसी नदी या झरने के किनारे, तो इन बातों का ख्याल रखें क्योंकि वहां पर आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप बाकायदा सोलो ट्रिप पर चल सकते हैं। तो चले सोनाली जी, हम भी सोलो ट्रिप पर, फिलहाल
1: दोनों मिलके सोलो ट्रिप
0: गाने के जरिए चलते हैं फिलहाल।

0: तो भाई सफर सुहाना हो यही हम उम्मीद करते हैं और सबके लिए यही शुभकामना करते हैं कि जो लोग भी सोलो ट्रिप की तैयारी कर रहे हो
1: उनका
0: तो
1: सफर
0: उनके लिए
1: सुहाना हो।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, देखते हैं क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि सोनाली जी, ममता जी, अकेले जाने की जो बात चल रही है, हर किसी को अकेले जाना चाहिए जिससे मन में मन का डर खत्म हो जाता है। फिर क्या क्या होता है, हम अभी 2-3 साल पहले वहां गए थे प्रयागराज, और जब मौनी अमावस्या पड़ी तो घर से अकेले ही निकले थे और उसी रात वहां पर हादसा हो गया, तो हमारे घर वाले बहुत ज्यादा डर गए थे। और हमारा उस टाइम पे फोन भी नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ हो चुका था। देखिए भाई, ये तो जब आप, ये हम नहीं कह रहे कि आप किसी हादसे के शिकार हो जाएं, जब आप, ये तो खतरा कहीं भी कभी भी हो सकता है। तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब ये नहीं कि आप ये इमेजिन करके जाएं कि कोई खतरा होने वाला है, हमेशा समूह में जाना अच्छा होता है।
1: उन्होंने आगे लिखा है कि 3-4 दिन तक उनका फोन बंद था और 3-4 दिनों बाद वे 500 किलोमीटर दूर गए थे, तब घर आए तो घर वालों ने राहत की सांस ली।
0: तो ये कहने का मतलब नहीं है कि आप जानबूझकर अकेले जाएं, लेकिन कभी एक आध बार आपको अनुभव तो लेना चाहिए अकेले जाने का भी, कि परिवार की वजह से आप घर से निकलना ही बंद कर दे। ये है यहाँ पर मकसद सोलो ट्रिप का।
1: और सोलो ट्रिप पे अगर आप गए और वहां पर आप किसी ने आंटी कह दिया तो कैसा लगेगा ममता
0: प्यार से सिर पे हाथ रखेंगे और कहेंगे हाँ जो
1: खुश
0: जो जियो, खुश रहो, ये आशीर्वाद दे देना चाहिए जो लोग आंटी कह के इस तरह छोटे बनना चाहते हैं, यही तरीका है। और कुछ लोग बुरा मान जाते हैं और कि वहां पर कई बार तो झगड़ा भी हो जाता है कि अरे मुझे आंटी कैसे कहा, ये
1: मेरे
0: देखो
1: बाल इतने काले हैं, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मुझे मुझे कहा आपको मैं कहां से आंटी लग रही
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी कहो वाला सेगमेंट तो बहुत मजेदार है। मेरी एक छात्रा की बातें हैं, कह रही थी, वो बोली कि मैम कल हम लोग फिल्म के टिकट के लिए लाइन में खड़ी थी और एक हम उम्र लड़का आकर बोला, आंटी जी 2 टिकट हमारे लिए भी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बोली, अंकल जी आप लाइन में खड़े हो जाइए, टिकट मिल जाएगा। हंस पड़े थे लोग। तो ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति हो जाती है कि छोटी छोटी लड़कियां हैं और उनसे आप आंटी कह रहे हैं।
1: एक साथी ने कहा है कि ये बड़ा ही रोचक मुद्दा है, आंटी तो उम्र दराज महिला को कहते हैं। हमारे मोहल्ले का तालाब अजमेर में घाघरा लुगड़ी पहनने वाली औरतें कुछ बच्चे आंटी कहने के पुकारते हैं, उन्हें यही कहा जाता है। हमारी माँ तो उन्हें आंटी कहने से मना करती है, उन्होंने कहा कि मौसी या भाभी जी कहने को कहो, भाभी जी हमसे जमता नहीं, जो बड़ी औरतें हैं आपस में कहना भला। यानी इन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारी मम्मी ने भी मना करके रखा है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि मैं रहने वाला तो बुंदेलखंड का हूं और वहां पर आंटी शब्द का जो उदाहरण है वो अचूक है। जगह जगह की अपनी अपनी परंपरा होती है, लेकिन हाँ मैं ग्वालियर में राजमिस्त्री का काम करता हूँ, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो भी हमारे साथ लेबर का कार्य

0: करते हैं। इत्तेफाक से अगर किसी ने उनको आंटी बोल दिया तो लड़ाई हो जाती है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी वो हालत, वो 40 साल की हो चुकी है लेकिन आंटी किसी के मुंह से सुनना नहीं चाहती। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आप छोटों से भी आंटी शब्द नहीं कहलवाना चाहते। एक छोटी सी टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि आंटी शब्द कोई अपने से छोटा बोल दे तो अच्छा भी लगता है, पर कई बार बराबरी और बड़े बोल दे तो कभी हम उनको देखते हैं कभी अपने आप को देखते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है, आंटी शब्द से तो न जाने कितने ही मजाकिया किससे खुद से और दूसरों से जुड़े हैं। एक बार प्राइवेट बस के कंडक्टर ने मुझे कहा, आंटी थोड़ा सा आगे हो जाओ। मैंने कहा, मैं तुझे आंटी दिख रही हूँ? मैंने कहा, तुम लोगों ने दो ही शब्द सीखे, अंकल और आंटी, तो बेचारा यूं ही आगे निकल गया, बस किराया भी नहीं लिया। 15-20 साल पहले की बात है, अब तो कोई बोल दे तो चलता है।
0: जी बिल्कुल।
1: एक साखी ने लिखा है कि जैसा कि आप सबको पता है कि आंटी शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में चाची, मामी, बुआ, फूफी, ताई, इन सबको आंटी ही कहा जाता है। आंटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई काफी उम्र का हो चुका है। मामी, बुआ, फूफी, ताई, चाची किसी भी उम्र की हो सकती है। हाँ, मगर आंटी शब्द का चलन फैशन इस कदर बढ़ गया है कि अपने उम्र से कम उम्र के लोगों को भी लोग आंटी कहकर पुकारने लगते हैं। फिर भी अगर कोई जाने अनजाने कोई किसी को आंटी कह दे तो उसे बिल्कुल भी दिल से ना लगाए, उल्टा आंटी कहकर पुकारने वालों का हंस कर मुस्कुरा कर स्वागत करे, ना कि बुरा माने।
0: कुछ इसी तरह की बात इन्होंने भी लिखी है कि आजकल किसी नई उम्र की लड़की को कोई बोल देता है तो बहुत ही बवाल हो जा रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि आंटी मतलब सिर्फ चाची ही नहीं होता, मौसी बुआ भी तो होता है। तो मान लो कि तुम उसकी मौसी हो, बुआ हो, और बुद्ध क्या उम्र ना होते हुए भी, मतलब छोटी उम्र ना होते हुए भी कुछ सामाजिक चलन है जिसमें अपने से छोटे को बड़ा समझदार कह दिया जाता है। गांव में आज भी आपसे बड़े उम्र के लोग भी माताजी कहते हैं, संबोधन देते हैं। माताजी कहने का मतलब ये नहीं कि हम उम्र दराज हो गए, हमें वहां माँ के समान इज्जत दे रहे हैं। हाँ, कुछ जगहों पर तो छोटी बहन को भी दीदी कहा जाता है, और कुछ शहरों में जो स्कूल है, कुछ स्कूल में भी, विद्यालय में भी छोटों को दीदी भैया कहा जाता है, मतलब चाहे वो लड़के बड़े हों चाहे छोटे हों, उनको भैया और दीदी कहा जाता है।
1: वही दीदी, तो ताई, भैया कहे, इस तरह से कहे ना तो बुरा नहीं लगता, पर एकदम से सडनली कोई आंटी बोल दे तो फिर थोड़ा सा महिलाओं को बुरा लगता है।
0: भाभी कहने में भी कोई बुरा नहीं मानता है, जबकि कई बार बहुत बड़े उम्र के लोग आपको भाभी कहते हैं तो वो अच्छा लगता है, फिर आंटी कहने में क्यों बुरा लगता है।
1: एक साथी ने लिखा है कि अगर वयस्क महिला को आंटी बोल दिया जाता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें अभी से उम्र दराज दिखने का या महसूस करने का एक प्रयास जैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब बुरा लगता है। उनके मुकाबले उसी उम्र के पुरुष को अगर अंकल कहा जाता है तब उसे जरा भी बुरा नहीं लगता। इस बारे में क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल। अब ये हमारे श्रोताओं के विचार हैं और हम तो बस आनंदित हो रहे हैं आपकी टिप्पणियां पढ़ पढ़ के। एक श्रोता ने लिखा है कि आंटी मत कहो, सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे लेकिन इसमें उम्र और रिश्तों को लेकर हमारी सोच छिपी है। किसी को केवल उम्र के आधार पर संबोधित करने के बजाय उसके नाम या सम्मानजनक संबोधन का प्रयोग करना अधिक सहज लगता है। शब्दों में अपनापन और सम्मान हो तो रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है, इसीलिए संबोधन वही अच्छा है जिसमें सामने वाला व्यक्ति सहज और सम्मानित महसूस करे।
1: एक साथी ने कहा है, मुझे भी ऐतराज है कोई हमारा हम उम्र का भी हमें आंटी कहने लगे। हाँ, हम आंटी उम्र के हो गए हैं, पर टीनेजर्स के ना कि अंकल आंटी वाले उम्र के लोग हमें कहे।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता किसी महिला को आंटी कह देने से इतना बुरा क्यों लग जाता है। आखिर ये तो उम्र और रिश्ते के लिहाज से संबोधन का एक सामान्य शब्द है, पर शायद जब किसी महिला को आंटी कहा जाता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसे उम्र दराज समझ रहा है। तो उम्र को छुपाने से बेहतर है उसे मुस्कुराकर स्वीकार करना, क्योंकि खूबसूरती उम्र में नहीं व्यक्तित्व और व्यवहार में बसती है। भाई ये बात तो पुरुषों के लिए भी लागू होती है ना, कि कई बार पुरुषों को जब अंकल कह दिया जाता है बहुत कम उम्र के लोगों को तो वो भी तो ये ऐतराज करते हैं,
1: अंकल कहाँ दिख रहा
0: है। और खास तौर से जब आप पत्नी की सहेलियां जब आती हैं और वो अंकल कह देती हैं
1: तो
0: कहते नजर आते हैं लोग कि अरे तुम्हारी सहेलियां तो हमें अंकल कहती हैं। तो बात तो वही हो गई। अब आज विषय आंटी का रखा गया, अगली बार अंकल वाला शब्द रख दिया जाएगा। फिलहाल एक गाना सुनवा दें।

0: ला तुम हो ओ दिलरुबा।
1: अब ये आंटी न कहो के बारे में तो भाई बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। हमारी एक सखी लिख रही है कि बैंगलोर में सभी महिलाओं को अम्मा कहा जाता है। मैं जब पहली बार वहां गई तो हर ऑटो वाला कोई दुकानदार अम्मा कह देता था, बड़ा बुरा लगता था।
2: एक साथी कहते कि मेरी लेडीज कलर की शॉप है, मैं भी कभी किसी को आंटी कहता हूँ तो उनका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। आंटी का अर्थ चाची, काकी, बुआ जी, मामी, यही तो होता है ना।
1: बिल्कुल। अच्छा, इसमें क्या होता है सोनाली जी, कई बार हमें पता नहीं होता है कि किस रिश्ते से कहा जा रहा है। मैं भी जब मुंबई नई नई आई थी तो एक बार सब्जी खरीदने गई और वहां पर सब्जी वालियों ने मुझे कहा कि ताई, मराठी में बोला ताई हे गया। तो मैंने कहा अरे, तब मुझे बिल्कुल मराठी बिल्कुल नहीं आती थी, तो ताई बोला तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि मैं ताई ताई मतलब तो क्या होता है, बड़ी माँ। हम उत्तर प्रदेश या एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में ताई मतलब
2: चाची
1: बड़ी मतलब बड़ी माँ, एक तरह से मतलब जो चाची है,
2: माँ की जेठानी।
1: हाँ, माँ की जेठानी हुई। तो मैं सोच रही थी कि ताई किस रिश्ते से कहा, और बड़ी दिखने का सवाल तो बाद में आया, पहले ये लगा कि किस रिश्ते से ताई कह रही है।

0: तो एक ने कहा, दो ने, फिर दो, मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने एक बार पूछा, मतलब मुझे भी बुरा लगा, हमने कहा ये ताई किस रिश्ते से कह रही, मेरा आपका क्या नाता है? तो उसने बताया ताई मतलब दीदी। तो दीदी भी एक तरह से मतलब छोटी थी, मैं तो बहुत छोटी थी जब आई थी, तो उस समय ये अजीब सा लगता है, बुरा लगने की बात तो बाद में आती रिश्ते। तो ये जो अम्मा वाली बात है कि किसी ने कोई सीधे आपको अम्मा जी कह दे तो कैसा लगेगा, तो सोच समझ के कहना भी चाहिए। और लेकिन हाँ, जहाँ का चलन है वहाँ का आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ के बारे में जानकारी ले लें, बस यही होता है।
1: एक हमारे साथी ने कहा कि भाई मुझे कोई लोग अंकल कह देते तो मुझे बुरा नहीं लगता है।
0: एक श्रोता लिख रहे हैं कि आजकल मैं सफर में रोडवेज में जाता हूँ तो कंडक्टर मुझे कभी कभी अंकल कह देते हैं, पर मैं तो बुरा नहीं मानता हूँ, पर फिर सोचता हूँ कि उम्र भी अब इस तरह की हो गई है। तो फिर हमारे एक पड़ोसी, एक अगले श्रोता ने लिखा है, हमारी सखी है, हमारी एक पड़ोसी है जो अपनी पत्नी को मजाक में आंटी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि 10 साल पहले ट्रेन में एक सज्जन ने मुझे माताजी कहकर संबोधित किया, मैं अवाक रह गई, मुझसे उम्र में बड़ा था, आज ये बात याद आ गई मुझे। ये तो मेरी वाली बात कि जो सब्जी वालियों ने कहा था वो सब हमसे बहुत उम्र में दो गुना तीन गुना उम्र की रही होंगी, और उन्होंने मुझे ताई कहा था, और मैं एकदम से परेशान हो गई कि ताई किस रिश्ते से कहा।
1: वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि मैं अपनी पत्नी को आंटी कहता हूँ। तो इसमें तो ये कहावत हुई ना कि घर का भेदी लंका डाए। कि एक ये जो हमने मुहावरा लिया है, इसमें आज का मुहावरा है घर का भेदी लंका डाए, इसका अर्थ घर का कोई सदस्य घर के राज दूसरों को बता देता है तो घर में परेशानियां शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते कि दीवारों के भी कान होते हैं, इस तरह समझाया करते थे, पर आजकल हर सभी लोग जागरूक हो गए हैं, खुद अपने घर के भेद किसी को बताते नहीं है, खुद दूसरों के भेद जानने में लगे रहते हैं।
0: अब तो एक गूगल नाम का जो प्राणी है आपके सारा आप सारे भेद खोल देता है, तो इसलिए आपको बहुत सजग रहना चाहिए। कई बार आपने गूगल से एक आध बार कोई एक चीज सर्च कर ली तो बार बार बार बार उसी के मैसेज आते हैं, वही वही चीज आपको, वही ब्रांड, वही चीज, वही वस्तु दिखाई दे।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी हमारे मन का भी जान लेता है।
0: बिल्कुल,
1: मन में कभी सोच जाए तो उसी के आने लगती है।
0: क्योंकि जब हम कोई विमर्श कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस बीच कभी भी आपने मोबाइल यूज किया तो वो बात पे चली जाती है,
1: शब्द पकड़ लिया तो उसी के आती। एक और
0: कई बार अलेक्सा अगर आपके घर में है और आपने कोई शब्द ऐसे बोला और मुंह से अ ल निकला एक साथ, तो अलेक्सा तुरंत बोल पड़ती है। तो ये जो हो गया है ना कि अब टेक्नोलॉजी के साथ घर का भेदी लंका ढाए वाला मुहावरा अब इस तरह से भी बदल गया है कि आप जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है घर का भेदी लंका ढाए बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा है और इस दृष्टिकोण से केवल विभीषण के चरित्र को भलीभांति याद किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप ही रावण का वध हो गया। भाई अजब तेरी दुनिया, गजब तेरी कारीगरी रे, सरकार जो समाज में ऐसे लोगों की उपस्थिति ही मिल जाया करती है।
0: अब एक गाना सुने,
1: सुनते हैं।

0: नया दौर फिल्म का ये गाना था और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतिया या गाना सुनवाए। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। श्रोताओ, हमारे आज के इस प्रोग्राम के सेल्यूलॉइड के सितारे हैं टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन। आपसे बातचीत की है नीता वाजपेयी ने।
1: दोस्तों, हम हाजिर हैं लेकर खास आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे। आज हम आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से करवाने जा रहे हैं जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
2: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
1: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
2: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं

0: और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहाँ मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के ज़माने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है। और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूँ, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूँ और उतना अच्छा बनूँ जितना आपने मुझे बताया है।
1: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े
0: जी,
1: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है।
0: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहाँ ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत है और रोल मांगने की ज़रूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं। और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के ज़माने से, जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगा और ऐसी कहानियाँ सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहाँ से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीच में बीचों बीच में हूँ इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूँ जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं। तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है और उस संगम के बीचों बीच में हूँ इस वक्त।
1: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
0: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त, वो मेरी कमजोरी है। और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
1: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है। हम देखते हैं बम्बई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
0: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप, मैं संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने

0: हैं मगर बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें, बाकी सब एडेप्टेड प्लेज हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशन हैं, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहां से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बम्बई में पृथ्वी और NCPA है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपर्टरी है
1: में 107 पदक, और अभी लक्ष्य है आईची नागोया में जो शुरू हुआ है 19 तारीख से, उसमें 107 से अधिक पदकों का लक्ष्य है। हांगझो में भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में 100 से अधिक पदक जीते थे, और अब 2026 में उस रिकॉर्ड को बेहतर बनाना भारतीय दल का बड़ा लक्ष्य है।
2: और क्रिकेट भी खास आकर्षण में है रेखा, 2026 एशियन गेम्स
0: प्रेसिडियम पे ले जाए, भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए, इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
3: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
0: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुनें।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी, क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी, वहाँ आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा, ये सोच के बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया। और हम कर भी क्या सकते थे, एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर, और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल ख़त्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं
1: बार बार
0: आते।
1: नहीं आते हैं, और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते, क्योंकि पूर्णैया जो है शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था, जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ, ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था, हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है, क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें, पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस उसका, तो हो सकता है हमने तकरीबन तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत यादें हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा।
1: जी
0: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
1: हाँ, अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको।
0: जी
1: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
0: अच्छा,
1: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
0: बहुत खूबसूरत बात है।
1: फिल्म जो है हमको बढ़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं, उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल है, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं। तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो

0: बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहाँ कुछ चीज़ें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गई हैं कि आपको उसी तरह से बोलना है। आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहाँ कुछ ज़रूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं, आपको क्या आपने मन माफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: कि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूँ शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स मैं थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूँ उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहाँ एक छोटे से रोल में ले लो, वहाँ खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की है। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ। और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया। तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की ज़रूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मज़ा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा, या आपको लगा रहे मैं कहाँ फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना जो दूसरे कैरेक्टर्स थे। मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूं अगर मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बन के आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता था।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनन जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पेन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूँ और उस हिसाब से मैं अपने आप को या तो एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ।
0: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
1: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, इसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफ़ी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रज़ा ने लिखी थी। और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है। उसकी फैक्ट्री, सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं हैं, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में हैं, और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किसमें ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब, ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था। जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी

0: हो नहीं सकता ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफ़ी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब मुंबई में हैं हम।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहाँ इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप में लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में नहीं आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहाँ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे विमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाई थी सीरियल और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो है वो डोसा नहीं खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है। तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया और वहां मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं। तो घर जमाई में बहुत मजा आया और भी काफी सीरियल से, लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं।
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना।
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे हेमंदा का गाया हुआ।
1: वाह।

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है, वो आदमी शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी, उसके जो किरदार हैं सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे, वो सारे कैरेक्टर्स, वहां के जो कैरेक्टर्स थे उसने आपको सबसे ज्यादा हंसाया। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी रही, ऐसा मेरा कहना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
1: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं, ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ। तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल्स बनाना बहुत मुश्किल है,
0: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग, आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना?
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या फिर पूरी जिम्मेदारी बोझ पर?
1: डायरेक्शन के बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका।
0: हाँ हाँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
0: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
1: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है, तो ज्यादा को कम

0: करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है, और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम।
1: जी
0: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
1: इसीलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ।
0: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है। और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा, आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई, जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परसेंगे परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा ये भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है, लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी। फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है, और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।
2: हंसने की चाह ने

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में, इस समय जब बहुत ही तेज भागती हुई जिंदगी हो गई है, इसकी कितनी अहमियत या इम्पोर्टेंस रह गई है? आपने जब हम बात कर रहे थे कहा था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार। जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता, थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया, तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे।
0: जी
1: वीडियो के बाद जब डीवीडी आए, तो वीडियो
0: जी
1: चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह की फिल्में बनती हैं, वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है। जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविज़न पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविज़न अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविज़न के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है, जो अब नहीं रहा। नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक
1: हम
0: कहा।
1: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
0: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
1: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि
0: हाँ?
1: ठहरिए, होश में आऊं। गाना है,
0: ओह
1: सुनिए।
0: अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियसली लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ बोल लेता हूँ मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
0: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
1: संगीत में
0: रुचि है?
1: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फार्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
0: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे, किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
1: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी सपनों से ही शुरू की थी, तो सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मजा आया, या तो ये कहें कि वाकई दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूंगा कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाए जो बहुत ही यादगार रहे।
0: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध

0: भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
1: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉयड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।
3: सेल्यूलॉयड के सितारे।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा सारा साथ होगा।
4: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
4: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
4: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं।
4: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
4: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
4: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के एकता नगर में आयोजित 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में राज्य से आग्रह किया कि वे अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल का प्रस्ताव दें और वहां विश्व स्तरीय सुविधाओं तथा 360 डिग्री विकास का प्लान भी बनाएं। जिस राज्य का प्रस्ताव चुना जाएगा, अगला नेशनल फिल्म अवार्ड्स उसी पर्यटन स्थल पर आयोजित होगा। करम पूजा पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं खुशहाली लेकर आए, यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि करम पर्व हमें प्रकृति के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और उसके संरक्षण की प्रेरणा देता है। एसआईआर से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और एसआईआर प्रक्रिया में आपत्ति और दावा पेश करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशन नाथ शाहदेव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि प्रत्येक बूथ पर करीब 200 से अधिक मतदाताओं को नोटिस किया गया है, जिससे कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। जेपीएससी और जीएसएससी सीजीएल परीक्षा मामले में सीआईडी की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट पर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि पूर्व में सीआईडी की ओर से कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में परीक्षा प्रक्रियाओं को साफ सुथरा बताया गया था, जबकि इस बार की रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की बात कही गई है। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला एनएमएल में राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता बेस्ट ऑफ द वेस्ट वेल्डर्स 2026 का शुभारंभ हुआ। जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रभाकरण ने बताया कि प्रतियोगिता में 33 वेल्डर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 3 महिला प्रतिभागी भी शामिल हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: है कि हमें मालूम होता है कि उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी दिलो जान से मोहब्बत करते रहना, इसे ही इश्क कहते हैं। और ये इश्क बड़ा बेरहम होता है।

ख्वाबों से ना जाओ के अभी रात बाकी है, पहलू में आ जाओ के अभी रात बाकी है। जी भर के तुम्हें देखूं, तस्कीन तो हो कुछ मत, शम्मा बुझाओ के अभी रात बाकी है। कब दिन निकले कब रात कटे कौन ये जाने, छोड़ के न जाओ तन्हा के अभी रात बाकी है। कट जाए यूं ही उल्फत की बातों में ये पल, जागो हमें जगाओ के अभी रात बाकी है।

मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर वादा नहीं करना के वादे टूट जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो फिर जिद नहीं करना के साथी छोड़ जाते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो कभी शिकवा नहीं करना, ये शिकवे गिले दिलों को दूर करते हैं। मोहब्बत हमसे करनी है तो सिर्फ मोहब्बत करो ना जाना, कि मोहब्बत ही मोहब्बत को मजबूत करती है।

दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। छाया गीत कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मैंने मोहब्बत का चेहरा तो नहीं देखा, मैंने तुम्हें देखा है। अगर मोहब्बत की कोई सूरत होती तो वो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। अगर मोहब्बत बोल सकती तो लहजा तुम्हारे जैसा होता। तुम्हें पता है, तुम वो इनाम हो जो बिन मांगे मिल गया, वो खजाना हो जिसका कोई मोल नहीं। तुम्हें देखते ही सांसें महक जाएं, धड़कने बहक जाएं, मेरे बाग़े मोहब्बत का वो खुशनुमा फूल हो तुम। किसी नेकी का सिला जख्मों का मरहम, दोस्त जाने मन सुकून ज़िंदगी। मुख्तसर सी बात है, मेरा सब कुछ

जानम मेरे लिखने से क्या हासिल, तुम पढ़ो तो कोई बात बने। मेरे सोचने से क्या हासिल, तुम समझो तो कोई बात बने। मैं चुप हूँ तो क्या हासिल, तुम कुछ कहो तो कोई बात बने। मैं फूल हूँ तो क्या, तुम खुशबू बनो तो कोई बात बने। मेरे चाहने से क्या हासिल, तुम भी महसूस करो तो कोई बात बने। मैं बेरंग हूँ तो क्या, तुम उल्फत का रंग भरो तो कोई बात बने।

मोहब्बत सावन नहीं जो टूट कर बरसे और थम जाए, मोहब्बत आग नहीं सुलगे भड़के और राख हो जाए, मोहब्बत आफताब नहीं उभरे चमके और ढल जाए, मोहब्बत तो महताब है बढ़ता है घटता है निकलता है छुपता है मगर कभी फना नहीं होता। तुम्हें देखूं तो कहीं भी नहीं, सोचूं तो कुछ भी नहीं, मगर जो कह दूं तो तुम मेरे होने की सनद हो। मेरी एक हद है और उसमें बेहद हो तुम।

छिड़के रहेगा कोई अफसाना, छिड़के रहेगी कोई कहानी।

अब क्या सुनाऊं दास्ताने इश्क यार, सुनने वाले मिलते हैं, दर्दे आशना मिलता नहीं। साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का, तो आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 5:35 से आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

किसान वाणी का समय होगा शाम 6:02 से। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर।

शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7 बजे आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे, देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश का नाम सुन सकेंगे रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर, न्यूज़ 8:09 रात्रि 9 बजे, उर्दू में खबरें रात्रि 9:15 पर।

रात 10 बजे आप सुनिएगा स्पेशल प्रोग्राम 20 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स के बारे में। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे रात 10:20 पर। हिंदी में समाचार रात 11 बजे, अंग्रेजी में समाचार रात 11:05 पर।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो केवल भाषा नहीं बल्कि समानता, सम्मान, अधिकार और संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाधित व्यक्तियों के अधिकारों तथा समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस घोषित किया, जो पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था। तो दोस्तों, जानते हैं कि सांकेतिक भाषा क्या है। दोस्तों, सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का नाम नहीं बल्कि यह एक पूर्ण और प्राकृतिक भाषा है जिसकी अपनी व्याकरण, संरचना और अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में समुदाय में अलग अलग सांकेतिक भाषाएं विकसित हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा को केवल किसी व्यक्ति की कमजोरी के रूप में देखना सही नहीं बल्कि ऐसे महत्वपूर्ण भाषा और सांस्कृतिक माध्यम के रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, इसमें से अधिकांश लोग अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचा लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं कि सांकेतिक भाषा संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो सुन नहीं सकते या जिनके लिए बोलचाल की भाषा सहज नहीं है। 23 सितंबर को यह क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 23 सितंबर की तारीख के एक विशेष महत्व है। इसी दिन वर्ष 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ यानी कि विश्व बाधिर महासंघ की स्थापना हुई थी। इसी ऐतिहासिक घटना की याद में 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व बधिर महासंघ लंबे समय के लिए बधिर लोगों के लिए मानवाधिकार, सांकेतिक भाषाओं की मान्यता और समाज में समानता भागीदारी के लिए काम करता रहा। इस दिवस की आवश्यकता आखिर क्यों है, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, अक्सर समाज में किसी व्यक्ति की क्षमता को केवल उसकी सुनने या बोलने की क्षमता से आंक लिया जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी आवाज़ से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा, सोच, मेहनत और क्षमताओं से तय होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर देता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात पर जोर देते हुए बच्चों को कम उम्र से सांकेतिक भाषा और उससे जुड़ने की सेवाओं तक पहुँचाना समानता के लिए संभव हो चुका। दोस्तों, 2026 में विशेष थीम यानी कि 2026 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की थीम डिलाइटिंग डेफ पीपल ह्यूमन राइट्स अर्थात बधिर लोगों के लिए मानवाधिकार की घोषणा और उन्हें वास्तविक रूप से देना। इसका संदेश यह है कि अधिकार लोग कागज पर लिखे हुए नहीं होने चाहिए बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सूचना और सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से उपलब्ध होना चाहिए। वर्ष 2026 में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व बधिर महासंघ स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन को अपनाए जाने पर 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। दोस्तों, इसमें युवाओं की क्या भूमिका है, इसको भी जानते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि विश्व में युवाओं की भूमिका इसमें क्या होनी चाहिए। दोस्तों, युवा समाज की सोच बदलने की क्षमता रखता है। हमें शुरुआत में अपने व्यवहार से करनी चाहिए। यदि हम विद्यालय, कॉलेज और कार्यस्थल में कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और न ही उसे अलग महसूस कराना चाहिए। युवा सांकेतिक भाषा को कुछ सामान्य शब्द और संकेत सीख सकते हैं। इसमें संवाद की बाधाएँ कम होती है और समाज में संवेदनशीलता बढ़ती भी है। विद्यालय और शिक्षण स्थानों में भी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि किसी विद्यार्थियों को उसकी सुनने या बोलने की क्षमता के कारण शिक्षा से दूर होना न पड़े। यह हमें समझाता है कि समानता का अर्थ सभी लोगों के लिए बिल्कुल एक जैसा बनना चाहिए। समानता का अर्थ हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का समान अवसर देना चाहिए। दोस्तों, सांकेतिक भाषा हमें यह सीख देती है कि संवाद केवल आवाज़ से ही नहीं होती, संवाद आँखों से भी हो सकती है, हाथों से भी हो सकती है और संवेदनशीलता, व्यवहारता से भी हो सकती है। दोस्तों, कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी बात समझ नहीं पाते और तुरंत उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा धैर्य रखें, सीखने की कोशिश करें और उसे संवाद के तरीके का सम्मान करें तो एक नई दुनिया हमारे सामने खुल सकती है। दोस्तों, आज आवश्यकता है कि इस बात की कि हम बधिर लोगों के लिए केवल सहानुभूति न रखें बल्कि समान सम्मान और अवसर के अधिकारों की भी बात करें।
दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भाषा अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं अलग नहीं होती। संवाद का माध्यम अलग हो सकता है लेकिन सपने अलग नहीं हो सकते। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और सुनने जाने की समाज में समान अधिकार देने का अधिकार भी है। दोस्तों, आइए हम इन अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि हम अपने समाज को कैसा बनाएंगे जहां व्यक्ति को उसकी भाषा या शारीरिक स्थिति के कारण पीछे न रहना पड़े, जहां हर हाथ की भाषा समझी जाए, हर आवाज़ को सम्मान मिले और हर व्यक्ति को समान अवसर भी प्राप्त हो। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के बारे में, तो आइए इस चर्चा के बाद सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

आज हम बात करने जा रहे हैं देश की आर्थिक प्रगति का माध्यम स्वरोजगार। अगर हमारे देश का हर युवा सिर्फ नौकरी खोजने के बजाय रोजगार पैदा करने की सोचने लगे तो क्या होगा? क्या इससे केवल उस युवा की जिंदगी बदलेगी? नहीं, उसके साथ उसका परिवार बदलेगा, आसपास का समाज बदलेगा, स्थानीय बाजार मजबूत होगा, नए रोजगार पैदा होंगे और अंततः देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसीलिए आज का हमारा विषय केवल रोजगार का विषय नहीं है, यह विषय है आत्मनिर्भरता का, आर्थिक मजबूती का और देश की प्रगति का। आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक प्रगति का माध्यम स्वरोजगार। श्रोताओं, सबसे पहले समझते हैं स्वरोजगार क्या है। स्वरोजगार का मतलब केवल व्यापार करना नहीं है, अपने हुनर को रोजगार में बदलना है और यही बात इसे विशेष बनाती है। अब बात करते हैं देश की युवा शक्ति की। हमारे देश के युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, युवा देश की वर्तमान शक्ति भी है। युवाओं के पास ऊर्जा है, नई सोच है, तकनीकी जानकारी है और कुछ नया करने का साहस है। नौकरी करना बिल्कुल गलत नहीं है, नौकरी सम्मानजनक रोजगार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। श्रोताओं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हर बड़ा व्यवसाय कभी न कभी छोटा ही था। एक छोटा कमरा आगे चलकर बड़ा संस्थान बन सकता है, एक छोटी दुकान आगे चलकर बड़ा व्यवसाय बन सकता है, एक छोटी डेयरी आगे चलकर बड़ा फार्म बन सकता है। एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया काम आगे चलकर कई लोगों को रोजगार दे सकता है। इसीलिए शुरुआत छोटी है तो निराश मत होइए, छोटी शुरुआत कमजोरी नहीं है, छोटी शुरुआत बड़े सपनों की पहली सीढ़ी है। ज़रूरत है ईमानदारी, मेहनत, सही योजना और लगातार सीखने की। भारत की आर्थिक शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं है, भारत की असली ताकत उसके गांवों में भी बसती है।

0: की बिक्री बढ़ेगी, स्थानीय सेवाओं की मांग बढ़ेगी, परिवार की आय बढ़ेगी और धीरे धीरे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसलिए स्वरोजगार ग्रामीण विकास का भी महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। आज का समय डिजिटल युग का है। मोबाइल और इंटरनेट ने स्वरोजगार की दुनिया को पहले की तुलना में बहुत व्यापक बना दिया है। आज कोई व्यक्ति अपने उत्पाद और सेवाओं को केवल अपने गांव या शहर तक सीमित रखने के बजाय ऑनलाइन लोगों तक पहुंचा सकता है। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइनिंग, वीडियो निर्माण, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिक्री और अनेक डिजिटल सेवाएं युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रही हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, मोबाइल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। सही इस्तेमाल किया जाए तो यह ज्ञान और रोजगार का साधन भी बन सकता है। जिस हाथ में मोबाइल है उसी हाथ में अवसर भी हैं। ज़रूरत है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की। एक व्यक्ति का स्वरोजगार धीरे धीरे दूसरे लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, देश की सरकार और संस्थाओं की भूमिका है कि युवाओं और नागरिकों को ऐसा वातावरण मिले जहां वे अपने व्यवसाय को शुरू और विकसित कर सकें। इसके लिए कौशल विकास, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, बाजार तक पहुंच, डिजिटल सुविधाएं और उद्यमिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल सरकार के प्रयास से ही देश विकसित नहीं होगा। सरकार और नागरिक दोनों की साझी भूमिका ज़रूरी है। सरकार अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराए, युवा उन अवसरों का उपयोग करें, उद्यमी ईमानदारी से व्यवसाय चलाएं, लोग स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दें, तभी आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। और जब देश में अधिक लोग उत्पादन और सेवाओं से जुड़ेंगे, अधिक रोजगार पैदा होगा और लोगों की आय बढ़ेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा का सार यही है, स्वरोजगार केवल अपनी आजीविका चलाने का साधन नहीं है, यह है आत्मनिर्भरता का माध्यम, परिवार की आर्थिक मजबूती का माध्यम, रोजगार सृजन का माध्यम, ग्रामीण विकास का माध्यम, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम और देश की आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम। आइए हम ऐसी सोच विकसित करें कि युवा केवल यह न पूछें मुझे नौकरी कब मिलेगी, बल्कि यह भी पूछें मैं अपने हुनर से कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा कर सकता हूँ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे, वार्ता विषय था देश की आर्थिक प्रगति का माध्यम स्वरोजगार। दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो केवल बच्चों के वर्तमान को ही नहीं बल्कि हमारे देश के भविष्य को भी प्रभावित करती है। दोस्तों, हमारा विषय है बाल श्रम, एक गंभीर समस्या। बचपन जीवन का वह समय है जब बच्चे को पढ़ना, खेलना, सीखना और अपने सपनों को आकार देना चाहिए। लेकिन जब किसी बच्चों के हाथों में किताब और खिलौने की जगह मजदूरी का सामान आ जाए तो उसका बचपन उससे छिन जाता है, यही बाल श्रम है। दोस्तों, बाल श्रम का अर्थ है कम उम्र में बच्चे को एक ऐसा काम करवाना जो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और मानसिक विकास को प्रभावित करे। दोस्तों, कई बार बच्चे दुकानों, होटलों, ढाबों, कारखानों और घरों का निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, दिखाई देते हैं। इसके पीछे गरीबी, परिवार की आर्थिक मजबूरी, शिक्षा की कमी और जागरूकता का अभाव जैसे कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, बाल श्रम का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बच्चा शिक्षा से दूर हो जाता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं बल्कि यह हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने की क्षमता भी देता है। जब कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र में काम करने लगे तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं। बाल श्रम बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय तक काम करना, भारी सामान उठाना, धूल धुएं वाले वातावरण में रहना या असुरक्षित जगहों पर काम करना उसके शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन केवल कानून बना देना कि इस समस्या का पूरा समाधान नहीं है, इसके लिए परिवार, समाज, स्कूल, प्रशासन और सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। यह हमें समझना होगा कि बच्चे, किसी के भी बच्चे, मदद करने का अच्छा तरीका उसे शिक्षा से जोड़ना और सुरक्षित वातावरण देना है। युवाओं की भूमिका भी इस समस्या में समाप्त करने में महत्वपूर्ण है। युवा समाज में जागरूकता फैला सकते हैं, बच्चों की शिक्षा के महत्वपूर्ण समस्या को समझ सकते हैं और अपने आसपास बाल श्रम दिखाई देने पर उचित माध्यम से इसकी सूचना दे सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बाल श्रमिक से सामना सेवा और लेते समय अनजाने में भी उस व्यवस्था को बढ़ावा न दें। हमें बच्चों को दया

का पात्र नहीं बल्कि अधिकारों और सपनों वाले नागरिकों के रूप में देखना चाहिए। हर बच्चे को पढ़ने लिखने सीखने और सुरक्षित वातावरण में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के हाथों में औजार नहीं बल्कि किताबें होनी चाहिए, उनके कंधों पर काम का बोझ नहीं बल्कि सपनों का भार होना चाहिए। अगर हम आज एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे तो हम केवल उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे समाज पूरे देश को भविष्य को मजबूत करेंगे। दोस्तों अभी हम बातें कर रहे थे बाल श्रमिक समस्या के बारे में। दोस्तों अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों इसी गाने के साथ हमारा आज का युवानी कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दें। आपकी दोस्त आराध्या माही को आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में प्रकृति पूजा कर्म का पर्व पारंपरिक उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यवासियों को कर्म पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। SIR से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और SIR प्रक्रिया में आपत्ति और दावा पेश करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशननाथ शाहदेव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि प्रत्येक बूथ पर करीब 200 से अधिक मतदाताओं को नोटिस किया गया है, जिससे कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। पूर्व भाजपा सांसद सुनील सोरेन ने जिले के अलग अलग जर्जर सड़कों की ओर से राज्य सरकार का ध्यान खींचा है। श्री सोरेन ने कहा है, सिर्फ दुमका ही नहीं, राज्य के अन्य क्षेत्रों की सड़कें भी जर्जर हालत में आ गई हैं। संवेदकों का भुगतान नहीं हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML में राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेल्डर्स 2026 का शुभारंभ हुआ। जमशेदपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रभाकरण ने बताया कि प्रतियोगिता में 33 वेल्डर हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 3 महिला प्रतिभागी भी शामिल है। भाजपा के वरीय कार्यकर्ताओं की बैठक गिरिडीह पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह की उपस्थिति में संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: किसान वाणी।
1: परती जमीन के खेती लायक बनाऊ, उपज के बढ़ाऊ।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब भाई बहन मन के मनीष भाई कर जोहार और करण भाई राउर के हूँ जोहार।
1: जोहार जोहार मनीष भाई और सब सुनोया मन के जोहार। बताई देवीला ये कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: और बताओ करण भाई राउर कर हाल समाचार कैसन है? राउरे मुरुक आज खुश दिशा थी, खुशी का राइज का है।
1: अरे राउरे तिसन कह दिली, मोर हाल समाचार नगदी नगद है मनीष भाई। और खुशी कर कहले कि का कारण है, तो खुशी ले कारण तो खोजे पड़े ला। आज कल कर जे जमाना है, जिंदगी है नहीं, उकर में बहुत दुखे दुख दिसेला, दुखे दुख भरल लागेला। तो देखो कोनो कोनो मौका में खुदे हूँ हंसे पड़े ला, हंस चलीला, यही तेर जो खुश रह चाहिए।
2: एकदम रौरे नगद कहली, अपने में मस्त रहो और खुश रहो, और खुशी नहीं लागत है वाले गीत गोविंद कर सहारा हूँ ले सकीला।
1: हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम सुपट कहली, मनोरंजन ले तो देखो गीत गोविंद।

0: गोटे बढ़िया साधन है और उकर से हम लेकर जीव जहान हूँ खुश हो जाएला और मन हरियर हो जाएला। हाँ तो मनीष भाई देखो आजकल तो बन पातर में देख तो सब बट हरियर हरियर दिशत है, धान कर खेती मन लहलहात है, डाड़ में हूँ बारी में हूँ खेती आए है नी और सब बट हरियरी हरियर दिशत है और इसन में तो मन एकदम खुश हो जाला बहुत बढ़िया लागेला और एहो गोटे खुशी कर कारण है के मनीष भाई
1: हरियाली रहेला तो हमरे मन कर मन हूँ हरियर रहेला और खुशी में भेटायला ऊपर से का कहेला।
0: हाँ हाँ एकदम और भीतरे से खुश रहले बढ़िया लागेला लेकिन खुश रहे ला देखो जीव जहान कर बढ़िया रहे बहुत जरूरी है तो से चलते आपन जे तबियत है आपन जीव जहान है उके बढ़िया रखे चाहे इकर ले देखो हमरे कर जे भात तियन है पानी है वो बढ़िया होए चाहे पौष्टिक आहार खाए चाहे और सफा सफा पानी और डबकाल पानी जे रहेला उके पिए चाहिए। अगर ताता ताता नहीं पिए थे तो डबकाल पानी के उके ठंड करो और पियो।
1: और करण भाई इकर संगे संगे हमरे मन के शारीरिक श्रम हूँ करे चाहिए का कहेला।
0: देखो खेती बाड़ी कर काम में तो मनीष भाई श्रम करे पड़ेला है नी मेहनत करे पड़ेला और इकर में देखो शरीर के खटवा पड़ेला तो इकर तो कोनो उपाय नखे। मुदा देखो नी बहुत एकन परती जमीन रहेला तो उकर में हूँ खेती हमरे के करे चाहिए
1: एकदम जो परती भूमि है उकर में हमरे मन के खेती बाड़ी करे चाहिए उके मेहनत करके जोत कोड़ के उके खेती लायक बनाए चाहिए परती भूमि के का कहिला।
0: हाँ बहुत एकन परती सन छोड़ देवे ना और बहुत साल तक खेती होनी करे ना और परती भूमि छोड़ ले देखो आज कल काले की खेत मन हूँ कम हुआ थे तो परती जे जमीन है जे खेत है उकर में खेती करब चाहे उकर में बाड़ी वाला जे साग सब्जी है उके लगाब तो उकर से उपज आवी तो दूगो कचिया आवी नहीं
1: एकदम हमरे मन के जे परती जमीन है उके खेती बाड़ी बनाए चाहिए इकर ले हमरे मन के जे परती जमीन है उके गहराई से जोतवाए चाहिए और गहराई से जोतवाले जे माटी है उ माटी उपज लायक बन जाएला।
0: हाँ तो देखो उके अगर हमरे मन घरी घरी जोतब और उके दो तीन धाव चार धाव जोतब होल तो देखो उकर में गहराई से जुताई हो जाएला और उकर में हमरे मन के गोबर माइन मन देवे चाहिए और अगर माटी कैसन है तो चूना मन के लगाए चाहिए।
1: एकदम नगद कहली करण भाई रवरे और हमरे मन के जे परती जमीन है उके खेती बाड़ी लायक बनाए के लिए पानी कर हूँ जोगाड़ रखे चाहिए। करण भाई कर संगे संगे हमरे मन के जे माटी कर जांच है उके हूँ करवाए चाहिए काले की इकर से हमरे मन के पता चलेला कि माटी में का पोषक तत्व है और का कमी है।
0: देखो माटी में 16 बरन कर जे पोषक तत्व रहेला तो उकर में हमरे मन नहीं जाने के पारेला नहीं कि का आहे का कमी आहे का बेसी आहे का के ऊपरे से देवे का है और का खुदे माटी में है तो से चलते जांच करवा ले तो बहुत बढ़िया और जांच करवा के चाहिए हर 3 साल में अपन खेत कर जे माटी है उके जांच करवा के चाहिए। माटी कर स्वास्थ्य के जानो तबे तू कर में का खेती करे के और कैसन उपज आवी से केहू जान सकेला तो जरूर माटी कर जांच करवा के चाहिए।
1: तो करण भाई आगे और का जुगाड़ है उके बताओ।
0: तो देखो आज हमरे मन आज कर जे बात है उकर में राम तिल मतलब जे के हमरे सरगुजा कहिला और हमरे तो हमर गांव घर बटी के जटंगी कर खेती कहिला है ने तो आज जटंगी कर खेती कर बारे में हमरे मन जानब जटंगी कर खेती कैसन करल जाएला और उकर में कोनो रोग लग जाए तो उकर कैसन उपचार करे के और रोग ना लागो उकर ले का करे के इकर बारे में जानब बताबे डॉक्टर शांति कुरली इकर।

0: વાણી किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक कर जोहार
1: और संगे संगे मनीष भाई कर हूँ जोहार और कृष्ण जीवन भाई रावर के हूँ जोहार।
0: हाँ जोहार मनीष भाई, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: और कहू का हाल चाल है?
7: मोर हाल समाचार तो नगदे नगद है भाई। राउर रे बमरू का खुश दिशा थी, खुशी का राइज का आखिर बताओ।
6: खुशी का राइज है करम परब, कतना बढ़िया जो है से हमरे कर जे झारखंड है इकर में कतना बढ़िया करम परब मनावल जाए। हर जगह कहीं बांसुरी बाजत है, कहीं ढोल नगाड़ा बाजत है और पारंपरिक वेशभूषा पिंध करके और जनी मर्द जो है से कतना बढ़िया नाचे लाई है।
7: एकदम ही नाच गान तो हमरे मन कर जीव जान के खुश रखबे करेला। संगे संगे हमरे कर एकता करहूँ परिचय देवेला काले कि हमरे जब हमरे मन जब अखरा में नाच गान करेला तो हमरे एक संगे एक जुट के नाचीला गावीला, तो हमरे कर एकता करहूँ परिचय देवेला।
6: सही बात है। और देखो जैसे मन कर हरियर कर बात कहली, अपन मन के हरियर तो रख के है और संगे संगे जैसे हमरे कर धरती के भी हरियर रखे।
7: एकदम हमरे मन जब अपन धरती के हरियर रखब तो कईगो बीमारी से मुक्त रहब।
6: और गच्छ वृक्ष तो हमरे के हरियर जैसे धरती के रखबे करेला, साथ में ऑक्सीजन भी भेटाएल जेकर से हमरे मन जिंदा रहेल और साथे साथे फल फूल काठी लकड़ी सब भेटाएल जेकर से हमरे बहुत सारा फर्नीचर मन भी बनावेल।
7: एकदम गच्छ वृक्ष वातावरण के तो ठंडा रखबे करे ना, संगे संगे हमरे मन के कई गो एकन ऐसा रोग से हूँ मुक्त रखे ना। इसलिए भाई बहन मन हमरे मन के अपन घर अंगना में अगर ठाव है तो गच्छ वृक्ष जरूर लगाए के चाहिए।
6: और देखो आज जे जितना प्रदूषण जो बढ़त है आ ओकर खास जो है से कारण है गच्छ वृक्ष कर कम होना। और गच्छ वृक्ष जो है से हमरे के प्रदूषण से भी बचावेला, वातावरण के भी स्वच्छ रखेल।
7: गच्छ हमरे लगाब होले हमरे कर धरती हरियर तो रहबे करी, संगे संगे हमरे हूँ हरियर रहब।
6: और गच्छ के लगा के छोड़े के नखे और ओकर देखभाल भी करे के, तब नहीं गच्छ बढ़ी और बड़का बड़का गच्छ हुई तो हमरे के ऑक्सीजन भी देवी और हरियर भी अपन धरती के रख। तो भाई बहन मन हमरे के संकल्प लेवे के है कि अपन हाथ से जितना गच्छ हुए लगाऊं, अपन देश के हरियर बनाऊं।
7: एकदम तो जाड़ कर दिन है से फूल कर खेती ले सबसे बढ़िया मानल जाई है। तो जाड़ कर मौसम में जब हमरे फूल लगाब होले उकर में का बीमारी होएला और कैसे हमरे उकर देखभाल कर सकीला, का तेरी फूल कर खेती कर सकीला, इकर बारे में आज हमरे जानब और जानकारी देवे डॉक्टर पूनम होरो और इनगर से गोठियाई हैं कृष्ण जीवन पौराणिक भाई।
8: किसान साथियों नमस्कार, आज हम ऐसे खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि अभी बाजार में बहुत मांग है और शादी ब्याह से लेकर के सभी उत्सवों में काम देता है और वो है फूलों की खेती। अब फूलों की खेती कर किसान भाई अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जाड़ा का मौसम आ रहा है तो जाड़े में फूलों की खेती आप किस तरह से करेंगे इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर पूनम होरो, उद्यान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। डॉक्टर पूनम आपको नमस्कार है।
9: नमस्कार।
8: आप हमारे किसान भाइयों हमारे श्रोताओं को ये बताएं जाड़े में लगाए जाने वाले प्रमुख फूल व्यावसायिक रूप में कौन कौन से हैं?
9: तो इसमें मुख्य रूप से जो हम देखेंगे वो जो फूल हैं जिसमें आप बाजार में देखते हैं गेंदा के फूल, ग्लैडुलस, गुलदाउदी और गुलाब, ये सारे फूल जो हैं जाड़े में लगाए जाते हैं। ऐसे ये कह लिया जाए कि झारखंड में तो हम सालों भर फूलों की खेती कर सकते हैं जैसा कि यहाँ की जलवायु है, लेकिन मुख्य जो सीजन जो कहलाता है वो जाड़ा होता है जिसमें कि बीमारी रहित पौधे मुख्य रूप से होते हैं, बीमारियों की संभावना कम होती है और किसान भाई आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में हमारे पास जो ओकेजन होते हैं, उत्सव होते हैं, वो भी लगातार होते हैं, जिसमें कि उन्हें मार्केटिंग में भी काफ़ी आसानी होती है और इसलिए किसान भाई जब जाड़े में इन फूलों की खेती करते हैं तो इससे काफ़ी मुनाफा भी कमा सकते हैं।
6: जी, तो ये कब और कैसे लगाए जाते हैं?
9: हम देखेंगे कि बरसात जैसे ख़त्म होता है, जो सितंबर का महीना या अक्टूबर में भी अगर 15 अक्टूबर तक हम ले लें तो जैसे ख़त्म होता है तो हम इसकी खेती शुरू कर देते हैं। तो इसकी खेती अगर हम पहले से मन बना कर रखे हैं, किसान भाई अगर सोच कर रखे हैं कि हमें फूलों की खेती करनी है, तो पहले ही खेतों का चुनाव किसान भाई करके रख ले कि किस खेत में लगाना है। हम इसमें मैं किसान भाइयों को बतलाना चाहूँगी कि मुख्य रूप से वैसे खेतों का चुनाव करें जिसमें पानी नहीं जमता हो, लेकिन एकदम ही बलवाही या जिसमें बालू की मात्रा ज़्यादा हो, वैसे खेत जो जिसको कि हम वेस्ट लैंड बोलते हैं, वैसे खेत इसके लिए ना रखें। लेकिन बलवाही दोमट मिट्टी जिसमें दोमट की भी मात्रा हो और बालू भी हो, ऐसे खेतों का चुनाव कर लें। और ये चुनाव आप गर्मी के समय से ही कर सकते हैं और उसी समय से अगर आपने मन में सोचा है कि हमें लगाना है तो एक जुताई, जैसे प्री मानसून जो बारिश बीच बीच में होती है, तो एक बार अपने खेत को वो तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े होंगे वो सारे चीज़ ख़त्म हो जाएंगे और खेत परफेक्ट रूप से तैयार होगा और इसमें आप आसानी से रोग रहित फूलों की खेती कर सकते हैं।
6: जी, तो इसका उपयोग कब होता है?
9: ये जो फूल हैं आप बाज़ार में देखते हैं कि जो हमारे पास बिकते हैं, काउंटर में देखते होंगे जगह जगह, तो मन में एक सवाल उठता है कि ये फूल आखिर आते कहाँ से हैं। तो ये फूल किसान ही लगाते हैं, चाहे तो खुले खेत में लगाएं, चाहे तो पॉली हाउस के अंदर लगाएं, लेकिन जहाँ भी लगता है ये हमारे किसान भाई ही इसे उगाते हैं, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे झारखंड भी हो जिसमें आप शुरू कर रहे हैं, चाहे आपका बेंगलोर हो, चाहे पुणे हो, तो आप अपने अपने तरीके से वहाँ किसान भाई ही इसकी खेती करते हैं। और इसके उपयोग की जहाँ तक बात है तो हम देखेंगे कि उपयोग आजकल फूलों का हर अवसर पर उपयोग होता है, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, और चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी का सालगिरह हो, चाहे पूजा का समय हो, चाहे और भी कोई ओकेजन छोटे बड़े, आजकल हर चीज़ का सिंबल जो हो गया है प्रतीकात्मक रूप से फूल ही दिया जाता है। तो इसलिए ये सालों भर इसका मार्केट बना रहता है और फिर सरकारी कार्यक्रम भी जो होते हैं उसमें भी फूलों की बहुत महत्ता होती है। स्कूल कॉलेजों में भी देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी उसकी महत्ता होती है। तो इसका जो उपयोग होता है ये हमेशा बना रहता, चाहे तो माला के रूप में, चाहे गुलदस्ते के रूप में, चाहे बाल में लगाने के रूप में, चाहे तो पंडाल सजाने, गाड़ी सजाने, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। पहले हमें देखकर लगता था कि ये शायद बहुत, इसकी खेती बहुत तकनीक के साथ होती है और हम इसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ये विडंबना हट रही है और किसान भाई इसमें आगे आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के भी किसान भाइयों ने इसे अपनाया हुआ है और बहुत जगह रांची के आसपास और जहां आप देखेंगे जमशेदपुर वाला इलाका, हजारीबाग वाला इलाका, देवघर का इलाका, सब जगह किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं।
6: जी, तो अभी आपने इन फूलों के उपयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब ये बताएं कि हमारे किसान भाई इन फूलों को अगर लगाना चाहें तो अपने खेतों की तैयारी कैसे करेंगे?
9: ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक होता है किसान भाइयों को। पहले ही जैसे मैंने बताया कि खेत का चुनाव वैसा हो जिसमें कि पानी नहीं जमता है, इस तरह के खेत रखें। और उसके बाद बलवाही दोमट मिट्टी वाले खेत का चुनाव करें। फिर भरपूर मात्रा में अगर आपके पास गोबर का खाद है या वर्मी कंपोस्ट है या जो भी जैविक खाद आपके पास है तो आप उसका उपयोग इसमें ज़मीन तैयारी में कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी इसमें उतना डालें कि मिट्टी का जो रंग होता है वो बदल जाए, थोड़ा कालापन लेके मिट्टी अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छा होता है फूलों की खेती के लिए। और जब बीच बीच में आप देखेंगे कि इसमें दो तीन जुताई के बाद रोटावेटर चला के इसको प्लेन करके क्यारी में इसे लगाया जाता है, कोई भी फूल अगर गेंदा भी लेते हैं तो क्यारी में लगाते हैं, इसका एक प्रॉपर दूरी होता है। जैसे अगर आप झाड़ा में लगा रहे हैं तो आप 30 सेंटीमीटर या 1 फीट की दूरी दे सकते हैं और 40 की भी दूरी दे सकते हैं, किस्म पर भी दूरी निर्भर करता है। और अगर आप बरसात में इसी गेंदा की खेती कर रहे हैं तो आप 60 सेंटीमीटर की दूरी देते हैं, लेकिन जाड़े के लिए थोड़ा दूरी कम हो जाती है क्योंकि पौधे का फैलाव बरसात की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा कम होता है। और उसी तरह ग्लैडुलस की बात हम करते हैं तो इसके लिए भी उसी तरह की ढालवी ज़मीन और बलवाही दोमट मिट्टी वाली ज़मीन चाहिए होती है, इसमें भी दो जुताई के बाद क्यारी में आप इसको लगा सकते हैं और इसकी दूरी लगभग पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि ये जो पौधे ग्लैडुलस के होते हैं ये सीधे बढ़ते हैं, इसमें फैलाव नहीं होता है। और उसी तरह गुलदाउदी है, गुलदाउदी भी गेंदा की तरह ही फैल कर बढ़ता है, इसको भी आप जाड़े के समय में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। और ज़मीन ऑलमोस्ट सभी फूलों का एक ही तरह का होता है, बलवाही दोमट मिट्टी, ढालुआ ज़मीन, और इसमें आप जितना ऑर्गेनिक खाद डाल सकें उतना आप तैयारी के समय ही डालें, और अगर आपके पास रासायनिक खाद नहीं है तो उसका उपयोग ना करें। लेकिन जब पौधे कुछ बड़े हो जाते हैं अर्थात 15 सेंटीमीटर के आसपास हो जाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि हम मिट्टी चढ़ाते हैं, उसकी निकाई गुड़ाई करते हैं, उस समय आप यूरिया या DAP का छिड़काव कर सकते हैं और फिर मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद एक बार और आप 30-35 दिन के अंदर में या 40 दिन के अंदर में फिर एक बार आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं और उसे उस समय भी थोड़ा सा खाद अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। इसी बीच में एक बात कहना चाहूँगी जो खास कर गेंदा और गुलदाउदी के लिए होता है, जिसमें कि आप जब मिट्टी चढ़ाते हैं उसी समय उसकी फुनगी को थोड़ा सा तोड़ दें, उससे क्या होता है पौधे सीधा नहीं बढ़ के फैल कर बढ़ते हैं और जितना झाड़ी नुमा पौधा बनेगा गेंदा का या गुलदाउदी का उसमें कलियों की संख्या भी उतनी ही अधिक होगी और जिससे फूल हमें अधिक से अधिक प्राप्त होंगे और आप उसको मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और गुलाब में देखेंगे गुलाब भी लगाने का लगभग यही समय होता है, गुलाब को भी हम जब लेते हैं तो गुलाब आप देखेंगे 15-20 सेंटीमीटर के 30 सेंटीमीटर के पौधे होते हैं। जब आप गुलाब को ख़रीदते हैं कहीं से मंगाते हैं नर्सरी से तो आप देखिएगा जितना पुराना पौधा है उसको आप कोशिश करिए, एकदम नया तैयार किया हुआ पौधा किसान भाई ना लगे, वो मरने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पुराने पौधे 6 महीने से ज़्यादा 1 साल के पौधे तक को लगाने से गुलाब जल्दी मजबूती के साथ बढ़ता है और मरता कम है। और एक पौधा हमने ग्लैडुलस का कहा तो ग्लैडुलस को कंद से लगाते हैं, इसका प्याज की तरह कंद होता है और प्याज की तरह कंद होता है तो इसमें एक समस्या आती है वो कंद के सड़न की समस्या, और इस समस्या से निजात पाने के लिए चाहे गेंदा हो चाहे गुलदाउदी हो चाहे ग्लैडुलस हो, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसको हमेशा बेविस्टिन या कोई भी कवकनाशी फंगीसाइड से आप ट्रीट कर लिए, साफ जो कि मार्केट में बहुत उपलब्ध है उससे आप 1-1.5 ग्राम पानी में मिला के उसको ट्रीट करके 15 मिनट उसको बाहर छोड़ के आप उसकी रोपाई करें तो ये जो कंद सड़न की समस्या है या जड़ गलन की समस्या है वो दूर हो जाएगी और आपके पौधे बहुत ही अच्छे हेल्दी तैयार होंगे।
6: जी, तो अभी जैसे किसान भाई फूलों की खेती कर लेंगे, फूल तैयार हो जाएगा
9: जी,
6: तो इसके मार्केटिंग कैसे करें?
9: मार्केटिंग ऐसा चीज है, उसको कहिए कि एक कला होती है मार्केटिंग
6: जी।
9: तो इसमें है कि पहले तो जब जिस समय वो मन बनाते हैं, जिस समय अपने आप को तैयार करते हैं कि हमें फूल की खेती करनी है, तो उस समय आसपास के मार्केट में वो पहले घूमें और जगह जगह जो देखते हैं फ्लोरिस्ट दुकानदार बैठता है फूलों को लेके, उसका माला लेके, तो वैसे लोगों से बात करें और पूछें कि आप फूल कहाँ से मंगाते हैं। अगर वो बोलेंगे बाहर से मंगाते हैं या कुछ, तो ये उस समय उनसे अपना डील कर सकते हैं कि मैं भी फूल लगाने वाला हूँ और आप हमसे भी फूल ले सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट सर्वे होता है।
6: तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पूनम होरो जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को जाड़े में लगाए जाने वाले फूलों की प्रमुख व्यावसायिक खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई आपकी बातों को सुनकर लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
9: धन्यवाद।
7: तो भाई बहन मन, एखन हमरे मन जे जाड़ कर में लगाए को वाला फूल है, उकर तकनीक कर बारे में जान ली, कैसे हमरे फूल लगाई सकीला और कातरी उकर देखभाल मन कर सकीला, इकर बारे में इके बतात रहे डॉक्टर पूनम होरो, इनकर से कृष्णीवन पौराणिक भाई गोठियाई रहे।
6: तो आओ अब खेती बाड़ी कर संगे संगे एगो गीत भी सुन लेवा थी, है नहीं? गीत सुनल से भी जैसे मन हरियर हो तो आओ हमरे देवदास विश्वकर्मा और संगी मन कर गावली नागपुरी गीत के सुनना थी।

0: बहुत बढ़िया गीत रहे, मन के एकदम रिझाए दिलक।
1: तो कृष्ण जीवन भाई, चलू आज हमारे नवा उम्र कर नवा फसल में एगो गाय और बकरी पालक किसान कमला उराव।
0: किसान भाई बहन मने, आज हमार स्टूडियो में एगो महिला किसान है कमला उराव। ये गाय पालन भी करे न, बकरी पालन भी करे न, तो आओ आज इनकर से जानकारी करा थी कि ये कैसे कैसे गाय और बकरी के पालन करे न सेकर बारे में। तो कमला बहन, रौर के जोहार करा थी।
2: जोहार।
0: कि रौर रहक वाला कहाँ कर हकी?
2: हम है कि चितरकोटा बड़का टोली के रहगी।
0: तो कमला बहन, रौर का करी ले खन?
2: हम गाय बकरी यह सब के पाली ल और हमारे छुआ पुता कर जीविका चलाई ल।
0: अच्छा अच्छा, तो रौरे गाय पोसा थी, बकरी पोसा थी, तो रौर के ये सब काम करे कर प्रेरणा कहाँ से मिले?
2: हम तो ऐसे भी रही, लेकिन अब आदमी कर देखा इस गाने, हम देखा थी कि सब देखा थी कि अब खेती बाड़ी में भी करी लो तो भी अकेला ने परेशान हो गया। बकरी पाला थी तो बकरी ने भी हमके बुझा थे कि चल भाई खेत बाड़ी में भी करब और बकरी में भी करब। तो खेत बाड़ी तो नहीं हो भी तो बकरी के काटो के बेच ली तो छुआ पुता ले फीस फास देवल हो जाए। कोई के हम बकरियों रख ली और अब उसने छुआ पुता के पढ़ा ली लिखा ली।
0: तो और एखन पढ़ल लिखल का तो नहीं?
2: बगरा तो नहीं पढ़ी, आठे क्लास पढ़ी है।
0: तो एखन रौठना कतना गाय है?
2: गाय तो हमारे जगन एखन 13 गो है।
0: 13 गो है, और छगरी मने?
2: छगरी भी एखन हमारे जगन 25 गो है।
0: अच्छा, तो सबसे पहले बताओ कि रौरे गाय जब पोसी कैसे कैसे ओकर रख रखाव करा थी?
2: हम गाय के तो रखा थी, अब एखन जैसे ओकर शेड बना ली, शेड बनाए कि ओकर शेड में हम बढ़िया सुके प्लस्तर जो कर ढलवा दिली है और उकर में अब बढ़िया से रखा थी। और एखन आधा दुधारू है, आधा गभिन है, तो जैसे है वैसे वैसे रखी ल। उकर बाद दुधारू के अलग रखी ल और गभिन के अलग रखी ल और बछरा बछरू के भी उके अलग रखी ल। सब को अलग अलग रख के फिर हम दूध माने दूही ल, तब फिर गुहार से निकला के धूप दाने तानी कनु कर ले रखेल बना ही ओहे जगन रखी ल।
0: गाय के रौरे शुरू शुरू पोसली, तो शुरू में रौरे कै गो गाय के रखली?
2: राखे तो कमे राख रही पहले, जब हम के ऊपर से लाभ होए लागलक तब हम कहली कि अब इकरे हमर रहे नौकरी हके, अब हम इकरे बढ़ाब और इकरे से हमर जीविका के चलाब, कह के हम ऊपर ने लाइक गेली।
0: अच्छा, दूध बढ़ावे खातिर और का करे ले गाय का?
2: कैल्शियम खियाई ल, दर्रा देवी ल, चोकर देवी ल और जो है घास देवी ल, कुटी देवी ल।
0: तो ये सब कर व्यवस्था कहाँ से होए ल?
2: कुटी तो अपन घरे न होए ल और ये सब कैल्शियम मन के तो कीनी ल, किन एक चीज के तो किन लेवी ल, दर्रा चोकर माने पोरा पतुर तो हमरे जगन है पोरा माने से के कुटी काट के दे देवी ल, कटवाई ल मशीन से ओकर खाए के लिए सब करे ल, ओकर ले डाड़का जैसन बनाल गेले है, ओहे डाड़का ने बोथ देवी ल पानी मशीन से पानी के लेगी ल और साइन देवी ल ओकरे में सब चीज के, चोकर भेलक, दर्रा भेलक, ये सब के।
0: और कौन कौन सा बीमारी होल गाय में?
2: बहुत बीमारी होवे ल ओकर में, खुरहा होवे ल, फोड़ा फुंसी भी होवे ल, कभी चपका भी हो जाए ला।
0: और ये सब कर उपचार का तरी करी ल?
2: अब हमें तो देखी ला आँख में, तब कैसे अभी ऐसा हो लग कई के हमें अनुभव लगाई ला और हमें डॉक्टर के बुला ले भी ला।
0: डॉक्टर के कहाँ से बुला भी ला?
2: आवाज ना डॉक्टर मन फोन नंबर दे रखा है ना।
0: ब्लॉक बटे से कोई सुविधा है कि नहीं?
2: ब्लॉक बटे से भी आवाज ना।
0: ये सब जब बीमारी हो ला तो रवि जैसे बता ले खुरहा हो ला, चपका हो ला, और हम सुन ही कि थाने में दूध फाइट जाए ला,
2: थनाइल हो जाए ला,
0: थनाइल उखे कहे ना नहीं?
2: हाँ, थनाइल
0: उकर और पहला तो,
2: लेकिन मैं दुहिला
0: नहीं, दुहिला
2: नहीं, उकर बच्चा मन पी जाना।
0: और
3: कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनित में जारी।
0: और इकरे संगे किसान माणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक, ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर।
0: तो सुनोया भाई बहन मने अवरावरण कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: मनीष भाई के देव विदा जोहार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम हमारी दुनिया।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ग्रामीण सभा।

सबसे पहले कर्मा पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ हमारे सभी किसान भाई बहनों को और शुभकामनाएं। हमारे किसान भाई, कर्मा पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, भाई बहन के पवित्र प्रेम और कर्मा फेस्टिवल की समृद्ध लोक संस्कृति का एक प्रमुख लोक पर्व है। यह मुख्य रूप से हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं किसान भाई, इसमें कर्म वृक्ष की डाल को पवित्र मानकर कर्म देवता की पूजा की जाती है, जिन्हें शक्ति, युवावस्था और आयु का प्रतीक माना जाता है। भाई बहन का जो स्नेह है, बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं और कथा सुनती हैं। जावा का भी महत्व है, जिसे हम जाई भी कहते हैं किसान भाई। पूजा से कुछ दिन पूर्व बालू या मिट्टी में 7 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं, जिनके हरे अंकुरित पौधे, जिसे जावा भी कहलाता है, इसे अच्छी फसल और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। मांदर

0: ढोल नगाड़े और बांसुरी की थाप पर पूरी रात अखाड़ा में पारंपरिक करम नाच और गीत गूंजते हैं, जो सामाजिक एकजुटता को दर्शाती है। सहिया परंपरा भी है किसान भाई। इस अवसर पर गहरी दोस्ती या रिश्ते निभाने के लिए सहिया बनाने की भी सुंदर परंपरा है, जो पीढ़ियों तक आपसी संबंधों को मजबूत करती है। बड़ा ही कर्मा पर्व की विशेष आस्था है और हम आशा करेंगे कि सभी हमारे किसान भाई बहन इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। फिर से आपको ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं कर्मा पर्व की। तो ये तो बातें हुई कर्मा पर्व की। अब आज हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, लेकिन उससे पहले सुनते हैं यह भेंट वार्ता नींबू वर्गीय पौधों की देखभाल। भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलामू, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
1: ये लाल मोरम वाली जो भी जमीन है, जो हम लोग टाण बोल सकते हैं, और जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, वो जमीन नींबू वर्गीय पौधों की खेती के लिए उपयुक्त है। केवल ध्यान किसान भाइयों को ये देना होगा कि यदि मोरम युक्त जमीन हो और ज़्यादा कंकड़ीला हो, तो वैसी स्थिति में जो हम लोग गड्ढा तैयार करेंगे, तो गड्ढे का साइज जहाँ जनरल में हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट रखते हैं, वहाँ हम लोग 3 फीट या 3 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा लंबाई चौड़ाई और गहराई में रखना फायदेमंद है।
2: अच्छा।
1: और यदि ज़्यादा कंकड़ीली जमीन है, तो उसमें किसान भाई जो मिट्टी के भरने की बात आती है, तो ऊपर वाले मिट्टी को रखेंगे और नीचे वाली जो कंकड़ीली मिट्टी है, तो नीचे जब हम भरेंगे तो तालाब की मिट्टी 20-25 kg और उसी में 20-25 kg गोबर का खाद मिला करके गड्ढा भरने के समय में नीचे डालेंगे, तो सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, मिठास जो आपको यहाँ के फलों में मिलेगी, वो ओरिजिनल फल जहाँ से होता है वही टेस्ट आपको यहाँ का जो उत्पादन होता है, संतरा हो, नींबू हो, ये सब में आपको वही टेस्ट मिलेगा।
2: अच्छा।
1: तो जहाँ तक हम लोग जलवायु की बात करें, तो यहाँ की जलवायु अर्ध शुष्क है, पूरा ड्राई नहीं है, अर्ध शुष्क है। और ये जो पूरा पलामू पर मंडल की हम लोग बात करें, गढ़वा, लातेहार, मेदिनीनगर का पार्ट, चतरा का पार्ट, तो ये सब संतरा उत्पादन के लिए, कागजी नींबू के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। और सबसे बड़ा चीज़ इसमें यह है कि इसमें यदि किसान भाई अपना सालों भर का शेड्यूल बना करके केवल बाग में घूमते रहे, तो उत्पादन हमेशा होता रहेगा।
2: बिल्कुल।
1: सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग नींबू वर्गीय खेती की बात करते हैं, तो दो तरीका से इसको हम लोग फल को बांटते हैं, सब बाजार को पकड़ सकते हैं। और जहाँ तक संतरा की बात करें या मीठा नींबू की बात करें, गागर जो होता है हम लोग उसकी बात करें, तो वो सब कल जो फूल लगा, तो फूल लगने से उनका कार्यकाल होता है 265 दिन के अंदर में, वो बाजार में जाने लायक होते हैं। तो 265 दिन की हम लोग बात करें, तो 20-30 दिन यहाँ पहले तैयार हो जाते हैं बाजार में भेजने के लिए। तो हम लोग इसको यदि मेंटेन करें, तो बाजार को हमेशा पकड़ सकते हैं, तो बहुत फायदा है इसमें।
2: सिंचाई व्यवस्था कैसी होनी चाहिए?
1: देखिए, सिंचाई जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप मार्च के बाद से ही देखें कि पानी की कमी शुरू हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल, मई और आधा जून वो पानी का कमी हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पे है, हम लोग शहरी स्थिति को देखते हैं, लेकिन गाँव में या जहाँ पे किसान भाई खेती करते हैं, तो वो पलवार का प्रयोग करें, तो पानी उनको कम खेत में देना पड़ेगा। पलवार मल्चिंग, जैसे प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, सूखा घास वगैरह है, उसको जो है जड़ से कम 2-2.5 बीता छोड़ करके चारों बगल में 15 सेंटीमीटर की मोटाई में डालेंगे, तो पानी की कम जरूरत पड़ेगी, और पानी भी आपको 7-8 दिन के अंतर पे देना पड़ेगा।
2: अच्छा।
1: तो इस तरीके से पानी की डिमांड को हम कम कर सकते हैं। दूसरा चीज है, ड्रिप इरिगेशन की बात हम करते हैं, तो ड्रिप इरिगेशन में किसान भाई को यह ध्यान देना है कि ड्रिप इरिगेशन में वो सिस्टम बना रहता है कि 1 घंटा में 4

0: उर्वरक की बात अगर आती है तो क्या कर सकते हैं हमारे ग्राउंड में?
1: उर्वरक इसके लिए चूंकि पांच बार इस हम लोग देख रहे हैं कि पति का फ्लस आता है, तो इसके लिए उर्वरक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। उर्वरक का सीधा संबंध है प्रोडक्शन से।
0: अच्छा,
1: तो जब हम लोग फसल लगाते हैं तो फसल लगाने के समय में हम लोग 15 से 25 केजी के बीच में कंपोस्ट देने का रिकमेंडेशन करते हैं, और यहाँ पे झारखंड के केस में 300 से 500 ग्राम डीएपी वो प्रयोग कर सकते हैं
0: प्रति हेक्टेयर,
1: प्रति गड्ढा।
0: अच्छा,
1: और 50 से 60 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस गड्ढा के समय में लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जब जैसे हमारा फसल होते जा रहा है, तो हम इसको जो हमारे यहाँ सिचुएशन है ऐसे हम लोग चाहें तो 3-3 महीना के अंतराल पे दे सकते हैं, लेकिन चूंकि किसान भाइयों के पास चूंकि पानी या ये सब का दिक्कत होता है, तो किसान भाई क्या कर सकते हैं कि जून जुलाई में एक बार खाद देंगे और दूसरा खाद जो है सितंबर अक्टूबर में देंगे।
0: अच्छा,
1: तो सितंबर अक्टूबर में देंगे, और एक ये करना उनको है कि दोनों समय में गोबर खाद मिलाएंगे।
0: अच्छा,
1: और गोबर खाद देते समय में जरूर क्लोरोपाइरीफॉस का प्रयोग करेंगे, 60-70 ग्राम प्रत्येक गड्ढा में क्लोरोपाइरीफॉस का यूज करेंगे। और जहां तक खाद की बात है, तो डीएपी शुरुआत में किसान भाई 300 एक पहला साल 300 डीएपी रखेंगे, 500 यूरिया रखेंगे, और 200 से 300 के बीच में पोटास रखेंगे। इसकी मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, 5-6 साल बाद स्थिर कर लेंगे। स्थिर कर लेंगे, उसमें उनको क्या करना है कि डीएपी की मात्रा को 1 केजी तक पहले जब दे रहे हैं तो 800 ग्राम से 1 केजी के बीच में डीएपी देंगे। और शुरुआत में किसी भी नींबू वर्गी या किसी भी फल के मैं बात करूं, तो किसान भाइयों को ये सलाह है कि जो पहला साल वो लगा रहे हैं, चूंकि वो गुटी वाला रहता है तो उसमें कंडीशन है कि वो आएगा ही फूल, तो किसान भाई ऐसी स्थिति में फूल को 3 साल तक किसी कीमत पे नहीं लेना है।
0: अच्छा,
1: 3 साल तक किसी कीमत पे नहीं लेंगे
0: जी।
1: और उनको ये करना है कि शुरुआत में किसान भाई पौधा सीधी तरीका से जाए, उसके लिए वो एक डंडा 3-4 फीट का रखेंगे, उसी में पौधे को बांध देंगे। लेकिन डंडा को जमीन में गाड़ने से पहले 2 ml क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिला करके उसको ट्रीट कर लेंगे।
0: अच्छा,
1: और उसको नीचे रखेंगे, उससे दीमक का प्रकोप कम होगा। और शुरुआत के जो 50 से 60 सेंटीमीटर का है वहां तक कली निकलने नहीं देंगे।
0: अच्छा,
1: और उसको सीधे बढ़ने देंगे।
0: अच्छा,
1: छिड़काव करना चाहिए।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब पत्ती छोटी होने लगे। दूसरा चीज होता है कि कहीं कहीं जो है उनको गोंद जैसा नजर आने लगे, वो फंगल अटैक है। उस फंगल अटैक को रोकने के लिए किसान भाई अपने खेत में बेविस्टीन, मैनको जेब या ब्लू कॉपर का छिड़काव करना चाहिए। तल जो हम लोग 1 लीटर वाला पानी का बोतल पीते हैं, उसी का जो गर्दन है, गर्दन से नीचे 2 से 3 सेंटीमीटर के पास में काट करके 3 तरफ से कर लेंगे, और उसको ऊपर साइड वाला में नहीं काटेंगे, और एक तरीका से छेद कर लेंगे, एक लियोर बनाएंगे। कभी इसको हम लोग रखें कि वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाएं, या हो सकता है कि मैं केवीके से आ करके किसान भाई सलाह ले सकते हैं कि लियोर मिथाइल यूजेनॉल का प्रयोग करके वो कर सकते हैं, तो उससे फल मक्खी का हम लोग कंट्रोल करते हैं।
0: तो उसको लगाएंगे कहाँ पर?
1: पेड़ में लगा देना है उनको।
0: अच्छा,
1: 8-10
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, नींबू वर्गीय पौधों की देखभाल। भेंटवार्ता करते दिलीप कुमार पांडे, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारा साथी भाई संतोष कुमार। अब हम लोग जानेंगे प्राकृतिक खेती के 5 मुख्य स्तंभ के बारे में। सबसे पहला है बीजामृत, जो देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार होने वाला अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का घोल, जिससे बीजों को संस्कारित किया जाता है। जीवामृत, अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं का उत्तम जामुन, जिसे देसी गाय के गोबर और मूत्र से तैयार किया जाता है। आच्छादन, फसलों के बचे हुए अवशेषों को मिट्टी के ऊपरी परत पर बिछाकर पानी को वाष्पित होने से रोकता है और मिट्टी में ह्यूमस का निर्माण करता है। वाप्सा, मिट्टी के अंदर एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार करना जिसमें पानी और हवा के कणों की मात्रा एक समान रखी जाती है। और 5वां है सहफसली, मुख्य फसल की लागत का मूल्य अंतर्वर्ती सह फसल के उत्पादन से निकाल लेना और मुख्य फसल शुद्ध मुनाफे के रूप में लेना। तो ये तो बात हुई

प्राकृतिक खेती के मुख्य पांच स्तंभों के बारे में। चूंकि घड़ी इशारा कर रही है, समय समाप्त होने को है, तो चलते चलते मौसम का हाल आपको बता दें। आज स्थानीय शहर डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 89% जबकि शाम की आर्द्रता 72% दर्ज की गई। वर्षापात तो सुन लें। तो मौसम संबंधी इसी सूचना के साथ ही हमारा आज का ग्रामीण सभा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। इजाज़त दें, नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहनें और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं।
2: बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना है हमें, उस पे लाड भी बरसाना है।
4: हाँ, इसलिए पहले खुद तरक्की करेंगे, चार पैसे जुड़ेंगे, फिर करेंगे बच्चा,
3: जिम्मेदारी निभाएंगे, यही है हमारा प्लान।
5: भविष्य की खुशियाँ प्लान कीजिए, थोड़ा सोच के बच्चा पैदा कीजिए तो बनेगा खुशहाल परिवार। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए।
0: परिवार नियोजन के तरीकों के उपयोग से पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से राय जरूर लें।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
7: का कितना मानसिक जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
8: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
7: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
9: खेत पर काम कर रहे हो?
3: हाँ भाई, पर तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो?
9: पिछले हफ्ते ही तो तुमने एनएसबी कराई है।
3: अरे इससे कोई कमजोरी नहीं होती, न चीरा न टाका, मात्र 10 मिनट का काम, और सबसे बड़ी बात कि किसी भी कार्य दिवस की हानि नहीं होती है। अरे अरे अरे कहाँ चल दिए?
10: एनएसबी कराने।
3: पुरुष नसबंदी यानी एनएसबी की सुविधा हर सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ICCR के तहत भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों से किया संवाद, कहा भगवान बिरसा मुंडा एवं भारत की सुखद स्मृतियां साथ ले जाएं। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया में दावा आपत्ति की अवधि बढ़ाने की रखी मांग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात। राज्य में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है करम पर्व। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं। झारखंड में मॉनसून फिर सक्रिय, सिमडेगा, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। और 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स टूर्नामेंट के पहले दिन झारखंड के एथलीटों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते 11 पदक। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकभवन रांची में ICCR के तहत भारत में पढ़ रहे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इराक समेत विभिन्न देशों के छात्र शोधार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि तक्षशिला, नालंदा की तरह भारत आज भी ज्ञान की भूमि है और विदेशी छात्रों का यहां आना शैक्षणिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। राज्यपाल ने छात्रों से झारखंड की जनजातीय विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और बिरसा मुंडा की धरती को अनुभव करने तथा भारत की सुखद स्मृतियां अपने देश ले जाने की अपील की। IIT धनबाद में आज शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय अध्यक्ष पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिंडे ने छात्रों और संस्थान के सदस्यों से को संबोधित किया। श्री भिंडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश केवल किसी व्यक्ति को प्रेरित करने वाला नहीं था, बल्कि यह भारत के पुनरुत्थान का भी आह्वान था। उन्होंने युवाओं के लिए एक संदेश, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको विषय पर विचार व्यक्त किए। SIR से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला और SIR प्रक्रिया में आपत्ति और दावा पेश करने के लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशन नाथ सहदेव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि प्रत्येक बूथ पर करीब 200 से अधिक मतदाताओं को नोटिस किया गया है, जिससे कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।
1: खास तरफ से अर्बन एरिया में कुछ संदल परणा में कुछ AC में ज्यादा संख्या है आपका, कहां पर भी खास तरफ से वो ट्राइबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां सुनवाई समय पर पूरा हो जाएगी। हम लोग झारखंड में भी कुछ कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में साइज भी बड़ा है, हम लोग का 2 लाख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 4 लाख असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से साइज भी बड़ा है, उसी हिसाब से कुछ यहाँ पर आपको टाइम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग को समय लेके।
0: भाजपा के वरिया कार्यकर्ताओं की बैठक गिरिडीह पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह की उपस्थिति में संगठन की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। गिरिडीह उपचुनाव मुद्दे पर पत्रकारों के सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि प्रत्याशी का निर्णय पार्टी हाईकमान करेगा, भाजपा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है।
2: ये हमारी पार्टी चुनाव के लिए ही मात्र सक्रिय रहती है, ऐसा नहीं, हम समाज के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश के और समाज का काम तो 300-400 दिन लगा ही रहता है। अब ये तो केंद्र का मामला है, हमारा विषय ये नहीं है, विषय है वो केंद्र ही हमारी तय करते हैं, हमारे चुनाव तो मुझे तय करते हैं।
0: राजधानी रांची सहित राज्य भर में करम

0: पूजा पारंपरिक तरीके से श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अखाड़ों में शाम को करमडाली की स्थापना के साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रांची सहित राज्य के सभी जिलों में करम पूजा अखाड़ों को आकर्षक ढंग से सजाया सवारा गया है। प्रकृति पूजा करम का पर्व समाज में भाई और बहन के बीच अटूट प्रेम संबंध का भी संदेश देता है। बहनें भाइयों के लिए व्रत करती हैं और पाहन से कर्म और धर्मा की कहानी सुन व्रत को सफल बनाती हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे स्थानीय हस्तशिल्पकारों और पारंपरिक कलाकारों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे वोकल फॉर लोकल अभियान पर।
1: कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो।
0: दुमका जिले में वोकल फॉर लोकल ने स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्पों और पारंपरिक कलाओं को बड़ा बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही नई पहचान भी दे रहा है। जिले के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के हस्तशिल्प से जुड़े कलाकारों को इससे आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी बड़ा संबल मिला है।
2: पहले तो हम लोग मेला वाला जाते थे तो इतना अच्छा हम लोग का सामान वामान बिक्री होता था। जब से हम लोग का मोदी सरकार ने वोकल फॉर लोकल का ये किया है उससे हम लोग का और ज्यादा लाभ मिलता है और मेला में हम लोग जब जाते हैं तो हम लोग का और अच्छा बिक्री होता है।
3: मैं वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, आज इसे GI टैग मिला है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का बड़ा योगदान है। आज इसकी वजह से हमारी पेंटिंग को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और बड़ा बाजार मिला है।
0: रामगढ़ के भुरकुंडा में आज CCL की ओर से 40वीं जोनल माइंस रेस्क्यू प्रतियोगिता 2026 की शुरुआत हुई। भुरकुंडा कोलियरी के बांसगढ़ा भूमिगत खदान में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में CCL के विभिन्न क्षेत्रों के साथ बाहरी कंपनी के टीमों समेत कुल 13 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और अब मौसम का हाल। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय दबाव का सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। सिमडेगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और लोहरदगा में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने स्थिति को देखते हुए अगले 4 दिनों तक लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। 37वीं पूर्वी क्षेत्रीय जूनियर एथलेटिक्स के पहले दिन झारखंड के एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। पटना में 22 से 24 सितंबर तक आयोजित हो रहे टूर्नामेंट में ममता मेरी मुर्मू ने बालिका 18 वर्ष 100 मीटर में, नैना सिंह ने 80 मीटर हर्डल्स में और सविता मुर्मू ने अंडर 20 जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा समेत 13 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ICCR के तहत भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों से किया संवाद। कहा, भगवान बिरसा मुंडा एवं भारत की सुखद स्मृतियां साथ में ले जाएं। कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया में दावा आपत्ति की अवधि बढ़ाने की रखी मांग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की मुलाकात।

राज्य भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है प्रकृति पर्व करम। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने दी शुभकामनाएं। झारखंड में मॉनसून फिर सक्रिय, सिमडेगा, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान। और 37वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स टूर्नामेंट के पहले दिन झारखंड के एथलीटों ने किया शानदार प्रदर्शन, जीते 11 पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अरे कम उम्र की लड़की का शरीर माँ बनने के लिए तैयार नहीं होता।
1: 20 साल से अधिक उम्र में बच्चा होने से माँ और शिशु की मृत्यु का खतरा कम रहता है।
0: माँ में बच्चे के पालन पोषण की समझ रहती है।
1: 18 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद गर्भ धारण करने से माँ और बच्चे के लिए खतरा बढ़ जाता है।
0: गर्भ का निश्चित होते ही आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपना नाम गर्भवती माताओं के रजिस्टर में लिखाएं।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: मैंने कहा ना, मैं अपनी बिटिया की शादी अभी नहीं करूंगी। अरे उसकी उम्र अभी कच्ची है।
0: जी हाँ, कानून भी यही कहता है। शादी के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
1: शादी के लिए सही शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक विकास जरूरी है।
0: सही उम्र में शादी होने से लड़की अपना वैवाहिक जीवन बेहतर बना सकती है।
1: याद रखें, लड़की की शादी की सही उम्र 18
0: और लड़के की 21 वर्ष है।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे देवघर संवाददाता।
1: देवघर में गांव की सरकार को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर देवघर जिला परिषद कई योजनाओं पर काम कर रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी ने बताया कि पेयजल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास से जुड़ी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। इसको लेकर करीब 8 करोड़ के बजट पास किए गए हैं।
2: केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया था कि 16वीं तारीख की बैठक करके हम लोगों को योजना 5 सालों के लिए देना है। उसी पर चर्चाएं हुई है जिसमें टाइड एंड टाइड दोनों तरह की योजनाएं हैं। उस योजनाओं को हम लोगों ने लेने का निर्णय लिया है जिसमें कुल 8,16,35,780 रुपए ये योजनाएं पारित की गई है। और जिसमें जैसे है कि जैसे जल से संबंधित हो गया, ऐसे जनरल योजना के तहत जो बोरिंग हुई है धस गया है उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, अलग से बोरिंग कर सकते हैं।
1: कहते हैं ना कि जल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने एक बड़ी पहल शुरू की है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक हर घर शुद्ध पेयजल अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत देवघर से की गई है और यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगी। इसकी शुरुआत देवघर एम से की गई है। करीब 8 लाख लोगों तक शुद्ध जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।
3: भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 25 साल सेवा, समर्पण, सुशासन, संस्कृति का जो माननीय मोदी जी ने पूरा किया है उसके बारे में हम घर घर तक जाएंगे, बताएंगे कि मोदी जी ने क्या किया है। गोड्डा लोकसभा में तो केवल विकास ही विकास है, तो एक तो हमने लक्ष्य तय किया है कि 8 लाख लोगों तक हम शुद्ध पेयजल आरओ वाटर जो है देंगे और उसकी शुरुआत एम से हो गई है। अब बाबा मंदिर में होगा, बासुकीनाथ मंदिर में होगा, अस्पताल में होगा, कुछ बड़े बड़े जो गांव हैं वहां होगा, प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जो है हम करने की उसको कोशिश करेंगे।
1: देवघर को अपराध मुक्त बनाने के लेकर पुलिस लगातार सख्त है। नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि साइबर क्राइम हो या रंगदारी या नशा का कारोबार, हर अपराध पर पुलिस की पैनी नजर है और अपराधियों पर कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर लगातार हर स्तर पर समीक्षा हो रही है।
4: क्राइम कंट्रोल में से साथ ही साथ नशा जो है देवघर जिला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, तो नशा के विरुद्ध जो है कार्रवाई हमें और

0: भी तेज करने की जरूरत है, साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। तो इस संबंध में भी दिशा निर्देश दिए जाए, खास करके जो हमारा टारगेट है कि तीन साल से ज्यादा के जो केसेस हैं उसमें हमारा टारगेट रहेगा कि अगले चार महीने में केसेस को 50% पे हम लोग लेके आए, और जो पुराने केसेस हैं वो अब हमारी प्राथमिकता है क्योंकि जो महत्वपूर्ण त्यौहार है शामिल।
1: त्योहारों का मौसम फिर शुरू हो गया है। बाबा नगरी देवघर में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। आस्था और विकास के साथ देवघर एक नया अध्याय की ओर बढ़ रहा है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
2: अभी आप सुन रहे थे देवघर जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आज के एक रंग कार्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं सदाबहार कलाकार गायक अभिनेता किशोर कुमार की फिल्मों के गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, और हम पेश कर रहे थे किशोर कुमार की आवाज में फिल्मी नगमे। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं खुला आकाश कार्यक्रम। खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए स्वरचित गजलें मोहम्मद शमीम अंसारी द्वारा।
1: सामीन कराम, आप गजल समाप्त कर रहे हैं। हुब्बुल वतनी के ताल्लुक से एक गजल है, पेश खिदमत है। वाद

कुछ है चश्मे अदल में बाकी, अरे रोशनी अगर कुछ है हिस्ट्री मेरी देखो, रोशन है चलन मेरा हिस्ट्री मेरी देखो, रोशन है चलन मेरा, मैं शमीम मोमिन हूँ, अमन का

है ममा जो अपने बच्चे का नहीं बचपन बनाती है। मकता समाप्त किया जाए। हसद से बोगज कीना और नफरत से परे रहना। हसद बोगज हसद हसद से

चलने लगा तो चाल तक चलने लगा तो चाल तकबूर की चल चलने लगा तो चाल तकबूर की चल गया। फिर देखते ही देखते मौसम बदल गया। घर में तो सिर्फ मेरे लगाया था आग वो, लेकिन उसी की आग में घर उसका जल गया। बुझने से पहले शम्मा भड़कती ज़रूर है, वक्ते जवाल ऐसा न समझो कि टल गया, वक्ते जवाल ऐसा न समझो कि टल गया। दुनिया प्यारी है ना दुनिया का चमन प्यारा है, दुनिया प्यारी है ना दुनिया का चमन प्यारा है, जान दे दूंगा वतन पर के वतन प्यारा है, जान दे दूंगा वतन पर के वतन प्यारा है। जब किसी ने कहीं ललकारा मेरी गैरत को, जब किसी ने कहीं ललकारा मेरी गैरत को, ऐ वतन तेरे लिए सर पे कफन प्यारा है, ऐ वतन तेरे लिए सर पे कफन प्यारा है, ऐ वतन तेरे लिए सर पे कफन प्यारा है। हिंदू हो या के मुसलमान ईसाई सिख हो, हिंदू हो या के मुसलमान ईसाई सिख हो, माँ को बेटे की मोहब्बत का मतन प्यारा है। दुनिया प्यारी है ना दुनिया का चमन प्यारा है, जान दे दूंगा वतन पर के वतन प्यारा है। होठों पे ये मुस्कान की सौगात नहीं आती, सुख चैन की कोई भी हंसी रात नहीं आती, सामन ये कहाँ और कहाँ इसकी बहारें, इस मुल्क में रहमत की जो बरसात नहीं आती। न मुकद्दर बना लिया जिसने जमी पे अपना मुकद्दर बना लिया।

नफरत का हर एक दिल से निकाला जाए, प्या कांटा नफरत का हर एक दिल से निकाला जाए, प्यार के सांचे में माहौल को ढाला जाए। शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार

पीछे बिल्ली चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली, चूहा आगे।

महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार जहां चार यार जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार जहां चार यार

हंस के बोली, जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़।

देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देशगान।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं। उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामीदास और मिख्या

0: श्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई।

0: और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
2: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जेम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
3: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जेम पोर्टल जेम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जेम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
4: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
2: जेम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जेम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबिना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award, Yami Gautam, Kartik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Centre inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
6: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़े लोग उपस्थित हैं। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
5: Speaking at the event, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced that the National Film Awards will be taken to major tourist destinations across the country. He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards.
7: Let us take the National Film Awards to very important tourist destinations of our country. Aaj hum Ekta Nagar, jahan Sardar Sahab ki world's tallest statue hai, उस जगह आज हम इकट्ठे हुए हैं। अब अगली बार वील गो टू वन मोर इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन। आई एम गिविंग अ कॉल टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन योर स्टेट, टेल अस व्हाट इम्प्रूवमेंट्स यू विल मेक इन इट। योर डेस्टिनेशन विल बी सेलेक्टेड एंड वील हैव द नेक्स्ट राउंड ऑफ NFA इन द सेलेक्टेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
5: At the ceremony, veteran Kannada actor Anand Naag received the prestigious Dada Saab Phalke Award. Mammootty, Karthik Aryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. We have a report.
8: In a historic ceremony held against the grand backdrop of Statue of Unity in Ekta Nagar, Gujarat, President Draupadi Murmu honored a total of 92 awardees from the film industry across the country. Legendary actor Anand Naag was honored with the prestigious Dada Saab Phalke Award for the 2024 for his outstanding contribution to Indian cinema spanning over 5 decades. In the feature film section, the political thriller film Article 370 bagged the Golden Lotus Award for the Best Feature Film. Director Randeep Hooda received the Best Debut Director Award for Swatantra Veer Savarkar, while Naag Ashwin Singareddy's science fiction film Kalki 2898ED won the award for the Best Popular Film providing wholesome entertainment. Rajkumar Periyasamy received the Best Direction Trophy for the Tamil movie Amaran. The Telugu film 35 Chinna Katha Kadu took home the Best Children's Film honor. In the acting categories, the Best Actor in a Leading Role Award was jointly presented to veteran actor Mammootty for Brahmyugam and Karthik Aryan for Chandu Champion. Yami Gautam won the Best Actress in a Leading Role Award for her performance in Article 370. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
5: Speaking at the ceremony, legendary actor Anand Naag thanked everyone who supported him throughout his acting journey.
9: I am very lucky to got this highest award in films, Dada Saheb Phalke Award, at the hands of Srimati Murmu ji. And I am very grateful to all the people who have been with me throughout these 55 years of being an actor. This award does not belong to me alone. It also belongs to every producer, director, dialogue writers, songwriters who have worked with me tirelessly. The award belongs to millions of people who have opened their hearts and minds to my characters over the last 5.5 decades.
5: This is Akashwani giving you the news.
10: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Addressing media in New Delhi this evening, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, such instances of aggression against a sovereign neighbor go against regional peace and security.
11: We strongly condemned the attacks from Pakistan, the airstrikes which were launched on Afghanistan in their Kunar and Paktika province. In this airstrikes, several civilians have been killed. We deeply offer our our condolences on the precious lives lost. Such instances of aggression against a sovereign neighbor goes against the regional peace and security. We also reaffirm our support for Afghanistan, for their independence, for the sovereignty, for their territorial integrity.
5: Home Minister Amit Shah has called for a strong and decisive action against narcotics, saying drug trade pose a serious threat to the country and the world.

0: 90 से ज्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1,54,00,000 मुसाफिरों को आरामदेह फजाई सफर की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस तकरीब में एरोडोम डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया और उड़ान रूट की बोली के अगले मरहले के लिए स्कीम दस्तावेज जारी किए गए। गेंडे के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक सींग वाले गेंडे नहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ्फुज़ में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिले सताइश हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले दो दिन के दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज बारिश की पेशगोई की गई है। IMD ने कहा है कि कौमी राजधानी खत्ते के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में मेजबान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मनुष्यात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मनुष्यात की गैर कानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय ख्वातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक। दिस इज

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से। दोस्तों आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक खलनायक की।
1: भारत ने जो थोड़ा बहुत जमा किया था वो मेरी पढ़ाई पे खर्च कर।
2: जय जय राम जी की। लखपति जरा खाता देखकर बताना कि भारत ने कितना रुपया जमा कराया था और सूद के साथ वापस कितना लिया और कब लिया।
3: प्रेम चोपड़ा, सिनेमा के पर्दे पर एक नहायत शरीफ है, मेरा मतलब है एक नहायत आवारा बदनाम शख्स, पर जिसे आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है। आप भी सोच रहे होंगे कि आप फिल्मों में मेरे जुल्म देखकर मुझे गालियां देते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसे प्यार बता रहा हूं। पर इन गालियों में जो प्यार छुपा है, इस नफरत के पीछे जो मेरी तारीफ है, वही तो मेरी जिंदगी का अनमोल सरमाया है।

0: मैं हिसाब की किताबें देखना चाहता हूँ।
1: पुरन, हिसाब की किताबें?
0: हाँ।
1: तूने ये क्यों पूछा है?
0: इसलिए कि मैं भी इस कमाई का हिस्सेदार हूँ।
1: हिस्सेदार?
0: क्यों, क्या मेरा इस पर कोई हक नहीं? क्या मैं ये सब कुछ नहीं पूछ सकता?
1: नहीं नहीं पुरन, सब कुछ दे रहे हैं, बोल तुझे क्या चाहिए?
0: 25,000।
1: 25,000? इतने रुपए?
0: मुझे रुपया चाहिए।
1: मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे पास?
0: तुम मुझे यकीन दिला नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिला सकता हूं।
1: कैसा सबूत?
0: यही कि तुम्हारे पास 5 रुपया।
1: पूरन,
0: और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो चलो मेरे साथ।
1: कहां?
0: हनी राम के घर।
1: हनी राम? हाँ। आओ
0: आओ मेरे साथ।
2: अगर आप मुझे विलन के रोल में देखकर मुझे नफरत ना करें तो मैं कामयाब विलन नहीं बन सकता।

फिल्म बॉबी में मैंने एक छोटा सा रोल किया था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। इस डायलॉग की वजह से एक बार मैंने एक बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाया। मैं डलहौजी से दिल्ली आ रहा था, रेल का सफर था, न जाने कैसे लोगों को पता लग गया कि एक स्टेशन पर जैसे गाड़ी रुकी तो हमारे डब्बे के आगे हजारों लोग जमा हो गए। गाड़ी चलती तो लोग जंजीर खींच कर रोक लेते, जब कोई दूसरा रास्ता ना देखा तो मैं डरते डरते दरवाजा खोलकर सामने आया। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुनाइए जो आपने उस पिक्चर में कहा था। खैर साहब, मैंने बड़ी मामूली तरीके से वो डायलॉग बोला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसा आपने फिल्म में बोला वैसे ही बोल के सुनाइएगा, तब हम गाड़ी को आगे चलने देंगे। मुझे वैसे ही डायलॉग बोलना पड़ा जैसा मैं पहले कहा कि प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई और हंसते हंसते हमारी गाड़ी को आगे बढ़ने दिया।

दोस्तों शिमला में बीता है प्रेम चोपड़ा का बचपन। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया और आ गए बम्बई। उनके पिताजी उन्हें फिल्मों में भेजने के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि प्रेम डॉक्टर या इंजीनियर बने। पिताजी की मर्जी के खिलाफ प्रेम चोपड़ा चले आए अभिनय की दुनिया में। बतौर हीरो प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म थी पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह, जो बड़ी मशहूर हुई थी। अपने शुरुआती दिनों में प्रेम चोपड़ा अंग्रेजी के एक जाने माने अखबार के सर्कुलेशन विभाग में नौकरी किया करते थे। वक्त निकालकर संघर्ष करते और अपनी तस्वीरें लेकर चल पड़ते निर्देशकों के दफ्तरों में काम मांगने के लिए।

0: उधार ले लो मस्ती।
1: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से पहले एक बार मैं किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग पर गया हुआ था। तीन चार बार जब वापस लौटा तो घर वालों ने बताया देवानंद साहब का कई बार फोन आ चुका है, वो बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। तो मैंने फोन से देव साहब को अपने वापस आने की इत्तला दी। उन्होंने कहा फौरन मिलो प्रेम, तुम्हारे लिए

जबरदस्त रोल है। कहानी सुनने के लिए 3 घंटे निकाल कर मेरे पास आना। मैं देव साहब के पास पहुंचा, मुझे देखते ही कहने लगे, तुम खटमंडू के राजा हो, खटमंडू तुम्हारा है, खटमंडू तुम ले लो। जो कहानी देव साहब 3 घंटे में सुनाने वाले थे, वो 3 लाइनों और 3 मिनट से भी कम वक्त में सुनाकर मुझसे माफी मांगकर चल दिए। मैं उनकी तरफ देखता ही रह गया।

जब प्रेम चोपड़ा ने खलनायकी शुरू की तो दोस्तों ने बहुत समझाया पर उन्होंने एक न सुनी। उनके दोस्त उन्हें हीरो बनने की सलाह देते थे और प्रेम चोपड़ा थे कि किस्मत की लहर में खलनायकी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।

0: मनोज कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को भाई साहब कहते हैं और जब भी मिलते हैं एक दूसरे के पांव छूने को झुकते हैं। हमें उम्र के मामले पर बहुत झगड़ा चलता रहता है। मैं कहता हूं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो, वो जिद करते हैं नहीं मैं छोटा हूं तुम बड़े हो। एक बार हम दोनों किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बीकानेर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, गांव के लोगों ने हमें घेर लिया, हर तरफ से आवाज आने लगी मनोज कुमार मनोज कुमार मनोज कुमार। जब मैं गाड़ी से निकला तो मनोज ने पूछा इन्हें पहचानते हो? आवाज आई जी हाँ ये प्रेम चोपड़ा ही तो है, उपकार वाले, आपके बड़े भाई साहब। सुनते ही मनोज कुमार खूब हंसा और बोला देखो प्रेम, मैंने पूरी 3 घंटे की फिल्म में तुम्हें अपना छोटा भाई कहा मगर लोग तुम्हें मेरा बड़ा भाई कह रहे हैं, अब तो मान लो तुम मेरे बड़े भाई हो छोटे नहीं।
1: क्या? चले जाओ, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ।
2: और मैं कहता हूँ छोड़ दो प्रीति को।
1: जाते हो कि नहीं?
2: तुम चिंता मत करो बेटी, देखता हूँ पोता अपने दादा पर हाथ कैसे उठाता है। और
3: प्रेम चोपड़ा की संवाद अदायगी उनकी सबसे बड़ी खासियत है। चेहरे पे ऐसी चिकनी चुपड़ी नरमी होती है कि पूछिए मत, लेकिन नरम छुरी से जिगर को लहूलुहान कर देने वाली खलनायकी है प्रेम चोपड़ा की।
1: ये दुनिया को पच्छम की देन है, इससे इंसान जिंदगी की हारी हुई बाजी जीत जाता है। इधर आओ प्रीति, नहीं तो तुम्हारे भारत और भारत के गुरु दोनों को खत्म कर दूंगा।
4: अगर तुम मुझे पाने के लिए इन्हें मार सकते हो तो इन्हें बचाने के लिए मैं खुद मर सकती हूँ। चलाओ गोली।
2: तो मर जा बेटी।
4: नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं होगा, चलाओ गोली।
1: हट जाओ, तुम बार बार मेरे रास्ते में आते हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
0: फिल्म कीमत के सेट पर एक बार बड़ा मजा आया। इस फिल्म में एक बहुत बड़े गैंग का मैं बॉस बना, बड़ा खौफनाक गेटअप था मेरा। मेरे साथ हर सीन में चंद खौफनाक कुत्ते रहते थे। एक सीन था, मैं रोप से बैठा हुआ हूँ, मेरे चारों तरफ से मेरे चमचे पालतू कुत्तों को लिए बैठे हैं, सामने हीरो यानी धर्मेंद्र को

0: फिल्मी दुनिया में प्रेम चोपड़ा लंबे समय से मौजूद हैं और तरह तरह की खलनायकी की भूमिकाएं उन्होंने की हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम प्रेम चोपड़ा को बतौर चरित्र अभिनेता देख रहे हैं कुछ फिल्मों में। इन्हीं में से एक फिल्म थी उनके दोस्त राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया।
1: प्रेम चोपड़ा को फिल्म दो अनजाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। उनकी सिल्वर जुबली फिल्मों में शामिल हैं दो जासूस, अर्जुन, स्वर्ग से सुंदर, दूल्हे राजा, फूल बने अंगारे, दाग, हुकूमत, पूरब और पश्चिम, उपकार, राजा जानी, आमने सामने, महबूबा, काला पत्थर वगैरह। फिल्म त्रिशूल का उनका किरदार तो आपको याद ही होगा। अमिताभ बच्चन के साथ प्रेम चोपड़ा फिल्म देश प्रेमी के इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे।

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता प्रेम चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। अब से कुछ ही पलों में कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते

0: खबरों से जुड़े रहिए एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्ध वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में लोग 100 दिनों से अधिक समय से इंटरनेट बंद होने की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे बैंकिंग, कारोबार, पढ़ाई और सूचना तक पहुंच प्रभावित हुई है। ग्रीस की वेबसाइट जियोपॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 जून से POJK में मोबाइल डेटा और ब्रांडेड सेवाएं बंद हैं। यह स्थिति जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JKJAAC के नेतृत्व में शुरू हुई विरोध प्रदर्शनों के बाद बनी। मानवाधिकार संगठनों ने संचार सेवाएं बहाल करने, स्वतंत्र पत्रकारों को वहां जाने की अनुमति देने और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की जांच की मांग की है। उन्होंने राजनीतिक मांगों का समाधान दबाव के बजाय बातचीत के जरिए करने की भी अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने आज महासभा में विश्व नेताओं के अपने अंतिम संबोधन में परस्पर निर्भरता पर आधारित विश्व की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र के नेता लंबे समय से नेताओं से आग्रह करते रहे हैं कि वे बढ़ती वैश्विक चुनौतियों और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद सहयोग और साझा निर्णय लेने की प्रक्रिया को न छोड़ें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ तटीय आंध्र प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर्ड बाय अपराजिता नायर। President Draupadi Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony held at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared national aspirations."
3: यहाँ अनेक भाषाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में बनी फिल्मों से जुड़ी लोग उपस्थित थे। सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती। भारतीय फिल्मों में हम भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। उत्कृष्ट फिल्मों को सम्मानित करने का ये समारोह स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में वॉल ऑफ यूनिटी के समीप आयोजित हो रहा है। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता के इस महोत्सव को स्वाधीन भारत की एकता के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं आशीर्वाद दे रहे हैं।
2: स्पीकिंग एट द इवेंट, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस्ड दैट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स विल बी टेकन टू मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अक्रॉस द कंट्री। He invited states and union territories to identify key destinations to host future editions of the awards. At the ceremony, veteran Kannada actor Anant Nag received the prestigious Dada Sahib Phalke Award. Mammootty, Kartik Aaryan and Yami Gautam were presented with Best Actor Awards. India has strongly condemned Pakistan airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. addressing

अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।